मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 21वीं तिथि तदनुसार 11 जून सन 2026 प्रातः के 5:56 हुए हैं। श्रोताओं, इसी के साथ हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं आरंभ होती है।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत

0: भूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं समूह स्वर में ये देश गान। शब्द रचना है द्वारिका उत्सुक के।

0: लीजिए प्रस्तुति कार्यक्रम का अगला भजन अनूप जलोटा के स्वर में। धुन दिया है प्रद्युमन शर्मा ने और गीतकार हैं माया गोविंद।
1: लीला पुरुष की लीला अपरंपार है, जिसके ध्यान में योगी जागते रहते हैं। जो स्वयं सारी सृष्टि के ध्यान में जागता रहता है, उसे माता लोरी गा के सुला रही है और लीलाधर को लोरी सुनकर झपकियां भी आ रही हैं। सृष्टि के ब्रह्म यहाँ केवल माता यशोदा के लाल हैं और यशोदा नन्हे गोपाल की माता।

अनूप जलोटा के स्वर और संगीत निर्देशन में लीजिए भी इसे ये प्यारा सा भजन। रचनाकार हैं अनूप जलोटा।

कैला सनोज के स्वर और संगीत निर्देशन में लीजिए बेस से कार्यक्रम आराधना की अंतिम पेशकश। सब रचना है ट्रेडिशनल की।

0: इस प्यारे से भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 110.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु में आज का विचार सौंदर्य विषय पर। वाचन एवं संकलन है तरुण का।
1: आंखों से देखे जाने वाला दृश्य नहीं अपितु वह अनुभूति है जो हृदय को स्पर्श कर आत्मा तक उतर जाती है। यह केवल रूप रंग अथवा आकार में सीमित नहीं होता बल्कि विचारों की निर्मलता, व्यवहार की मधुरता और भावों की पवित्रता में भी समाहित होता है। वास्तविक सौंदर्य वही है जो बाहरी आकर्षण से आगे बढ़कर अंतर मन को आलोकित कर दे। प्रकृति सौंदर्य की सबसे अनुपम अभिव्यक्ति है। उषा की स्वर्णिम लालिमा, शीतल चांदनी की शांत आभा, वर्षा की मृदुल फुहारें और मंद समीर का कोमल स्पर्श, ये सभी मनुष्य के भीतर एक अद्भुत आनंद का संचार करते हैं। पर्वतों की स्थिरता, नदियों की चंचलता और पुष्पों की सुरभि हमें यह अनुभव कराती है कि सौंदर्य केवल दृश्य नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभूति है। मनुष्य के व्यक्तित्व में भी सौंदर्य अनेक रूपों में प्रकट होता है। मधुर वाणी का सौंदर्य, विनम्र व्यवहार का सौंदर्य, स्नेहपूर्ण दृष्टि का सौंदर्य और करुणा से भरे हृदय का सौंदर्य, ये सभी बाहरी रूप से कहीं अधिक प्रभावशाली होते हैं। चेहरा समय के साथ बदल सकता है परंतु विचारों और व्यवहार का सौंदर्य चिर स्थायी होता है। वाणी का सौंदर्य विशेष रूप से मनुष्य को विशिष्ट बनाता है। जब शब्दों में संवेदना हो, स्वर में सौम्यता हो और अभिव्यक्ति में सच्चाई हो, तब साधारण संवाद भी असाधारण बन जाता है। मधुर वाणी किसी उदास मन में आशा जगा सकती है, किसी थके हुए हृदय को शांति दे सकती है और किसी निराश व्यक्ति के जीवन में उत्साह भर सकती है। सौंदर्य का संबंध केवल बाहरी जगत से नहीं बल्कि अंतर मन की स्थिति से भी होता है। यदि मन शांत हो, विचार सकारात्मक हो और दृष्टिकोण उदात हो तो संसार का प्रत्येक दृश्य सुंदर प्रतीत होने लगता है। यही कारण कि प्रसन्नचित्त व्यक्ति छोटी छोटी बातों में भी आनंद खोज लेता है, जबकि अशांत मनुष्य वैभव के बीच भी संतोष नहीं पा पाता। साहित्य, संगीत और कला भी सौंदर्य के सशक्त माध्यम है। एक मधुर राग, एक प्रभावशाली कविता या एक संवेदनशील चित्र मनुष्य को भीतर तक स्पर्श कर सकता है। शब्दों की सुंदरता तभी प्रकट होती है जब उनमें भावों की गहराई और अनुभूति की सच्चाई हो। आज के समय में जब मनुष्य बाहरी आकर्षण को ही सौंदर्य मानने लगा है, तब यह समझना और भी आवश्यक हो जाता है कि वास्तविक सौंदर्य आत्मा की उजालता में निहित है। सादगी में जो सौंदर्य है वह आडंबर में कभी नहीं हो सकता। विनम्रता में जो आकर्षण है वह प्रदर्शन में नहीं मिल सकता। अतः हमें अपने जीवन को केवल बाहरी सजावट से नहीं बल्कि विचारों की उत्कृष्टता, व्यवहार की मधुरता और हृदय की पवित्रता से सुंदर बनाना चाहिए, क्योंकि अंततः वही सौंदर्य स्थायी होता है।

0: जो मन को शांति दे, हृदय को आनंदित करे और आत्मा को आलोकित कर दे। सौंदर्य वह नहीं जो केवल नेत्रों को आकर्षित करे, सौंदर्य वह है जो हृदय को स्पंदित कर दे, मन को प्रफुल्लित कर दे और आत्मा में एक मधुर प्रकाश जगा दे। यह केवल रूप की रमणीयता से नहीं, बल्कि अनुभूतियों की पवित्रता और विचारों की उजालता का समन्वय है। जब प्रातः काल की प्रथम किरण धरती को स्वर्णिम आभा से आलोकित करती है, जब मंद समीर वृक्षों की शाखाओं को मृदुलता से स्पर्श करती है, जब पुष्पों की सुरभि वातावरण में शांति घोल देती है, तब प्रकृति अपने मौन में भी सौंदर्य का अद्भुत गीत गा रही होती है। यह गीत शब्दों में नहीं, अनुभूतियों में सुनाई देता है और यही सबसे सुंदर सौंदर्य है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु, सौंदर्य विषय पर। वाचन एवं संकलन था तरुण का। मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है रामचरित मानस का गायन। मुख्य गायन स्वर है अनुराधा मराठे और श्रीकांत पारगावनकर का। संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस का गायन। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बात। सामयिक सुझाव का विषय है कुक्की की उन्नत खेती।
1: किसान भाइयों, कुटकी एक पौष्टिक खाद्यान्न फसल है जिसके 100 ग्राम दाने में 8.7 ग्राम प्रोटीन, 75.7 ग्राम शर्करा, 5.3 ग्राम वसा, 8.6 ग्राम कच्चा रेखा होता है। इसके अतिरिक्त 1.7 मिलीग्राम खनिज तत्व, 17 मिलीग्राम कैल्शियम और 220 ग्राम मिलीग्राम फास्फोरस पाया जाता है। पोषक तत्वों से संपूर्ण कुटकी की खेती वर्षा आधारित है। हमारे क्षेत्र में कई कारणों से इसकी उत्पादकता का दोहन नहीं हो पा रहा है और रकबा भी दिनों दिन कम होता जा रहा है। इसकी वजह है हल्के असमतल एवं कम उपजाऊ भूमि में काश्त, उन्नत काश्त तकनीक का प्रयोग न करना, खेतों की अपर्याप्त तैयारी, उन्नतशील और अच्छे उत्पादन देने वाले किस्मों के बीज का अभाव, खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना और पौध संरक्षण का अभाव। इन सभी कारणों के मिश्रित प्रभाव के कारण उत्पादकता का दोहन नहीं हो रहा है। उन्नत काश्त तकनीक अपनाकर क्षेत्र के आदिवासी कृषक कुटकी की अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं और अपना जीवन स्तर सुधार सकते हैं। किसान भाइयों, भूमि चुनाव और तैयारी की बात करें तो कुटकी खेती पारंपरिक रूप से उच्चहन भूमियों में की जाती है। इसकी खेती भारी दोमट और रेतीली भूमियों में जिसकी जल निकास क्षमता अच्छी हो में आसानी से की जा सकती है। ये हल्की अम्लीयता वाले भूमियों खेती के लिए सर्वथा उपयुक्त होती है। हल्की क्षारीय एवं लवणीय भूमियों में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जाती है। किसान भाई इसकी खेती मरहान और टिकरा भूमियों में भी करते हैं। मरहान भूमि पथरीली और कंकड़युक्त कम उपजाऊ भूमि होती है, जबकि टिकरा भूमि ढलाव वाली रेतीली लोम भूमि होती है जो कि अपेक्षाकृत सामान्य उपजाऊ भूमि होती है। बिना बाधान वाली अच्छी उपजाऊ भूमि में कुटकी की खेती आसानी से की जा सकती है। यह फसल थोड़े पानी के जमाव को सहन कर लेती है, अतः हल्की बाधान वाली खेती में भी इसकी खेती की जा सकती है। इस प्रकार की तैयारी खरीफ मौसम की पहली बरसात के साथ ही शुरू करना चाहिए। देशी हल या ट्रैक्टर से खेत को 2 बार आड़ी और खड़ी जुताई करनी चाहिए। इसके बाद पाटा चलाना चाहिए जिससे खेत समतल हो जाए। मरहान जमीन की जुताई से ऊपर आए पत्थरों को हटाकर गोबर की खाद को मिलाना चाहिए। इससे भूमि की उर्वरता शक्ति में वृद्धि होगी और अच्छी पैदावार भी मिलेगी। वर्षा की पहली बौछार के साथ जुताई करने से भूमि की जल धारण क्षमता में वृद्धि होगी और अवर्षा की स्थिति में भी अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकेगा। इस प्रकार तैयार भूमि से अच्छी पैदावार किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई, कुटकी एक शीघ्र पकने वाली फसल है, अतः अच्छी पैदावार प्राप्त करने हेतु मानसून के आगमन के साथ ही बुआई जून के प्रथम पखवाड़े से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक कर देना चाहिए। यह पाया गया है कि जून में बोई गई फसल अगस्त अंत तक पककर तैयार हो जाती है, परंतु इसी समय अंचल में वर्षा भी होती रहती है, अतः कटाई में परेशानी होती है। साथ ही साथ फसल पकने पर चिड़ियों द्वारा भी नुकसान होता है, लेकिन बड़े पैमाने में कुटकी की फसल लगाने से इस नुकसान को कम किया जा सकता है, अतः बुआई जून में ही करके किसान अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई, हम जानते हैं कि यह एक शीघ्र पकने वाली फसल है, अतः असिंचित

0: उचित अवस्था में द्विफसली खेतों की प्रबल संभावना बनती है। इसकी खेती एक फसली के रूप में भी किसान भाई करते हैं और खरीफ मौसम के विभिन्न समयों में इसकी बुआई करते हैं। खेती उच्चहन भूमि में की जाती है, अतः कुटकी के साथ दलहनी और तिलहनी फसलों की अंतर्वर्तीय या मिलवा खेती भी की जा सकती है, जिससे कृषकों को अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। किसान भाई, अंतर्वर्ती फसल के रूप में अरहर, सोयाबीन, अरंडी एवं तिल की खेती भी की जा सकती है। इन्हें मिश्रित खेती एवं विभिन्न कतार अनुपात में लगाना चाहिए। अंतर्वर्तीय फसल के रूप में यदि दलहनी फसलों का प्रयोग किया जाए तो यह वायुमंडलीय नत्रजन का स्थिरीकरण कर भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है और अच्छा उत्पादन भी प्राप्त होता है। बुआई जून में वर्षा के आगमन के साथ करने से फसल अगस्त माह तक पक जाएगी और उसी खेत में अरंडी, कुल्थी, रामतिल या तोरिया बुआई करके असिंचित खेती में दो फसल आसानी से ली जा सकती है। किसान भाई, बीज दर की बात करें, अच्छे अंकुरण प्रतिशत वाले 6 से 8 किलोग्राम स्वस्थ बीज एक हेक्टेयर की कतार बुनी करनी चाहिए। छिड़काव विधि से बुआई करने पर 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की जरूरत होती है। अंतर्वर्ती अथवा मिश्रित फसल लेने पर बीज की मात्रा कतारों के अनुपात पर निर्भर करती है, जो कि शुद्ध फसल से कम होती है। इस तरह किसान भाई जो है कुटकी की खेती करके बढ़िया लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:50 हुए हैं। श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम विवरण का। आइए आपको आज के मुख्य आकर्षणों से अवगत कराते हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे जंगल और सुगम संगीत का कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे प्रातः 7:15 पर। जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा आप सुन सकेंगे प्रातः 7:30 पर। साथ ही कार्यक्रम साहित्य पत्रिका आप सुन सकेंगे सुबह 8:30 पर और अपना पसंदीदा कार्यक्रम गुंजन का आनंद आप ले सकेंगे सुबह के ठीक 9:00। साथ ही फोन इन कार्यक्रम गांव कर गीत का प्रसारण समय होगा आज सुबह के ठीक 10:00।

श्रोताओं के फरमाइशों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन सकेंगे दिन के 11:05 पर और NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षिक कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय होगा दोपहर के ठीक 12:00। शीर्षकों पर आधारित कार्यक्रम चयन आप सुन सकेंगे दोपहर 12:30 पर और कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण होगा दोपहर 1:05 पर। महिलाओं के लिए कार्यक्रम घर आंगन आप सुन सकेंगे दोपहर 1:10 पर। साथ ही युवा श्रोता कार्यक्रम युवाणी सुन सकेंगे शाम 5:30 पर और ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल सजेगा तय समय शाम 7:20 पर। प्रायोजित कार्यक्रम दीदी की गोठ का प्रसारण समय होगा दोपहर 2:30 पर और गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा आप सुन सकेंगे दोपहर 2:45 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण समय होगा शाम के ठीक 5:00 और कार्यक्रम भजन संध्या का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:05 पर। लोकगीतों का कार्यक्रम गोधुली आप सुन सकेंगे शाम 6:20 पर और फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी का आनंद आप ले सकेंगे शाम 6:30 पर। साथ ही श्रोताओं की ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज आप सुन सकेंगे रात्रि

तीस मिनट पर और दोपहर 1:40 पर। साथ ही कार्यक्रम अनभावन आप सुन सकेंगे रात्रि 10:30 पर। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि के ठीक 10 बजे, जिसमें आज आप सुनेंगे उस्ताद अमजद अली खां के सरोद वादन में राग यमन। साथ ही सोशल मीडिया आधारित फरमाइश भी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश हम सुन सकेंगे रात्रि के ठीक 8 बजे। श्रोताओं, ये थे हमारे आज के कुछ मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:55 हुए हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदेहल्याः राष्ट्रपतिभवनस्य सांस्कृतिक केन्द्रे नीति आयोगस्य एकादशे शासि परिषदोपवेशने अध्यक्षतां विधास्यति। विकसित भारताय प्रधानमन्त्रिणः टीम इंडिया इति संकल्पानुगुणम् अस्य वर्षस्य मुख्य विषयो विकसित भारतम् @2047 इत्यस्य कृते समावेशी मानव विकासः इन्क्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत @2047 इति अस्ति। विषयोयम् आयु क्षेत्र लिंग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमिकायाः भेदं विनैव प्रत्येकं भारतीयस्य कल्याणाय विकासाय च केन्द्रीकृतो वर्तते। उपवेशने अस्मिन् अस्य लक्ष्यस्य प्राप्तये दृष्टिं समेत्य देशस्य प्रत्येकं नागरिकं प्रति अस्य सुदृढमापनयोग्य परिणामेषु परिवर्तनस्य विषये गभीरं मन्थनं भविष्यति। अस्मिन् महत्वपूर्णे उपवेशने समावेशी मानव विकास प्रारूपस्य विषये चर्चां कर्तुं सर्वे मुख्यमन्त्रिणः केन्द्रशासित प्रदेशानाम् उपराज्यपालाः च एकत्रिताः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आश्वासितवान् यत् देशस्य 44,00,000 नागरिकाणाम् आकांक्षाः निश्चप्रचं पूरयिष्यन्ते। तेन समुदीरितं यत् राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधन दलं सदैव राष्ट्रस्य विश्वासं सुदृढं कृतवत् अस्ति। अत्रावधेयं यत् श्रीमोदी गतरात्रौ नवदेहल्याः भारत मण्डपे आयोजितं NDA सम्मेलनं संबोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा भणितं यत् देशस्य प्रत्येकमपि नागरिकः विकसित भारतस्य स्वप्नेन पूरितो वर्तते। एषः स्वप्नः इदानीं कस्यापि एकस्य व्यक्तिविशेषस्य प्रशासनस्य वा राजनीतिकदलस्य परिधौ सीमितो नैवास्ति।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा। देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: अस्मिन् अवसरे एनडीए घटक दलैः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऐतिहासिक उपलब्धेः श्लाघनाय एकः संकल्प प्रस्तावः स्वीकृतः। एतदन्तरं सम्पूर्ण विश्वतः प्रधानमन्त्रिणे अभिनन्दन सन्देशाः आगच्छन्तः सन्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन, इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी देशस्य चांसलर फेडरिक मर्स, इजराइल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू, कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्री मार्क कॉर्नी सहैव दक्षिण कोरिया देशस्य राष्ट्रपतिः ली जे म्यूंग इत्यादयः प्रमुख वैश्विक नेतारः श्रीमोदिनं प्रति वर्धापनं प्रेषितवन्तः। संस्कृति मन्त्रालयेन गतवर्षस्य कृते संगीत नाटक

0: तमवर्षस्य अथ च पञ्चविंशत्युत्तरद्विसहस्रतमवर्षस्य अकादमी पुरस्कारार्थं चिताः। एते चिताः पुरस्कारविजेतारः अशेषस्य हि देशस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। ये विभिन्नराज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः च सम्बद्धाः सन्ति। बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धायाः महिलानां वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य द्वितीय चक्रं प्रति प्रविष्टवत्यौ। इति वार्ताः।
1: अभी आप सुन रहे थे संस्कृत समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम गुंज जंगल। कार्यक्रम की शुरुआत में ये सुनते हैं पॉलुस लकड़ा और साथियों के स्वर में ये भजन गीत।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कार्यक्रम गुंजे जंगल में लीजिए प्रस्तुत है बलदूराम राजवाड़े और साथियों के स्वर में ये भिनसरिया गीत।

चले कर्मा गीत के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे जंगल यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 7:15 हुए हैं। लीजिए पेश से सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं चंदनदास जयदेव कुमार के स्वर और संगीत निर्देशन में ये गजल। सब दृश्य है नसीम रिफात की।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: चंदन दास के स्वर और संगीत निर्देशन में लीजिए फिर से कार्यक्रम का अगला गजल। रचनाकार हैं जमीर काजमी।

0: इस विजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ प्रतिदिन शाम 5 बजे आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। यह कार्यक्रम एफएम रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फ़ोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी सुन सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर इसकी पहुँच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर गोठ। सुनते रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोठ, जहां हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए। युवाओं के सपनों को मिलेगी नई उड़ान, ITI में प्रवेश का सुनहरा अवसर। 15 जून तक करें ऑनलाइन आवेदन। संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण नवा रायपुर अटल नगर के अंतर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में बेहतर अवसर तलाशने वाले युवाओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। ITI में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी 15 जून 2026 की रात्रि 11:59 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और अभ्यर्थी निर्धारित वेबसाइट cgiti.admission.nic.in पर जाकर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जिले में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, खड़गवां एवं जनकपुर सहित प्रदेश के अन्य ITI संस्थानों में विभिन्न क्रेडों में प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पूर्व प्रवेश विवरणिका में दिए गए दिशा निर्देश एवं नियमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन अवश्य करें, ताकि आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। प्रवेश से संबंधित विस्तृत जानकारी संबंधित ITI संस्थानों के सूचना पटल पर उपलब्ध है। साथ ही किसी भी प्रकार की सहायता अथवा मार्गदर्शन के लिए अभ्यर्थी अपने निकटतम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस से आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, संगीत निर्देशन है शंकर जयकिशन का, शब्द रचना है हसरत जयपुरी की।

भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा हमारे जैसा दिल का।

सरकारी पॉलिटेक्निक चिरमिरी में डिप्लोमा प्रवेश प्रक्रिया शुरू। विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर। शासकीय पॉलिटेक्निक चिरमिरी में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। संस्थान द्वारा जारी सूचना के अनुसार इच्छुक अभ्यर्थी https://cg.dt

dte.admission.nic.in एवं https://dte.cg.gov.in/#/ पर जाकर ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए संस्थान में सुविधा केंद्र भी स्थापित किया गया है, जहां विद्यार्थी उपस्थित होकर पंजीयन संबंधी सहायता प्रदान कर सकते हैं। इस वर्ष प्रथम सेमेस्टर में सिविल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। प्रथम चरण के लिए पंजीयन 11 जून से 15 जून 2026 तक तथा प्रवेश प्रक्रिया 20 जून से 24 जून 2026 तक चलेगी। द्वितीय चरण का पंजीयन 26 जून से 30 जून 2026 तक एवं प्रवेश 4 जुलाई से 9 जुलाई 2026 तक होगा। वहीं तृतीय चरण का पंजीयन 11 जुलाई से 16 जुलाई 2026 तक तथा संस्था स्तर पर काउंसलिंग एवं स्पोर्ट एडमिशन 18 जुलाई से 22 जुलाई 2026 तक आयोजित किया जाएगा। संस्थान प्रशासन ने बताया कि पात्र विद्यार्थियों को शासन द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। साथ ही बालक छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9641124873 और 9009059197 साथ ही 7067373499 तथा ईमेल principalchirmiri@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है। संस्थान ने जिले एवं आसपास के विद्यार्थियों से समय पर पंजीयन कर तकनीकी शिक्षा के अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। साथियों, इसी के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म गाइड से। आवाज है किशोर कुमार, लता मंगेशकर की। संगीत निर्देशन है HD बर्मन का। गीतकार हैं शैलेंद्र।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230, 600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230, 600।
0: अरे वाह, 07774 230 600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: ग्यारह जून को होगी प्री बीएड एवं BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा आगामी 11 जून 2026 को प्री बीएड एवं BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा पूर्वान 10 बजे से दोपहर 12:15 तक आयोजित होगी। प्री बीएड प्रवेश परीक्षा जिले के 20 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी, जिसमें कुल 6982 अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए जिले के 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कुल 2124 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस प्रकार दोनों परीक्षाओं में कुल 9106 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश। परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से कम 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र में पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि फिक्सिंग एवं दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया समय पर पूर्ण की जा सके। परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व अर्थात प्रातः 9:30 पर बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी को हल्के रंग के आधी बांह वाले वस्त्र पहनकर परीक्षा केंद्र में आने की सलाह दी गई है। काला, गहरा नीला, हरा, जामुनी, मैरून, बैगनी एवं गहरा चॉकलेटी रंग के वस्त्र वर्जित रहेंगे। धार्मिक एवं सांस्कृतिक पोशाक धारण करने वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त सुरक्षा जाँच के लिए निर्धारित समय से पहले उपस्थित होना होगा। परीक्षा केंद्र में केवल चप्पल पहनकर प्रवेश की अनुमति होगी। कान में किसी प्रकार के आभूषण, मोबाइल फोन, संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाउच, बेल्ट, स्कार्फ, टोपी आदि ले जाना

पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। व्यापन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा में किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों के उपयोग पर कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा अभ्यर्थी निरस्त की जा सकती है। परीक्षार्थी केवल नीले अथवा काले रंग का बॉल पेन साथ लेकर आए। अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे प्रवेश पत्र में अंकित सभी दिशा निर्देश का पालन करते हुए समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचें। साथियों, इसी के साथ आइए चलते हैं हमारे अगले गीत की ओर, जिसे फिल्म कटी पतंग से लिया गया है। आवाज किशोर कुमार की, धुन दिया है आर डी बर्मन ने और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना अंतर्गत चयन परीक्षा 5 जुलाई को, 20 जून तक आवेदन कर सकेंगे पात्र विद्यार्थी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना सत्र 2026-27 के अंतर्गत कक्षा 6वीं में राज्य के उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिले के पात्र विद्यार्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सहायक आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ने बताया कि योजना के अंतर्गत चयन परीक्षा का आयोजन 5 जुलाई 2026 रविवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक किया जाएगा। इस परीक्षा के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों को उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में अध्ययन का अवसर प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। आवेदक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना चाहिए तथा उसके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। विद्यार्थी छत्तीसगढ़ की मान्यता प्राप्त साल में कक्षा 5वीं में नियमित अध्ययनरत हो तथा कक्षा 4वीं की परीक्षा में न्यूनतम 80% प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया हो। अभिभावक की वार्षिक आय सभी श्रोताओं से 2,50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को ही दिया जाएगा। नगर पालिका एवं नगर निगम क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए इसके लिए पात्र नहीं होंगे। योजना में विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 2% सीटें आरक्षित हैं, जिन्हें निर्धारित प्रावधानों के अनुसार लाभ प्रदान किया जाएगा। इच्छुक एवं पात्र विद्यार्थी निर्धारित आवेदन पर अपने विद्यालय के प्रचार अथवा प्रधान पाठक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 जून 2026 शाम 5 बजे निर्धारित की गई है। विद्यालय प्रमुख द्वारा संकलित आवेदन पत्रों को 24 जून 2026 तक संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर सुनिश्चित किया जाएगा। साथियों, इसी के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म सूरज से आवाज़ है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, गीतकार हैं हसरत जयपुरी।

0: इस गीत के साथ ही जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा यहीं समाप्त हुआ।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 8 बजे हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
5: वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
6: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर

0: एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
3: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
0: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
0: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
2: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने

0: की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्व भर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
2: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
1: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
3: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
1: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल ICC ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
5: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश

0: लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में NDA सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
3: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने दो वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
1: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
4: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्ता ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब ₹1,000 तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में NTA अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने NTA ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमरीका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में POK की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने POK में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का POK में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी ITBP। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार, 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खान पान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना NDA सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

ये दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब ऐसे कार्यक्रम साहित्य पत्रिका।

साहित्य पत्रिका साहित्य की सुन रहे सभी श्रोताओं का स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार साथियों, मैं हूं अंजनी। साहित्य हमारे जीवन का ही दर्पण है। समय के अलग अलग दौर में अलग अलग तरह के साहित्य लिखे गए, रचे गए। जीवन में हम जो महसूस करते हैं, प्रेम, करुणा, क्रोध या निराशा, साहित्य उन भावनाओं को शब्दों का रूप देता है। जब हम कोई कविता या कहानी पढ़ते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि ये तो हमारी ही कहानी है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हिंदी के वरिष्ठ कथाकार श्री राजेश मिश्र हैं। राजेश जी से हम सुनेंगे इनकी कहानियां और कुछ कविताएं। इसके साथ ही कार्यक्रम के उत्तरार्ध में हम सुनेंगे युवा कवि महेश वर्मा की चंद कविताएं। तो हमारे साथ रहिए, शुरू करते हैं कार्यक्रम साहित्य की।

0: सबसे पहले राजेश जी, स्वागत है आपका। और मैं देख रहा हूं कि आपकी जो पहली कहानी है उसका शीर्षक है रस्सा कशी। तो जरा इस कहानी के बारे में हमारे श्रोताओं को बताते हुए अपनी इस कहानी का पाठ करें।
1: अंजनी जी, आपका धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मेरी कहानी रसाकसी के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न किया है। मैं आज के दौर के प्रयागराज में घूम रहा था और रिक्शे वालों की चुहलबाजियों और उनकी बातचीतों को सुन रहा था। उसी समय कुंभ का भी दौर था, तो मुझे उनकी बातचीत से इस कहानी की सूझ आई और फिर मैं अपने नगर अंबिकापुर आकर एक रस्साकसी नाम की कहानी लिखा। रस्साकसी ग्रामीण समाज के कृषक परिवार के द्वारा किस प्रकार से, किस जतन से कुंभ सरीखे समागम में शामिल होने की जुगत की जाती है, उस जुगत के बाद वहाँ जो है किस तरीके से वो अपने आप को, अपनी कमियों और उसको ढकते हुए अपने परिस्थितियों को, वे वहाँ जाकर गंगा में संगम स्नान करके और उसके बाद वो जो है वापसी में उनके साथ इन रिक्शे वालों को जोड़कर इस कथा का विन्यास रचा गया है, जिसमें एक दूसरे से ज़्यादा पाने और दूसरे का उसको ज़्यादा न देने का एक जो खिंचाव है, आपस में एक द्वंद्व है, वह द्वंद्व ही रसाकसी है। तो कहानी में दोनों जो वर्ग है वो ना तो धनिक है और ना मध्य वर्ग का है, कृषक भी गरीब है और रिक्शा वाले तो गरीब होते ही हैं। तो इस कहानी का के लिखने का एक कारण यह था कि उन दोनों के बीच की जो रस्साकसी है वो प्रकट हो सके।
0: सुनते हैं आपकी कहानी आपके ही स्वर में। कहानी का शीर्षक है श्रोताओं, रस्साकसी।
1: इलाहाबाद जो लोगों की जुबान पर बसा हुआ है, चमकते आकाश चुंबी साइन बोर्डों पर चमकदार सफेद रंगों में प्रयागराज नाम से चमक रहा था। संगम की त्रिवेणी अभी वैसी ही है जैसी तब थी जब प्रयागराज इलाहाबाद हुआ करता था। कुंभ की भीड़ भाड़ का भय, मेले की जगमग दूर से झमकाकर इतराती

अपनी सुंदरता के जाल में उलझा कर दूर करने में लगी हुई थी। झमकते ठनकते नदी के तट से हनुमान मंदिर की ओर वापस होती भीड़ में थके पांव लोग संगम स्नान से पांव धुले चेहरों की चमक लिए लेटे हनुमान के दर्शन हेतु घिसट रहे थे। अचानक दो रिक्शे दिखे, सवारियां उस तरफ बढ़ें, तब तक वह परिवार दोनों रिक्शों पर जा चढ़ा। कुल जमा 6 जन, रिक्शों में 3-3 लोग न खड़े न बैठे, खड़े और बैठे की मुद्रा में दो सवारियों वाले रिक्शों में समा गए। रिक्शावान हैंडल घुमाकर पैडल के साथ साथ बात की धार मारते चल रहे थे। त्रिवेणी नहान अच्छे से हुआ न साहेब? हाँ, आप बहुत पुण्यात्मा हैं साहेब। शिवरात्रि की पुण्य पहर में संगम में डुबकी मारे हैं। हाँ, रिक्शे वाले की वाचालता में अरुचिवश वे लोग हाँ हूँ ही भर करके खामोश हो रहे थे। आपको और भी पुण्य मिलेगा साहेब, आप अभी जो पैसा देंगे ना उससे मैं भर पेट खाना खाऊंगा। अब तक जिनको रिक्शावान साहेब संबोधन कर रहा था उन्होंने उसकी कद काठी रंग और पहनावे को ध्यान से देखा। सांवला रंग, ठंड में भी आधी बांह की टी शर्ट, पसीनों के निकलने और सूखने से नमक के दाग ने काले रंग की उस टी शर्ट को ढेरों आड़ी तिरछी और सीधी सफेद लकीरों से भर दिया था। पाँव में सस्ती नीली जींस के बावजूद चढ़ान पर जोर लगाने से पिंडलियों की पेशियां उभर रही थीं। 20 की उम्र का लड़का सुतुआ बदन में फूलती सांसों को मुंह से हांफते हुए बाहर कर रहा था। रिक्शा ऊपर चढ़ाने में उसकी बाहों की नसें नीली चमक के साथ उभरी हुई थीं। साहेब में साहबी का मान मन ही मन घोलते किसान मनई रिक्शे से उतर गए। पैजामा सकेल कर कमर में खोंस रिक्शे को पीछे से धकेल कर उसकी मेहनत को जरा सा सहलाने लगे। चढ़ाई खत्म हुई। बैठी साहेब, पैजामे को सही करके हाथ से सहेज कर उनके बैठते ही रिक्शावान हैंडल छोड़ उनके पैरों को छूकर बोला, आप पुण्यात्मा है साहेब, नहीं कौन होगा पैसा भी चुकाए और रिक्शा पाछे से धकेले का जहमताव करे। रिक्शावान की आवाज में साहेब की ध्वनि के साथ निकलती बातों की धार उनके भीगे तन के पार मन को भी भिंगा रही थी। हम भी माँ बाबू के साथ संगम में कुंभ नहान के लिए आए रहे साहेब, रिक्शावान ने कहा। अच्छा, कहाँ से? बिहार पटना। तो रिक्शा बटमारी हो गई, वो पाकिट कट गया, 3200 रुपया गायब हो गए साहेब। ओह, कुंभ में पाकिट मार भी बहुत घूमते हैं। हाँ साहेब, 3 दिन से छिछी आ रहे हैं। फिर रिक्शा? उन्होंने उसकी बात और स्थिति की संगत बैठाने के लिए हठात ही पूछ लिया। आज सवेरे से चलाए रहे हैं साहेब। माँ बाप किधर हैं? उन्होंने पूछा। जहाँ से रिक्शा किराया पर उठाया साहेब, माए बाबू हमारी बाट जोह रहे हैं। अनजान शहर में को रिक्शा बिना जमानत काहे बदे देही? ओहू लोग भूखे बैठे होंगे। ओह, उन्होंने करुणा विह्वल स्वर में कहा, अभी आप जो पैसा देंगे साहेब उससे हम भूख मिटाएंगे। वापसी का कुछ सोचा है? उन्होंने पूछा। कुछ पैसा रिक्शा खींच गए

बना लें, फिर कल रात पटना के लिए निकलेंगे साहेब। वैसे कितना किराया होगा यहाँ से पटने का? यही 1200 साहेब। आपका पुण्य प्रताप हो जाए। हम अपने अपने घरे द्वारे पहुँच जाएं, कहते हुए रिक्शावान उनके पैर छूकर माथे से लगाया। अब तक पूरे वाकये को खामोशी से देखती उनकी कृषक गृहिणी ने पतिदेव के पिघलकर टेघरने से आती विपत की आहट भांपते हुए कहा, ऐसा है बाबू, हम लोग भी परदेश में हैं। गृहिणी की आवाज से सचेत होकर उन्होंने पहलू बदला। पटना पहुंचे के बाद अपनी मौसी फुआ और काकी सबे से आपके पुण्य का गान करियो माता। कहते हुए रिक्शावान चट से साहेब की गृहिणी के पांव छूकर माथे सिर लगाया। ठीक है, हमसे जो हो सके हम करेंगे बच्चा। उन्होंने पत्नी की बात सुना और दोहराया, हाँ वही तो जो बनेगा। आप लोग का पुण्य हम जबले जिएंगे गावेंगे। कहते हुए रिक्शावान सामने देखते हुए पायडल तेज तेज मारने लगा। पति पत्नी दोनों ने एक दूसरे की नजरों में देखा। पत्नी की आंखों में मायके से पैसे मांगने की लाचारी की झलक देखकर उन्होंने नजरें रिक्शावान की पीठ पर टिका दी थीं। उनको गांव के हेडमास्टर साहब की याद आ गई। बातों बातों में मां साहब ने बताया था कि पटना भागलपुर के तरफ ळ अक्षर को र और र को ळ बोलते हैं। फिर तो शब्द बिगाड़ने का खेल और हंसी ठट्टा बहुत देर तक चला था। स्ट्रीट लाइटों की जगमग में रिक्शावान की पीठ का सांवला रंग चमक रहा था। उन्होंने लड़के की बातों को बीता बीता याद किया। कहीं भी र ळ हुआ न ही ळ र बोला था वह। ये परेड ग्राउंड कितनी देर में पहुंचेंगे? परेड ग्राउंड न साहेब, पहुंचे ही बोल रहा है, रिक्शावाल ने कहा। परेड ग्राउंड को सुधारते ही उन्होंने जैकेट की जेब से बटुआ निकाला, उसके मुंह का डोरा खोलकर 500 का एक नोट रख कर बाकी रुपए अपनी श्रीमती जी को थमाया। रुपए हाथ लगते ही उन्होंने चोली के भीतर हाथ डालकर सीने से दाब लिया। अभी आंचल संहार ही रही थी कि रिक्शा धीमा हुआ। परेड ग्राउंड आ गया साहेब, रिक्शावान बोला और हैंडल पर ब्रेक चाप कर तार का छंदा चढ़ा दिया। दोनों रिक्शे आगे पीछे रुक गए। दूसरे रिक्शे वाले ने कहा, साहेब किराया 500 हुआ। उन्होंने कहा, दोनों रिक्शों का? हाँ, दूसरे रिक्शे वाले ने कहा, किराया उसने ही तय किया था। हम साहेब को 300 बोले थे। पहले रिक्शा वाले ने एतराज किया। उन्होंने अपनी बेटी की ओर देखा। उसने 50 के दो नोट उन्हें पकड़ाया। ठीक बात, तो लो 50 और रख लो, उन्होंने उससे कहा। फिर दूसरे रिक्शे वाले के हाथ पर 500 के साथ 50 का नया हरा नोट रख दिया। और साहेब आपके पुण्यगान का? पहले रिक्शे वाले की पुकार सुनकर उन्होंने बटुआ खोलकर उलट दिया और कहा, रहे तब न दया माया। वैसे बचवा, दो दिन में तुम्हें इलाहाबादी बोली भाषा खूब गहरे पकड़ाई है। कहते हुए उन्होंने परिवार के छहों जन के साथ शास्त्री पुल के चौक की ओर रुखसत लिया। अमे या क्या कही गवा, दूसरे रिक्शे वाले ने पहले वाले से पूछा। कुछ हो ना यार, कांट फेंके थे, फिर मुदा मरद फंस गवा था, मेहरिया फिसलाए दिया।

चल, ई व्यापार संसार में मुदा मोहे 50 की नगद प्राप्ति होई गवा। दूसरा रिक्शा वाला हंसा। पहले ने भी कहा, कुछ ना भा तो 50 है सही। और दोनों हंसते हुए संगम की तरफ मुड़ गए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कथाकार श्री राजेश मिश्र से उनकी कहानी रस्सा कशी। और अब आइए इनकी कविताओं पे बात करते हैं। राजेश जी, आपकी जो कविताएं हैं, मैं देख रहा हूं कि आपकी जो पहली कविता है उसका शीर्षक है कवि कालाधर शमशेर। जरा इस कविता के परिप्रेक्ष्य पर और इसकी पृष्ठभूमि पर चर्चा करें।
1: प्रगतिशील धारा के कवि शमशेर, जिनकी कविताओं की कलात्मकता और भावभूमि से हम सभी परिचित हैं, शमशेर की एक तस्वीर मेरी निगाहों के समक्ष आई थी। उसी तस्वीर को देखकर मैंने शमशेर पर यह कविता लिखी है। कवि कालाधर शमशेर। छवि काले पृष्ठभूमि में सफेद मस्तक पर बाल सफेद, हल्की बढ़ी दाढ़ी और मूछें भी हैं सफेद। तस्वीर से झांकती स्वप्निल काले फ्रेम में फंसी शक्ति संपन्न आंखें जांचती हैं काल को होड़ लेने के ध्येय से। कर अस्त्र है बांसुरी, सुर का आदिनाद करती हुई।
0: कृपया अपनी अगली कविता सुनाएं।
1: 11 सितंबर की दरमियानी रात में कवि मुक्तिबोध की स्मृति से अभिभूत होकर मैंने यह कविता रची थी। 11 सितंबर मुक्तिबोध की पुण्यतिथि है। इस दिन मुक्तिबोध अपने पूरे आलोक के साथ हम पाठकों के हृदय में समा जाते हैं। तो मेरी यह कविता जो है मुक्तिबोध की स्मृति को समर्पित है। कविता का शीर्षक जो है वो 11 सितंबर की दरमियानी रात में। दाहिने पैर के जूते की बेल्ट से टका वह पत्ता हरेपन को सहेजे घर तक चला आया, न केवल घर तक बल्कि आंगन में। वह पत्ता बेसमेंट की छाया में हरे रंग को ठोस करता नजरों में अटक सा गया। नजरें पत्ते के ठहरे रंग पर जमी रहीं, पत्ते से उभरने लगी कुछ किरणें स्वर्ण बिखेरती, जल के नीले विस्तार पर फिसलती, पिघले सोने सा तल में समाती, वात के घात से लहराते सरोवर में हरी घासों का हरा विस्तार भी स्वर्ण आभरणों से भरा। तिस पर लेटा एक गिटार अभी अभी सुरों की झनकारों से थक कर ठोस होते हरे पत्ते में झांक रही वह पहाड़ी जिसके सीने पर फैले वृक्षों से उठती हवा की खुनक गिटार की तंद्रा में स्वप्न घोल रही है। गिटार को स्वप्न दशा में छोड़कर दौड़ पड़े पहाड़ के शिखर को पकड़ने, थमते बहराते संभलते ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर। गहराती सांझ में गायों का झुंड उतारता चरवाहा अचरज और कुतूहल से ताकता दर्ज है पत्ते के हरे नक्शे में। पहाड़ से उतरते वक्त फिसलन भरे नाले की तीर पर टेढ़ी गति से भागता हरा सांप तो

0: टेढ़ी रेखाएं सुरक्षित रखा है वह ठोस होता हरा पत्ता। हरा पत्ता पहाड़ का विजिटिंग कार्ड है, डायरी के पन्नों में कहीं दबा है। दो पन्नों के बीच ठोस हरेपन के समेत। वाह
1: राजेश जी, आपने अपनी रचनाएं हमारे श्रोताओं के समक्ष रखी। आपकी कहानियां, आपकी कविताएं उनके मन को स्पर्श कर सकी होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अंजनी जी, आपका और सुधी श्रोताओं का भी धन्यवाद।

0: साहित्य पत्रिका साहित्यकी में अपनी कहानी रस्साकशी और चंद कविताओं के साथ ये थे श्रोताओं राजेश मिश्र। और कार्यक्रम के उत्तरार्ध में अब आइए सुनते हैं युवा कवि महेश वर्मा से उनकी चंद कविताएं।
1: पहली कविता का शीर्षक है रुका रहता है। किसी भी वक्त तुम वहां से गुजरो, तुम्हें मिलेगा धूप का एक कतरा जो छूट गया था एक पुराने दिन की कच्ची सुबह से, और वहाँ गूंजता होगा एक चुंबन। बीतते जाते हैं बरस दर बरस, और पुरानी जगहों पर ठिठका रुका रहता है समय का एक टुकड़ा। एक लंबे गलियारे के अंतिम छोर पर हमेशा रखी मिलेगी एक धुंधली सांझ, और उसमें डूबता होगा एक चेहरा जो उसी समय और उजला हो रहा था तुम्हारी आत्मा के जल में। उतरती सीढ़ियों पर तुम्हें विदाई का दृश्य मिलेगा जो ले जाता था अपने साथ प्रतीक्षाओं का पारंपरिक अर्थ। कहीं और रखी होगी एक और सुबह अनापेक्षित मिलन के औचक प्रकाश से चुंधियाई, और शायद इसी कारण शब्दहीन। किसी मौसम के सीने में शोक की तरह रखा होगा कोई और कालखंड, और कितनी खाली जगह हमारी आत्मा के भीतर जहां रखते हम ये ऋतुएं, ये बरस, ये सुबह और सांझ के पुराने दृश्य। शीर्षक है मक्खियाँ। अगर हमें फिर से न पढ़नी पड़ती वे किताबें बच्चों को ही पढ़ाने की खातिर, तो अब तक हम भूल ही चुके होते उन गंदी जगहों के विवरण जहाँ से मक्खियों के बैठ कर आने का भय दिखाते हैं सदा स्वस्थ लोगों के शाश्वत हस्ते चित्र। अगर हमें फिर से न पढ़नी पड़ती वे किताबें बच्चों को ही पढ़ाने की खातिर, तो अब तक हम भूल ही चुके होते उन गंदी जगहों के विवरण जहाँ से मक्खियों के बैठ कर आने का भय दिखाते हैं सदा स्वस्थ लोगों के शाश्वत हंसते चित्र। वे चाहें तो हमें इतना परेशान कर दें कि थोड़ी देर को छोड़कर वह ज़रूरी काम हम सोचने लगें नुक्कड़ से चाय सिगरेट पी कर आने के बारे में, और जहाँ सोचना भी मुश्किल गुड़ जलेबी नाली और घूरे के बारे में, मुस्कुराते और गुरगुराते एयर कंडीशनरों वाले कांच से घिरे गंभीर दोस्त के कमरे में, और जहां सोचना भी मुश्किल गुड़ जलेबी नाली और घूरे के बारे में, मुस्कुराते और गुरगुराते एयर कंडीशनरों वाले कांच से घिरे गंभीर दोस्त के कमरे में उन्हें देखा जा सकता है उड़ते उदास सहजता की पुरानी उड़ान में, और उनके दिखने पर थोड़ी अतिरिक्त जो दोस्त की प्रतिक्रिया है उससे आती हंसी को ढाल देते हम उसके नौजवान दिखने की खुशामद में, और उसके दिखने पर थोड़ी अतिरिक्त जो दोस्त की प्रतिक्रिया है उससे आते हंसी को ढाल देते हम उसके नौजवान दिखने की खुशामद में। शीर्षक है नींद। थकन में वह त्वचा के भीतर पेशियों स्नायुओं और बहते खून के बीच एक कसैली और गुनगुनी तरलता की तरह मौजूद होती, और पलकों के भीतर एक भारी थक्के की तरह निशब्द आ रहती। थकन में वह त्वचा के भीतर पेशियों स्नायुओं और बहते खून के बीच एक कसैली और गुनगुनी तरलता की तरह मौजूद होती, और पलकों के भीतर एक भारी थक्के की तरह निशब्द आ रहती। पेड़ों की छांवों में वह एक पुराने बहाने की तरह होती, और घास के लंबे मैदानों में थकी हुई नज़र की तरह मंद और फैली हुई। पेड़ों की छांवों में वह एक पुराने बहाने की तरह होती, और घास के लंबे

0: मैदानों में थकी हुई नज़र की तरह मंद और फैली हुई। वासनाओं, मनोरोगों और उद्यम के साथ चबाए गए दानों के बदले उसे खरीदना पड़ता और बाज़ दफ़ा किताबों में छपे शब्दों और रागों के रेतीले पुकारों से उतरकर शिराओं में पैवस्त हो जाना उसका शगल होता। वासनाओं, मनोरोगों और उद्यम के साथ चबाए गए दानों के बदले उसे खरीदना पड़ता और बाज़ दफ़ा किताबों में छपे शब्दों और रागों के रेतीले पुकारों से उतरकर शिराओं में पैवस्त होना उसका शगल होता। निषेध के समयों और जगहों को वह अपने मुलायम बाहों में गर्क कर लेती और खामोशी से खामोश प्यार किया करती। निषेध के समयों और जगहों को वह अपने मुलायम बाहों में गर्क कर लेती और खामोशी से खामोश प्यार करती। जब वह अपने समय पर आती तो सभी चीज़ों को मूंद लेने की इच्छा की तरह आती और रात से अपना बदन एक सार कर लेती। जब वह अपने समय पर आती तो सभी चीज़ों को मूंद लेने की इच्छा की तरह आती और रात से अपना बदन एक सार कर लेती। बहरहाल अभी तक तो ऐसा ही होता आया कि नींद आती तो हम सो जाते। कविता का शीर्षक है अनुपस्थित। सामने दीवार पर चौखुट भर जगह है एक तस्वीर की। कोई तस्वीर नहीं है, एक जगह है तस्वीर के न होने की। सामने दीवार पर चौखुट भर जगह है एक तस्वीर की। कोई तस्वीर नहीं है, एक जगह है तस्वीर के न होने की। और यह न होना भी इतनी पुरानी घटना कि पिछले बार की पुताई में मिल नहीं पाया था इस चौखुटे से पुती हुई बाकी दीवार का रंग। और यह न होना भी इतनी पुरानी घटना कि पिछले बार की पुताई में मिल नहीं पाया था इस चौखुटे से पुती हुई बाकी दीवार का रंग। अलग से और उजला दिखने लगा है इस खाली जगह का खाली रंग। एक जिद की तरह जब की गई दोबारा पुताई बस इसी चौखुटे पर। तो क्या था इस जगह पर, देवता, पितर या शाश्वत झरते झरने का भूदृश्य, कोई प्रमाण पत्र? याद करते हुए देखने लगता हूँ खिड़की से बाहर दूर एक सूखा वृक्ष और उसकी टहनियाँ, जैसे खाली जगह हरे पत्तों के न होने की। क्या था इस जगह पर, देवता, पितर या शाश्वत झरते झरने का भूदृश्य, कोई प्रमाण पत्र? याद करके देखने लगता हूँ खिड़की से बाहर दूर एक सूखा वृक्ष और उसकी टहनियाँ, जैसे खाली जगह हरे पत्तों के न होने की। अपने अनुषंगों के साथ आती जाती रहती उस पर भी वर्षा और गहराता जाता सूखी टहनियों के बीच का अनुपस्थित हरा रंग। निशब्द घुस आता असमय मारा गया दोस्त सोचने की धुंधली कोठरी में। भूल की तरह आ जाता जिसका नाम जीवित दोस्तों की महफिल में। फिर और साफ दिखने लगती वह जगह दोस्त के न होने की। इसके बाद दिखने लगता शब्दों का न होना शब्दों के बीच। अंततः की तरह लौटते हुए अपने कमरे में, सामने दीवार पर कोई तस्वीर नहीं है, एक जगह है तस्वीर के न होने की। निःशब्द घुस आता असमय मारा गया दोस्त सोचने की धुंधली कोठरी में। भूल की तरह आ जाता जिसका नाम जीवित दोस्तों की महफिल में। फिर और साफ दिखने लगती वह जगह दोस्त के न होने की। इसके बाद दिखने लगता शब्दों का न होना शब्दों के बीच। अंततः की तरह लौटते हुए अपने कमरे में, सामने दीवार पर कोई तस्वीर नहीं है, एक जगह है तस्वीर के न होने की। अपने अनुपस्थित की तरह देखता है यह कमरा, यह अपना कमरा, मेरे अनुपस्थित की तरह देखता है यह मुझको।
1: श्रोताओं, ये थे महेश वर्मा। महेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जीवन अगर खुली किताब है तो साहित्य उसकी सबसे सुंदर और विचारणीय व्याख्या है। जीवन साहित्य को जीने के लिए अनुभव देता है और साहित्य जीवन को अधिक सुंदर और समझने योग्य बनाता है। इसी उम्मीद के साथ कि साहित्य पत्रिका साहित्यिकी का यह अंक आपको अच्छा लगा होगा, अंजनी को यहीं दें विदा। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रमेंद्र कुमार।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। श्रोताओं, ये वक्त है बातों और गीतों के कार्यक्रम गुंजन का। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का कार्यक्रम गुंजन की आज की कड़ी में। आज मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी विक्की गुप्ता। तो साथियों, आज हम बातें करेंगे हमारी जीवन शैली और स्वास्थ्य के बारे में। साथियों, आधुनिक दौर में तकनीक ने हमारी ज़िंदगी को आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी आई हैं। पहले लोग पैदल चलते थे, शारीरिक श्रम अधिक करते थे, लेकिन आज अधिकांश काम मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से हो जाते हैं। इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर भी दिखाई दे रहा है। मोटापा, तनाव, मधुमेह और हृदय रोग जैसी समस्याएं तेज़ी से बढ़ रही हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम

सभी का कार्यक्रम गुंजन की आज की कड़ी में। आज मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी विक्की गुप्ता। तो साथियों, आज हम बातें करेंगे हमारी जीवन शैली और स्वास्थ्य के बारे में। साथियों, आधुनिक दौर में तकनीक ने हमारी ज़िंदगी को आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी आई हैं। पहले लोग पैदल चलते थे, शारीरिक श्रम अधिक करते थे, लेकिन आज अधिकांश काम मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से हो जाते हैं। इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर भी दिखाई दे रहा है। मोटापा, तनाव, मधुमेह और हृदय रोग जैसी समस्याएं तेज़ी से बढ़ रही हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाए रखें। साथियों, कार्यक्रम के दौरान हम जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी अच्छी आदतें हमें स्वस्थ और खुशहाल जीवन दे सकती हैं। पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का यह पहला सा गीत, जिसे फिल्म कल हो ना हो से लिया गया है। आवाज़ सोनू निगम की, संगीत निर्देशन है शंकर एहसान लोय का, शब्द रचना है जावेद अख्तर की।

साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गुंजन की आज के अंक में। आज मैं हूं आपके साथ, आपका रेडियो साथी विक्की गुप्ता। और आज हम बातें कर रहे हैं हमारी जीवन शैली और स्वास्थ्य के ऊपर। साथियों, स्वस्थ जीवन की शुरुआत हमारे भोजन से होती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में फास्ट फूड और पैकेट वाले खाद्य पदार्थों का चलन बढ़ गया है। स्वाद तो मिलता है, लेकिन शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता। हरी सब्जियां, फल, दालें और पर्याप्त पानी हमारे शरीर को ऊर्जा और रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं। कई बार हम समय बचाने के लिए गलत खान पान चुन लेते हैं, जिसका असर धीरे धीरे स्वास्थ्य पर दिखाई देता है। इसलिए जरूरी है कि हम संतुलित भोजन अपनी आदत बनाएं। याद रखिए, अच्छा भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन के लिए भी जरूरी है। स्वस्थ शरीर ही जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करने की ताकत देता है। साथियों, इसी के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम गुंजन की अगली पेशकश फिल्म लगान से, जिसमें जावेद अख्तर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है AR रहमान ने और आवाज़ दी है उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखविंदर और श्रीनिवास ने।

0: राम राम हो कृष्ण भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद तो दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया बिनु भैया, ए दे आगु तो ए दे वर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं
0: हाँ?
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ये दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की दे ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई, ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला है दे सुन सकते हैं।
1: हाँ अभी तो शुरू है कि सहे।
0: हाँ तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाणी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: साथियों, एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गुंजन में। आज मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी विक्की गुप्ता, और आज हम बातें कर रहे हैं हमारी जीवन शैली और स्वास्थ्य के बारे में। साथियों, केवल अच्छा भोजन ही नहीं बल्कि नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद भी उतनी ही आवश्यक है। आज कई लोग घंटों मोबाइल और कंप्यूटर पर समय बिताते हैं, जिससे शारीरिक गतिविधियाँ कम हो जाती हैं। रोजाना 30 मिनट की सैर, योग या हल्का व्यायाम शरीर को सक्रिय रखता है। वहीं अच्छी नींद हमारे मस्तिष्क और शरीर दोनों को आराम देती है। मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। तनाव, चिंता और नकारात्मक सोच हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। इसलिए परिवार और मित्रों के साथ समय बिताकर अपनी पसंद के काम कीजिए और जीवन में सकारात्मकता बनाए रखिए। स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर मिलकर जीवन को बेहतर बनाते हैं। इसी के साथ साथियों, आइए सुनते हैं फिल्म संजू से यह गीत। आवाज़ है सुखविंदर सिंह, श्रेया घोषाल के। संगीत निर्देशन है विक्रम मंत्रोस का। शब्द रचना है शेखर अस्तित्व की।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन

0: किशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर, 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है दोस्तों आप सभी का कार्यक्रम गुंजन के आज के अंक में। आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विकी, और आज हम बातें कर रहे हैं हमारी जीवन शैली और स्वास्थ्य पे। साथियों, आज का समय डिजिटल युग का समय है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हमें दुनिया से जोड़ दिया है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों पर असर पड़ता है, नींद प्रभावित होती है और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। कई लोग सोशल मीडिया की तुलना में उलझकर अपनी खुशियों को कम कर देते हैं, इसलिए तकनीक का उपयोग करें लेकिन उसकी गुलामी कभी ना करें। दिन में कुछ समय मोबाइल से दूरी बनाकर परिवार, प्रकृति और स्वयं के लिए भी निकालें। डिजिटल संतुलन ही स्वस्थ जीवन का नया मंत्र है। साथियों, इसी के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म स्वदेश से, जिसमें जावेद अख्तर की सदरेशिया को संगीतबद्ध किया है एआर रहमान ने और आवाज़ दी है हरिहरन, कैलाश खेर और उदित नारायण ने।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: साथियों, आज हमने जाना कि बदलती जीवन शैली के बीच स्वास्थ्य का ध्यान रखना कितना आवश्यक है। संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, सकारात्मक सोच और तकनीक का संतुलित उपयोग हमें बेहतर जीवन दे सकता है। स्वास्थ्य कोई मंजिल नहीं बल्कि एक निरंतर यात्रा है। छोटी छोटी अच्छी आदतें भविष्य में बड़े लाभ देती हैं। आइए आज से हम सभी अपने स्वास्थ्य के लिए

छोटा सा संकल्प लें, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे और जीवन के हर पल का आनंद उठाएंगे। साथियों, इसी के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत फिल्म जब वी मेट से। आवाज है शान उस्ताद सुल्तान खान की, संगीत निर्देशन है प्रीतम का, शब्द रचना है इरशाद कामिल की।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुंजन और आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विकी गुप्ता। साथियों, यात्रा जीवन का एक ऐसा अनुभव है जो हमें किताबों से नहीं बल्कि घूमने से ही प्राप्त हो सकता है। जब हम अपने शहर, गांव या परिचित मोहल्लों से बाहर निकलते हैं तब हमें नई जगहों, नए लोगों और नई संस्कृतियों को समझने का अवसर मिलता है। यात्रा केवल घूमने फिरने का माध्यम नहीं बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व के विकास का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सफर के दौरान हम धैर्य, आत्मनिर्भरता और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सीखते हैं। कई बार रास्ते में मिलने वाले लोग और अनुभव हमारी सोच को बदल देते हैं। यात्रा हमें यह एहसास कराती है कि दुनिया कितनी विशाल और विविधताओं से भरी हुई है। इसलिए समय समय पर यात्रा करना जीवन को नई ऊर्जा और नई दिशा देने का एक शानदार तरीका होता है। साथियों, यात्रा का एक सबसे सुंदर पहलू प्रकृति से जुड़ना भी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने काम और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि प्रकृति की खूबसूरती को महसूस ही नहीं कर पाते। लेकिन जब हम किसी पहाड़ी क्षेत्र, नदी के किनारे, जंगलों या खुले मैदानों में जाते हैं तो मन को एक अलग सी शांति मिलती है। प्रकृति के बीच बिताया गया समय हमारे तनाव को कम करता है और हमें नई ऊर्जा से भर देता है। पक्षियों की आवाज़, बहते पानी की धुन और ठंडी हवाओं का स्पर्श मन को सुकून देता है। यही कारण है कि यात्रा केवल मनोरंजन नहीं बल्कि मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक हो मानी जाती है। प्रकृति हमें सिखाती है जीवन में संतुलन और सादगी कितनी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथियों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म रॉक स्टार से, जिसमें इरशाद कामिल की सदृश्या को संगीतबद्ध किया है ए आर रहमान ने और आवाज़ दी है मोहित चौहान ने।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600, पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
3: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
2: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
3: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जुड़िए आपके अपनों को भी।
2: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।

साथियों, हर यात्रा अपने साथ कुछ न कुछ सीख जरूर लेकर आती है। सफ़र के दौरान हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही चुनौतियाँ हमें मजबूत और आत्म

वह विश्वासी बनाती हैं। कभी रास्ता बदल जाता है, कभी मौसम साथ नहीं देता और कभी योजनाएं पूरी नहीं हो पाती, लेकिन इन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहने का नाम ही है यात्रा। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जीवन की राह में भी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। यात्रा हमें धैर्य, अनुशासन, समय का महत्व और लोगों के साथ सामंजस्य बनाकर चलने की कला सिखाती है। हर सफर हमें संदेश देता है कि मंजिल महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है रास्ते में मिलने वाले अनुभव और सीख। यही जीवन को समृद्ध बनाते हैं। साथियों, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम बात करेंगे जीवन की सबसे बड़ी यात्रा की, अर्थात हमारे अपने जीवन की। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम लगातार एक सफर पर होते हैं। इस यात्रा में हमें अनेक लोग मिलते हैं, रिश्ते बनते हैं, सपने जन्म लेते हैं और अनुभव का खजाना तैयार होता है। कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता, लेकिन दोनों में ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जीवन की खूबसूरती इसी में है कि हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं और नए अवसरों की ओर बढ़ते हैं। हमें अपने सफर का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि हर दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना और हर पल को याद बनाकर जीवन की सबसे बड़ी कला बनाना ही यात्रा है। साथियों, इसी संदेश के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम गुंजन की अंतिम पेशकश फिल्म दिल चाहता है से। आवाज़ है शंकर महादेवन की, संगीत निर्देशन है शंकर एहसान लॉय का, रचनाकार हैं जावेद अख्तर।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गुंजन यही समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9:55 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2014 में आशा की जो किरण जगी थी, वो आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज

नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी और स्कूल शिक्षा विभाग ने 28 अधिकारियों के तबादले किए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वो आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष जनजातीय समाज के सम्मान, सशक्तिकरण और विकास के लिए स्वर्ण काल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या पर निर्णायक नियंत्रण मिला है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं, कनेक्टिविटी और आजीविका के अवसरों का तेजी से विस्तार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। शासी परिषद की बैठक में इस दृष्टिकोण को साकार करने और इसे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए ठोस मापने योग्य परिणामों में बदलने पर विचार विमर्श किया जाएगा। शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल समावेशी मानव विकास के ढांचे पर चर्चा करेंगे। बैठक में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ाने तथा देश में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने 28 अधिकारियों के तबादले किए हैं। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारियों, विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, सहायक संचालकों और प्राचार्यों को विभिन्न जिलों और कार्यालयों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। महासमुंद, रायपुर, बिलासपुर सहित कई जिलों में नए प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि यह पुनर्संरचना शैक्षणिक योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और प्रशासनिक समन्वय को मजबूत करने के लिए की गई है। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा है कि स्वच्छता केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है। स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब तक स्वच्छता जन आंदोलन का स्वरूप नहीं लेती तब तक विकसित भारत का लक्ष्य पूर्ण रूप से साकार नहीं हो सकता। श्रीमती ठाकुर ने कल बिलासपुर के पुराना बाजार सकरी क्षेत्र में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून अगले दो दिनों में छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहुंच सकता है। इस बीच प्रदेश के कुछ इलाकों में प्री मानसून गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वो आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी और स्कूल शिक्षा विभाग ने 28 अधिकारियों के तबादले किए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। श्रोताओं, आइए जानते हैं तापमान संबंधी सूचना। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान हमारे शहर अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस

दर्ज किया गया। तापमान संबंधी सूचना के बाद आइए एक नजर डालें आज के मुख्य आकर्षणों पर। श्रोताओं के फरमाइशों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद का आनंद आप ले सकेंगे आज दिन के 11:05 पर। साथ ही एनसीईआरटी और सीआईईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय होगा दोपहर के ठीक 12 बजे। और शीर्षकों पर आधारित कार्यक्रम चयन आप सुन सकेंगे दोपहर 12:30 पर। कार्यक्रम खेती के बाद का पुनः प्रसारण होगा दोपहर 1:05 पर। साथ ही श्रोताओं की ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज आप सुन सकेंगे दोपहर 1:40 और रात्रि 9:30 पर। साथ ही महिलाओं के लिए कार्यक्रम घर आंगन का प्रसारण समय होगा दोपहर 1:10 पर। और युवा श्रोता कार्यक्रम युवाणी सुन सकेंगे शाम 5:30 पर। साथ ही ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल आज सजेगा तय समय शाम 7:20 पर। प्रायोजित कार्यक्रम दीदी की गोठ आप सुन सकेंगे दोपहर 2:30 पर।

आधारित फरमाइसी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज आप सुन सकेंगे दोपहर 1:40 और रात्रि 9:30 पर। साथ ही महिलाओं के लिए कार्यक्रम घर आंगन का प्रसारण समय होगा दोपहर 1:10 पर और युवा श्रोता कार्यक्रम युवाणी सुन सकेंगे शाम 5:30 पर। साथ ही ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल आज सजेगा तय समय शाम 7:20 पर। प्रायोजित कार्यक्रम दीदी की गोठ आप सुन सकेंगे दोपहर 2:30 पर। और गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा का आनंद आप ले सकेंगे दोपहर 2:45 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण समय होगा शाम के ठीक 5:00। साथ ही गैर फिल्मी और फिल्मी भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या आप सुन सकेंगे शाम 5:05 पर। लोकगीतों का कार्यक्रम गोधुली का आनंद आप ले सकेंगे शाम 6:20 पर और कार्यक्रम माधुरी सुन सकेंगे शाम 6:30 पर। साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा का आनंद आप ले सकेंगे शाम 7:05 पर और सोशल मीडिया आधारित फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश सुन सकेंगे रात्रि के ठीक 8:00। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी आप सुन सकेंगे रात्रि के ठीक 10:00 जिसमें आज आप सुनेंगे उस्ताद अमजद अली खां के सरोद वादन में राग यमन। साथ ही श्रोताओं की फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम मन भावन का प्रसारण समय होगा रात्रि 10:30 पर। श्रोताओं ये थे हमारे आज के मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10:03 हुए हैं। लीजिए फिर से फोन इन कार्यक्रम गांव का गीत।

0: गांवकर
1: जी
2: राउर मनकर मनलगा कार्यक्रम गांव कर गीत में हाजिर हूँ। मैं राउर मनकर दोस्त धर्म भैया हफ्ता भर राउर मन से मिले बर इंतजार रथे कि ए दफे कौन कौन हमार श्रोता फोन करके अपन मनलगा गीत ला खुदो सुनही और जम्मो झनला सुनवाही भी। कार्यक्रम कर माध्यम से राउर मनकर हाल चाल भी हमन ला भेटा थे। ढेरे दुरियां दुरियां ले हमार श्रोता फोन करते और अपन मन पसंद गीत ला सुनते। देखिए राउर मन से गुड बात होता है, एक ठन फोन आता है तो एला झोकल जाए कि ये हमार पहिल फोन का कर हवे।
3: हेलो
2: गांव कर गीत कार्यक्रम
3: चिंदरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह बोला था।
2: हाँ इंद्रभान भाई बहुत बहुत स्वागत है राउर कर।
3: और मैं आज ड्यूटी नहीं जा पाया हूँ, घर पे हूँ।
2: अच्छा
3: धूप बहुत तेज करी एकदम लगत है।
2: हाँ तभी राउर का जो है आवाज एकदम बढ़िया आता है, नहीं तो रौरे बस में रहती ना तो बढ़िया सुघर आवाज नहीं आता
3: है ना। जैसे कि अब 3:30 बजे हमारे बस आ जाती ड्यूटी में, 3 बजे आ जाते, 3:05 में जाते, 3:10 में आ जाते, और रिकॉर्डिंग का टाइम होते 3:30 से 4।
2: हाँ
3: घर में हो टिकट चलते बढ़िया साफ आवाज सुनाई दे रही। अब वो मैं कहा बस में रहती, अब वो मैं कहा थे कि बाजा बस थे तो हल्ला गुल्ला होते वाइब्रेशन होते वो बस का आवाज बढ़िया नहीं आता।
2: देखिए ये तो कहा है ना कि कार्यक्रम के प्रति राउर बनकर प्यार है कि रौरे जो है बस में रह के बावजूद वो फोन लगाती।
3: कोई सगुजिया तमुरा मध्य का बढ़िया गीत सगुजिया तमुरा गीत ज्यादा पसंद करते।
2: लेकिन सुनी अपन पसंद कर ये सुगरकन गीत।

0: हेलो।
1: हेलो, गांव कर गीत कार्यक्रम।
0: हाँ भैया नमस्कार। गया
1: नमस्कार, राम राम, जय जोहार।
0: योगेश जांगड़े बोला था भैया, सिरवा बांध था।
1: हाँ योगेश जी, राहुल के बहुत बहुत स्वागत है
0: जी। धन्यवाद।
1: सब बने बने है ना?
0: सब बने बने हम भैया, बस बरसात के अगोरा है तो हम खेती बाड़ी काम में लग गो।
1: हाँ कहब की एक दो रोज ले उते बरखा कटिक मारिस की नहीं?
0: नहीं हुआ है भैया अभी फिलहाल।
1: और नौटप्पा में?
0: नौटप्पा में भी बारिश नहीं हुआ है, बहुत धूप है।
1: हमार कति तो कहा है कि एक दो पानी तीन पानी इते मारिस है।
0: अच्छा अच्छा
1: बाकी कहा है कि मानसून बहुत ही जल्द से जल्द आए वाला है, एकदम तैयारी हाँ। करके रखी
0: जी।
1: तो आज कौन सा गीत सुनना चाहब?
0: लक्ष्मण में सूर्य जी का आवाज में कोई भी बढ़िया गीत सुनवा दे।
1: हमारे एक ठन और श्रोता भाई जो हैं लक्ष्मण मस्तूरिया कर गाल गीत कर फरमाइश करीन है। हेलो कार्यक्रम गांव कर गीत।
2: हाँ नमस्कार, वंदे मातरम जी। मैं बनिया पारा धमतरी ने बोला था भैया, रामचंद्र माखीजा काफिर भाई।
1: रामचंद्र जी जय जोहार, राम राम, वंदे मातरम।
2: जय जोहार सर, जय जोहार।
1: कही का हाल चाल?
2: बस हाल चाल बने बने, थोड़ा मानसून दर्द देते तो थोड़ा गर्मी कभी हटा थे बाहर से।

0: हाँ यही कस हाल चाल है सब कति।
1: सब काहे प्रकृति के भरोसे मन के मन है मनुष्य। आप धार कैसे है मौसम भी
0: हाँ यही कस है, जब ढेरे घाम हो जाए ना तहाँ कटिक पानी बूंदा बांदी हो लेहू कति।
1: स्थान के भी फर्क पड़ जाते हैं, स्थान स्थान के फर्क पड़ जाते हैं। हाँ
0: हो फर्क तो पड़ेल। तब सब ठीक ठाक है ना हाल चाल?
1: हाँ भैया, भगवान के दया से बने बने फिलहाल।
0: हाँ हमन कर तो भाई यही चाह रहे कि जो भी हमार कार्यक्रम फरमाइश करता रहें या हमार कार्यक्रम सुनोइया रहें सब बढ़िया रहें सुघर रहें।
1: हाँ हाँ
0: तो आज कौन सा गीत सुना?
1: आप मन सुना हो, लक्ष्मण मस्तूरे साहब जी की आवाज में है। गिरे हुए हफ्ते मन, डरे परे मन ही मन, मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सुगर अकन गीत रउरे कर पसंद है
1: जी।
0: तो लेके सुनी राउत बार ये सुगर अकन गीत।

0: हेलो गांव कर गीत।
1: हाँ गांव कर गीत कार्यक्रम में स्वागत है राहुल कर।
0: हाँ धन्यवाद भैया धन्यवाद।
1: परिचय बताइए अपन।
0: हाँ मैं बेदू राम सिन्हा शीतला पारा केसरा पाटन जिला दुर्गले बोला था भैया।
1: हाँ बेदू भाई बहुत बहुत स्वागत है राहुल कर।
0: धन्यवाद भैया धन्यवाद। गजब दिन बाद गोड़ बात हो था मन ले।
1: राहुल कर किस्मत बढ़िया है काहे लगातार फोन आत रहा ना कभो कभो काहे कि इतना व्यस्त हो जाए कि नहीं लग पाए।
0: हाँ हाँ कहा है टाइम टेबल थोड़ा भुला देता हूँ भैया। अभी देखें सारे दिन मस्त हो है इसे भी टूप पे लगाया हूँ लगी गए।
1: चला अच्छा बात है राहुल कर फोन लगी से। और बताइए हाल चाल।
0: सब बढ़िया भैया। ये धान के नर्सरी करी चलत हवे और रात कन तो थोकन पानी है गिरिस हवे। अब पानी के तैयारी है घलो मौसम अपन तैयारी करत है ऐसे लागत है। अब किसान भाई मन
1: बिल्कुल
0: व्यस्त करे के तैयारी घलो खावे
1: हाँ हाँ हो
0: पानी बादल गिरी तो किसान मन के काम है लही। और मैं है तो अब ट्यूबवेल वाला है तो नर्सरी के तैयारी करत हूँ भैया।
1: हाँ बढ़िया बात है सब कति यही कस हवे सब लागिन है काम बूता में।
0: हाओ हाओ हाओ आ भैया अंबिकापुर के गांव कर गीत के जो मजा हावे ना मैं क्या बताऊं मुंह से बखान करना थोड़ा से दिक्कत है। बड़ा गजब जोरदार लागते जो हमें जो गीत संगीत होते हमारे श्रोता संगवारी में गोड़ बात होते ना मन एकदम गदगद हो जाते भैया।
1: देखिए क्या है हमारा कार्यक्रम जो है राउर मन का जो श्रोता है ना सुनने वाला ओमन कर प्यार है दुलार है कि हमारा कार्यक्रम दिनों दिन बहुत ज्यादा जो है ना फेमस हो जाता है।
0: हाँ भैया मुला तो गांव कर गीत लग बिल्कुल एकदम ध्यान लगा सुनते हूँ भाई। देखे कोनो दिन भुला देना कुछ कारण और नहीं सुन पाऊँ ते दिन एकदम अधूरा अधूरा लागते मुला तो।
1: राहुल ला अच्छा लगल हमार कार्यक्रम हमला बहुत खुशी हो से बात कर। आज कौन सा गीत सुनना चाहब।
0: अब का भैया ये अब अषाढ़ घलो का भैया है पानी बादर के दिन है तो ओकरे माध्यम से कोनो गीत ला चला देते हो जो सबो श्रोता संगवारी मतलब मन आ जाए किसान भाई मन के ऊपर में गीत हो जाते अच्छा हो जाएगी
1: तो लेगी राउर बर हमर पसंद करिए सुघर अकन गीत सुनी।

0: पर गंगा मोर पर काशी मोर पर चारो धाम किसानी
1: मोर पर चारो धाम किसानी मोर पर चारो धाम किसानी
0: मोर पर गंगा मोर पर काशी मोर पर चारो धाम किसानी
1: मोर पर चारो धाम किसानी मोर पर चारो धाम किसानी
0: जियत किसानी मरत किसानी नहीं जानो मैं

0: छत्तीसगढ़ के भूया माँ चित कहे हमर कुरिया,
1: चित कहे हमर कुरिया, चित कहे हमर कुरिया।
0: छत्तीसगढ़ के भूया माँ चित कहे हमर कुरिया,
1: चित कहे हमर कुरिया, चित कहे हमर कुरिया।
0: गाँव के ताई दीदी बहनी बर अब्बड़ हे मोर प्रिया,
1: अब्बड़ हे मोर प्रिया, अब्बड़ हे मोर प्रिया।
0: गाँव के ताई दीदी बहनी

0: हेलो
1: हेलो जयराम भैया,
0: जय राम, जय जोहार
1: मैं नांदघाट कृष्ण से मोतीलाल साहू भैया।
0: मोतीलाल जी। बहुत बहुत स्वागत है राहुल कर।
1: धन्यवाद भैया।
0: और बताइए मोतीलाल जी, सब बने बने?
1: हाँ बने बने भैया। हाँ तो भैया गर्मी 3-4 में जो हो भैया फिर पहुँच जाता है, बीच में बारिश वारिश हो तो रिश्ता कम रही से। हाँ
0: बस अब कही कि ये आखिरी आखिरी है, जोर मारता
1: हाँ
0: है।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया, मानसून के गोरे है भैया आने वाले।
0: हाँ एकदम कहब ना कि लीघे हवे मानसून, खेत कर तैयारी बारी में

0: लगे
1: बिल्कुल
0: हो।
1: बिल्कुल, जैसे गांव में खेत खार की जोताई वोताई चला थे, कतको आदमी के थरा हो रहा दिमाग है जाम चुके हैं, कतको
0: अच्छा
1: झन देवत भी है रोपा लगाए बा
0: हाँ,
1: अभी।
0: तो बाकी सब तो ठीक ठाक ना?
1: हाँ ठीक ही ठाक भैया।
0: तो आज कौन सा गीत सुना? अब
1: और कोई भी अपन पसंद के सुना दो भैया।
0: तो लगी सुनी राउरकर पसंद करिए सुगरकन गीत।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: कार्यक्रम गांव कर गीत में राहुल के बहुत बहुत स्वागत है।
1: और यस के धर्मेंद्र सर जी, राम राम।
0: राम राम, जय जोहार।
1: मैं सुपर स्टार रेडियो श्रोता संघ सारे साल सुनकर जिला सुरज हूँ, छत्तीसगढ़ से प्रेम सारा जोड़े बात कर रहा हूँ।
0: हाँ प्रेम साहब भाई, राहुल के तो आवाज लहमन चिंथी।
1: हाँ महू चिन्ह थो राहुल मन कभी आवाज ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तब सब बने बने ना प्रेम साहब भाई।
1: हाँ सब बने बने, यही तो मौसम है, उतार चढ़ाव करत है और देख तो भारी घाम करे से अभी
0: हाँ
1: है ना। राती तो पानी हल्का फुल्का मारे रही थोड़ा थोड़ा
0: हाँ काल भी अंबिकापुर में भी यही कस होवे।
1: है ना, काहे कि मैं सूत के उठे तो बिहाने देखे तो भाई ये पानी मारे रही।
0: तो खेत कर तैयारी कर ढा रही।
1: अभी तो कुछ नहीं कर रही, अभी बस वही गोबर खाद मला भिजवाई ही, मतलब खेत में
0: तो उसका हाइब्रिड लगा थी।
1: हाइब्रिड ही चलते अब तो, और कुछ लोकल वगैरह गोरखनाथ वगैरह है।
0: अच्छा, तब घर कति तो सब बने बने है ना।
1: हाँ सब बढ़िया है।
0: तो कौन सा गीत सुना आज?
1: तो आज गुलाब सिंह पकड़ा के आवाज में कोई सा भी गीत बजाती था।
0: अच्छा, घर में देखी लड़का छुआ मन भी गोठिया थे।
1: हाँ बहरी है।
0: अच्छा तो लेगी सुनी राउर कर पसंद कर, ये गुलाब सिंह पैकरा जी कर गाल, बड़ा ही सुघर अकन गीत हवे।
2: तोरी खोपा मा चंदैनी गोंदा फूल हवे वो, तोरी खोपा मा चंदैनी गोंदा फूल हवे वो।
3: अब का कथा सुनथस?
4: अरे सुनाए डार,

0: हेलो, कार्यक्रम गांव कर गीत।
1: हाँ भैया, जय जवाहर का।
0: जय जवाहर, राम राम।
1: सुखराम सिंह मराई कौशलपुर भैंसा मरा ले भैया।
0: बहुत बहुत स्वागत है सुखराम जी रावकर। राउर कर आवाज हर कटिक ठीक से सुनाई नहीं देते है सुखराम जी।
1: तनिक नेटवर्क का प्रॉब्लम रहते भैया।
0: अच्छा सुखराम जी, कौन सा गीत सुनना चाहब?
1: विजय सरदार का सुना दिया भैया।
0: अच्छा बहुत बढ़िया, सुगर अकन पसंद है राउर कर तो लेगी सुनी। विजय सरदार जी कर गाल ये बहुत ही सुगर अकन गीत।

0: हेलो।
1: हेलो, कार्यक्रम गांव कर गीत।
0: राम राम भैया।
1: राम राम, जय जोहार।
0: अंबिका पुले राजकुमार निर्माणी, आकाशवाणी के नियमित श्रोता भैया।
1: बहुत बहुत स्वागत है राहुल का। राजकुमार जी, तब बताइए हाल चाल, सब ठीक?
0: हाल का तो ठीक है, लेकिन दादा थोड़ा मौसम तो बहुत ज्यादा गर्मी कर रहा है फिर भैया।
1: हाँ, मौसम तो है, गर्म है, बाकी राती तो पानी गिरे रही सीते।
0: हाँ, लेकिन तो अब देखा जाए तो अब मानसून भी नजदीके हैं भैया।
1: हाँ, ठीक कहें।
0: 10-15 दिनों तो भाई भाई पानी खूब गिरे भैया।
1: हाँ, यही आस है सब किसान भाई मन कर। अब सब तैयारी में लगी है अपन खेत
0: हाँ,
1: बाड़ी
0: सब
1: कर।
0: अपन तैयारी में अभी से लगे ने, तब ना आगे भैया धान वान बुनाई करें किसान मन भैया।
1: हाँ, ठीक कहें,
0: जैसे ममता चंदा कर गाना तुम्हारे पसंद में सुनते हैं भैया। मैं
1: बिल्कुल सुनवा आप राउर के।
0: हाँ भैया, वैसे तो आकाशवाणी अम्बिका और मैं बराबर कोई ना कोई कार्यक्रम से जुड़े रहता हूँ भैया। मैं
1: राउर,
0: और लगभग सभी कार्यक्रम सुनता हूँ भैया अंबिकापुर के। मैं
1: बहुत बहुत धन्यवाद है राउर के कि हमारे सब कार्यक्रम ला सुनती। देखिए हमारे
0: एक
1: कार्यक्रम।
0: दूसरे साथी मिला याद करते हैं भैया।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
0: प्रेम से राजवाड़े मानिक राम प्रजापति और सरुजा रेडियो श्रोता के सभी श्रोता भैया।
1: लेगी राउर बर और राउर मनकर साथी बर, ये सुघर कन ममता चंद्राकर जी कर गाल गीत।

0: हेलो।
1: हाँ हेलो संगवारी।
0: राम राम, जय जोहार। कार्यक्रम गांव कर गीत में रउर कर बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ संगवारी, मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ ले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था वहाँ संगवारी।
0: हाँ वर्मा जी, स्वागत है रउर कर।
1: हाँ जी, अभी कहा भी है, देख बढ़िया खेत के साफ सफाई चला थे, खातू माटी के बिछाई चला थे,
0: हाँ
1: और पानी के गोरम हम भी अभी गर्मी कस के पड़ा था वह, और जैसे ही पानी गिरी तो फिर हमने बुआई के तैयारी करा था वहाँ, और गहरी जोताई करके भी अपन जो है ट्रैक्टर के द्वारा।
0: हाँ
1: हाँ भैया, और दे बढ़िया धान पान के बीजा भत्ता के लेके अपन तैयारी करे हम भैया, बोए बार और थरा दे बार।
0: हाँ
1: हाँ भैया, और काहे जी ये धरती माता के घलो बढ़िया सेवा जतन करत हवन, साफ सफाई करके भैया, है ना, ढेला ढेलवानी दे के, कछुआ डिपरल पाट के, कांटा खुटिल बीन के। हाँ
0: बढ़िया बात है भाई, तभी तो धरती माता उपज दही।
1: भैया, यही काम में दे लगे हवन भैया, है ना।
0: हमार सब कति
1: हाँ
0: किसान भाई लगी ना भाई।
1: भैया, हाँ,
0: तो नारायण जी, आज कौन सा गीत सुनना चाहब?
1: अब यही गाना सुना दो भैया, भूरवा राम मरकाम भूखिया बाई देवार के।
0: तो लगी सुनी राउर कर, पसंद कर ये धुरवा राम मरकाम और दुखिया बाई कर गाल सुघर अकन गीत।

0: हेलो,
1: हेलो गांव कर गीत।
0: गांव कर गीत कार्यक्रम में स्वागत है। राहुल कर, परिचय बताइए।
1: धन्यवाद भैया। कनिया बालाघाट मध्य प्रदेश से ध्रुव राम साहू बोलत हूँ।
0: साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है। राहुल कर,
1: धन्यवाद भैया।
0: और बताइए, सब हाल चाल बने बने।
1: हाल चाल बने बने भैया। खेती किसानी काम धाम चलत है। खाद वाद ले जाके गोबर खाद है खेत में ले जात हन। साथ में काटा कुटाई खेत सब भी नहीं चालू है भैया।
0: सब कति हमार किसान भाई काम भुता में लागिन है,
1: साल भर के काम में पूरे तैयारी लगे हैं।
0: तो घर कति सब बने बने है ना।
1: सब बने बने भैया।
0: तो आज कौन सा गीत है राहुल कर पसंद?
1: हम मित्र मन के नाम ले सकते हो भैया मैं? हाँ
0: जरूर जरूर।
1: हाँ मुन्नालाल पटले जी है, जागेश्वर देवांगन है, सुरेश रमेश साहू जी है, मुन्ना और ये पवन कुमार सेन जी है। इधर सब जन के पसंद में भैया। कोई भी खेती किसानी की सुनाई थे भैया। सीजन चलत है, मौसम चलत है।
0: तो लेगी सुनी राउर बर और राउर मनकर संगता बर ये सुघर अकन गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम गांव घर के गीत। प्रस्तुतकर्ता थे परमेंद्र कुमार, प्रस्तुति सहायक थी एस धर्मेंद्र की। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। कुछ ही क्षण में हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की

0: सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7

0: उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहलें न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बधाई दी है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को और अधिक गतिशील तथा बेहतर रूप देंगे। उन्होंने बुल्गारिया के विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान ये बात कही। डॉ. जयशंकर ने बताया कि भारत और बुल्गारिया द्विपक्षीय सहयोग, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी और वैश्विक स्थिरता तथा प्रगति के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। डॉ. जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का रुख स्पष्ट है। भारतीय वाणिज्य मंडल ICC ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में ICC के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। ICC ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। अमेरिका ने ईरान पर हाल ही में सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ईरान की मीडिया ने बंदराबास, केशम द्वीप, बिनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है। अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आज जयंती है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृहमंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि बिस्मिल ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। श्री शाह ने कहा कि राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी ट्रेन कांड के माध्यम से ब्रिटिश राज की नींव हिला दी थी। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, पंजाब, उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्ज और FM 100.2 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम में पहले गीत के लिए हमें फरमाइश मिली है जातुका किशन से, आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज, शीतल। रेडियो श्रोता संघ ग्राम बेहराम टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलक चंद वर्मा, श्रीमती भगवती वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन समरराज, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, इशिका वर्मा, अंजलि श्वेता वर्मा, महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, गायत्री धनजे, खुदी रोड मानपुर से विजय वर्दे, रानी वैद, नीतू वैद और आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं। फिल्म शोर से यह एक खूबसूरत सा गीत। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद संतोष और इस गीत को आवाज़ दिया है मुकेश कुमार और लता मंगेश।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
3: इस गीत के बाद अगले गीत के फरमाइश करता है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनवाद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शदाब खत्री। गांधी चौक रोपण पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जैतेक बीरक, मीका बीरक। लेवाखेल मोहल्ला चांदूर बिसवा से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, परी खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, देविका कुमारी चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, खुशी वाणी और आप सभी के पसंद पर पेश है यह फिल्म गीत। फिल्म है श्री 420 का यह प्यारा सा गीत। संगीतकार हैं शंकर जयकिशन और गीतकार हैं शैलेंद्र। आइए सुनते हैं आप सभी के पसंद पर यह गीत।

इस गीत के बाद अगली फरमाइश मिली है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, औरंगाबाद से राजेश शामले पाटिल, राजदीप राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, ग्राम बेलर गांव सिहावा से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन। आपने पसंद किया है फिल्म वो कौन थी, इस फिल्म से गीत। गीतकार हैं मदन मोहन, संगीतकार राजा मेहंदी अली खान और आइए सुने इस फिल्म से यह गीत।

0: कार्यक्रम आपकी पसंद की कड़ी में अगली फरमाइश हमें मिली है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर, भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र वर्मा, मेहरनगर अमरखेड़ा महाराष्ट्र से अभिजीत गावड़कर, राही श्रीमती सरिता गावड़कर, प्रिंस एकांश गावड़कर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गावड़कर, प्रणीता गावड़कर, अर्जुन गावड़कर, टुक टुक, आकार हर्ट्स हाइट्स बहादुर नगर, वैशाली शैलेश गावड़कर, सुमित गावड़कर, कुमारी ध्वनि गावड़कर, परी, आदर्श नगर मलोटा से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, शाइना शर्मा, विवान शर्मा, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से फरमाइश मिली है राष्ट्रपाल गजियाभे, तन्मय बेबी अनिष्का राधिका गजभिये, ऊपरकोट बुलंदशहर मोहम्मद सईद अब्बासी, निहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान और अबान अब्बासी, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या करिश्मा कामले, आप सभी के फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म ब्लैकमेल से, आवाज़ है किशोर कुमार की, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, गीतकार हैं राजेंद्र किशन, आप सभी की पसंद पर पेश है यह खूबसूरत सा गीत।
1: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो, कोई लकी नंबर है क्या?
2: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
1: अच्छा, वो कैसे?
2: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है, यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ, समझ गई, यानी 230-600, पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
2: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
1: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है, तो फिर देर किस बात की, अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
2: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।

अब समय है एक और खूबसूरत नगमे का जिसे सुनना चाहते हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम आयशा खान हृदया खान असमा सालिया शोएब खान पोतरा मुमताज़ खान राफ भाई शाहिद भाई गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर वैशाली कटनकर अमरपुर पिंडरा से सुनना चाहते हैं दीपक कुमार रोशन कुमार बंशीलाल और लखी श्रीवास्तव पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू सुजाता साहू शशांक साहू सीमा साहू आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर रही मेहराज जहां आप सभी के पसंद पर लीजिए प्रस्तुत है फिल्म मेरा गांव मेरा देश का यह गीत संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल गीतकार आनंद बख्शी और इस गीत को आवाज़ दिया है लता मंगेशकर ने

0: इस गीत के बाद अगला गीत सुनना चाहा है देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार निभवानी, संगीता निभवानी, आकाश निभवानी, पप्पू जायसवाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा, सीता, सागर, आयुषी, हनी और इनके सभी परिवार के सदस्य ने। बेमेतरा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, मयंक स्टूडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सांभले, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश और धरसीमा से छोटूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, करुणा यादव, अनुराधा, अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाव यादव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू, सीएल यादव। आप सभी के पसंद पर पेश है एक खूबसूरत सा नगमा। फिल्म का नाम है गोलमाल और इस गीत के संगीतकार हैं आरडी वर्मन, गीतकार गुलजार और इस गीत को आवाज़ दिया है किशोर कुमार ने। आइए सुने यह गीत।
1: चलो ख्वाबों को हकीकत बनाएं, सिर्फ अपनों की नहीं गैरों की भी दुनिया महकाएं, मुस्कुराहट बांटें, खुशियां बांटें और बांटें हम सुख दुख सारे, घर आंगन के फोन इन के सहारे, घर आंगन में मन की बातें बतियाएं, मनपसंद गीतों का आनंद पाएं, इसके लिए हमें फोन लगाएं। हर शनिवार सुबह 10:30 बजे से 11 बजे के बीच हमारे नंबर हैं 231-917 और 231-918, कोड है 07774 और कार्यक्रम है आप सभी का पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम बात करें गीत सुनें।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज के आपके पसंद कार्यक्रम को यहीं विराम देने का समय आ गया है। अपनी फरमाइशें हमें भेजते रहिए। अगले अंक में फिर मिलेंगे नए गीतों और नई पसंदों के साथ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। आचार्य
1: और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक आयोजित की जा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कल बिलासपुर में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में सहभागिता की और केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आएंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। शासी परिषद की बैठक में इस दृष्टिकोण को साकार करने और इसे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए ठोस मापने योग्य परिणामों में बदलने पर विचार विमर्श किया जाएगा। शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल समावेशी मानव विकास के ढांचे पर चर्चा करेंगे। बैठक में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ाने तथा देश में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा है कि स्वच्छता केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है। स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब तक स्वच्छता जन आंदोलन का स्वरूप नहीं लेती, तब तक विकसित भारत का लक्ष्य पूर्ण रूप से साकार

0: नहीं हो सकता। श्रीमती ठाकुर ने कल बिलासपुर के पुराना बाजार सकरी क्षेत्र में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल 12 जून को 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। वे प्रदेश में जनसंपर्क कार्यक्रमों के साथ साथ विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री राज्य व क्षेत्रीय टेक्सटाइल्स अधिकारियों के साथ बैठक में भी शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा ने कहा है कि ग्रामीण युवाओं की बेरोजगारी, मोबाइल और ड्रग्स की लत जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार कौशल विकास पर विशेष जोर दे रही है। नवा रायपुर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मिश्रा ने कहा कि सरकार 15 से 29 वर्ष के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अगले 6 महीनों में विशेष कार्य योजना तैयार करेगी। उन्होंने UNDP को प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मोबाइल रिपेयरिंग और अन्य रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की परियोजना बनाने के निर्देश दिए। नकली सोने के बिस्किट को असली बताकर कम दाम में बेचने और लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले अंतरजिला गिरोह के 5 सदस्यों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी जमीन में दबा खजाना मिलने की कहानी सुनाकर नकली सोने के बिस्किट और सिक्के असली बताकर सस्ते दाम में बेचते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 किलो 24 ग्राम नकली सोना, 1 नकली सिक्का, कार और मोबाइल जब्त किए हैं। मौसम विभाग ने रायपुर, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन संभागों के कुछ जिलों में तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं कुछ स्थानों में आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। प्रदेश में प्री मानसूनी गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं। केशकाल घाट के 7वें मोड़ पर एक ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण केशकाल घाट पर मेगा जाम लग गया है। घाट के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। आवागमन प्रभावित हुआ है। पुलिस प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंचकर यातायात सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय रेल ने यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए देशभर के रेलवे स्टेशनों पर फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत स्टेशन भवनों, विद्युत प्रणाली, एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन व्यवस्था, आपातकालीन निकास मार्ग तथा अग्निशमन उपकरणों की जांच की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक आयोजित की जा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कल बिलासपुर में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में सहभागिता की और केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आएंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ ही में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छुपी होती है एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी का।

0: वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
1: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
0: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
0: जी
1: श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
0: जी
1: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा

0: हैं, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती हैं। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजीत जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
1: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
0: जी
1: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
0: जी
1: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
0: श्रोताओं, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
1: तो श्रोताओं, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं।
0: जी
1: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है। यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है
0: जी
1: या नारंगी या लाल भी हो सकता है, किस्मों और स्थान के अनुसार।
0: जी
1: इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
0: जी
1: फिर क्या होता है?
0: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भूनकर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
1: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
0: जी
1: तो श्रोताओं, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
0: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
1: जी विमलेश जी, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था।
0: जी
1: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
0: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
1: जी श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
0: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओ, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
0: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियां उनके लिए अनुकूल हैं।
2: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री

0: अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
1: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहाँ बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पौंडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945

0: पुलिस के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
1: जी
0: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
1: अच्छा,
0: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
1: जी
0: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
1: वो क्या था सुबोध जी?
0: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
1: जी
0: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती में कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
1: जी
0: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करें। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
1: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
0: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
1: जी
0: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
1: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
0: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
1: जी
0: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
1: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
0: हाँ क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
1: हाँ?
0: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
1: और ब्रह्मचर्य?
0: रामकृपाल
1: जी,
0: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
1: जी
0: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
1: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था, ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
1: जी
0: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
1: जी हाँ,
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें 1-2 विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य

0: लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
1: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
0: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
1: जी,
0: अब सवाल ये है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आएं। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है। उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं, बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5 इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जैसे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल,
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है।

0: उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पांडिचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
2: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

की सैर तो हो गई इस गीत में, अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हाँ मिलकर भी।

0: मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तुम्हारे घर के पास मेला लगे तो जरूर जाना। और हाँ, अकेले नहीं, किसी के साथ। और वहां से आकर अपनी मेले की सैर के बारे में अपने साथियों को भी बताना कि क्या देखा वहां।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शीर्षक पर आधारित कार्यक्रम चयन। कार्यक्रम चयन में आज का शीर्षक है मानसून और हमारी यादें। नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी के कार्यक्रम चयन में आपका स्वागत है। दोपहर की इस मधुर बेला में मैं हूं आपकी रेडियो साथी अंकिता। उम्मीद है कि आपका दिन सुखद और उत्साहपूर्ण बीत रहा होगा। तो आइए अगले कुछ पलों को संगीत के नाम करते हैं और सुनते हैं सदाबहार गीतों का गुलदस्ता जो आपके मन को सुकून और चेहरे पर मुस्कान दे जाए। कार्यक्रम की शुरुआत में आज पहले गीत के साथ लीजिए प्रस्तुत है फिल्म स्वामी से। गायक हैं किशोर कुमार, संगीतकार राजेश रोशन, गीतकार अमित खन्ना। आइए सुनते हैं यह गीत।

0: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, डीजे वाले बाबू
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: इंस्टा फरमाइश, आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
1: बेबी को बेस पसंद है।
3: दोस्तों, बारिश की पहली बूंद जब धरती को छूती है तो केवल मिट्टी ही नहीं महकती, बल्कि हमारी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। मानसून अपने साथ कागज़ की नावें, भीगी गलियों में खेलना, गर्म चाय और पकौड़ों की खुशबू और अपनों के साथ बिताए अनमोल पल लेकर आता है। कार्यक्रम में मानसून की बातें हम और करेंगे, आइए सुनते हैं एक गीत। गीत हमने लिया है फिल्म चेहरा से। गायक हैं कुनान गंजावल और श्रेया घोषाल। संगीतकार हैं निखिल विनय। गीतकार हैं समीर। तो लीजिए, प्रस्तुत है यह खूबसूरत सा गीत।

बारिश की रिमझिम फुहारें हमें उन सुनहरे दिनों की याद दिलाती हैं जब छोटी छोटी खुशियों में ही पूरा संसार बसता था। कभी दोस्तों के साथ भीगना, कभी छत पर बैठकर बारिश देखना, तो कभी खिड़की के पास बैठकर प्रकृति को निहारना। ये सभी यादें मानसून को और भी खास बना देती हैं। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत संगीत। सट्टे पे सट्टा फिल्म से हमने लिया है, जिसके संगीतकार हैं आरडी बर्मन और गीतकार हैं आशा और दिलराज कौर। लीजिए प्रस्तुत है यह गीत।

श्रोताओं, मानसून केवल मौसम नहीं बल्कि भावनाओं, स्मृतियों और खुशियों का संगम है जो हर वर्ष हमारे जीवन में नई ताजगी और पुरानी मिठास लेकर आती है। लीजिए प्रस्तुत है एक और खूबसूरत सा गीत। लगान फिल्म से हमने लिया है, गायक हैं अलका याग्निक और उदित नारायण, सुखविंदर और साथियों की आवाज़ में, संगीतकार हैं जावेद अख्तर, गीतकार AR रहमान। लीजिए सुनिए यह गीत।

0: इस विशेष कार्यक्रम का आधार है। लीजिए प्रस्तुत है एक और खूबसूरत सा गीत। फिल्म है जवानी दीवानी और गीतकार हैं शब्बीर अहमद, संगीतकार साजिद वाजिद अली, और इस गीत को आवाज़ दिया है अभिजीत सावंत और श्रेया घोषाल ने।
1: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
2: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
1: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
2: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
1: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडिया वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ के साथ अब FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर भी।

दोस्तों, मौसम बदलते हैं लेकिन उनसे जुड़ी यादें अक्सर हमारे दिल में हमेशा ताज़ा रहती हैं। कभी बारिश की फुहारें बचपन की शरारतें याद दिलाती हैं, तो कभी ठंडी हवाएं किसी अपने के साथ बिताए खूबसूरत पल। मौसम और यादों का रिश्ता बहुत ही गहरा होता है और यही एहसास

0: समाप्त होते हैं।
1: इसी गीत के साथ कार्यक्रम चयन यहीं समाप्त होता है। मुझे यानी अपनी रेडियो साथी अंकिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर का एक बजने वाला है। हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद के बैठक के अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल, सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि के रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहलें न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

शोभा करांदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष

0: ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा में भारत में निर्मित पहले एयरबेस C-295 के प्रथम परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि एरोस्पेस विनिर्माण देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी अभियंताओं और कर्मचारियों को बधाई दी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.4% की बढ़त दर्ज हुई। ताज़ा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 74,301 और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 23,297 पर था। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। पेश है खेती की बात का पुनः प्रसारण।
2: एक पौष्टिक खाद्यान्न फसल है जिसके 100 ग्राम दाने में 8.7 ग्राम प्रोटीन, 75.7 ग्राम शर्करा, 5.3 ग्राम वसा, 8.6 ग्राम कच्चा रेखा होता है। इसके अतिरिक्त 1.7 मिलीग्राम खनिज तत्व, 17 मिलीग्राम कैल्शियम और 220 ग्राम मिलीग्राम फास्फोरस पाया जाता है। पोषक तत्वों से संपूर्ण कुटकी की खेती वर्षा आधारित है। हमारे क्षेत्र में कई कारणों से इसकी उत्पादकता का दोहन नहीं हो पा रहा है और रकबा भी दिनों दिन कम होता जा रहा है। इसकी वजह है हल्के असमतल एवं कम उपजाऊ भूमि में काश्त, उन्नत काश्त तकनीक का प्रयोग न करना, खेतों की अपर्याप्त तैयारी, उन्नतशील और अच्छे उत्पादन देने वाले किस्मों के बीज का अभाव, खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना और पौध संरक्षण का अभाव। इन सभी कारणों के मिश्रित प्रभाव के कारण उत्पादकता का दोहन नहीं हो रहा है। उन्नत काश्त तकनीक अपनाकर क्षेत्र के आदिवासी कृषक कुटकी की अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं और अपना जीवन स्तर सुधार सकते हैं। किसान भाइयों, भूमि चुनाव और तैयारी की बात करें तो कुटकी की खेती पारंपरिक रूप से उच्चहन भूमियों में की जाती है। इसकी खेती भारी दोमट और रेतीली भूमियों में जिसकी जल निकास क्षमता अच्छी हो में आसानी से की जा सकती है। ये हल्की अम्लीयता वाले भूमियों खेती के लिए सर्वथा उपयुक्त होती है। हल्की क्षारीय एवं लवणीय भूमियों में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जाती है। किसान भाई इसकी खेती मरहान और टिकरा भूमियों में भी करते हैं। मरहान भूमि पथरीली और कंकड़युक्त कम उपजाऊ भूमि होती है, जबकि टिकरा भूमि ढलाव वाली रेतीली लोम भूमि होती है जो कि अपेक्षाकृत सामान्य उपजाऊ भूमि होती है। बिना बाधाने वाली अच्छी उपजाऊ भूमि में कुटकी की खेती आसानी से की जा सकती है। यह फसल थोड़े पानी के जमाव को सहन कर लेती है, अतः हल्की बाधान वाली खेती में भी इसकी खेती की जा सकती है। इस प्रकार की तैयारी खरीफ मौसम की पहली बरसात के साथ ही शुरू करना चाहिए। देशी हल या ट्रैक्टर से खेत को 2 बार आड़ी और खड़ी जुताई करनी चाहिए। इसके बाद पाटा चलाना चाहिए जिससे खेत समतल हो जाए। मरहान जमीन की जुताई से ऊपर आए पत्थरों को हटाकर गोबर की खाद को मिलाना चाहिए। इससे भूमि की उर्वरता शक्ति में वृद्धि होगी और अच्छी पैदावार भी मिलेगी। वर्षा की पहली बौछार के साथ जुताई करने से भूमि की जलधारण क्षमता में वृद्धि होगी और अवर्षा की स्थिति में भी

0: अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकेगा। इस प्रकार तैयार भूमि से अच्छी पैदावार किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई, कुटकी एक शीघ्र पकने वाली फसल है, अतः अच्छी पैदावार प्राप्त करने हेतु मानसून के आगमन के साथ ही बुआई जून के प्रथम पखवाड़े से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक कर देना चाहिए। यह पाया गया है कि जून में बोई गई फसल अगस्त अंत तक पककर तैयार हो जाती है, परंतु इसी समय अंचल में वर्षा भी होती रहती है, अतः कटाई में परेशानी होती है। साथ ही साथ फसल पकने पर चिड़ियों द्वारा भी नुकसान होता है, लेकिन बड़े पैमाने में कुटकी की फसल लगाने से इस नुकसान को कम किया जा सकता है, अतः बुआई जून में ही करके किसान अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई, हम जानते हैं कि यह एक शीघ्र पकने वाली फसल है, अतः असिंचित अवस्था में द्विफसली खेतों की प्रबल संभावना बनती है। इसकी खेती एक फसली के रूप में भी किसान भाई करते हैं और खरीफ मौसम के विभिन्न समयों में इसकी बुआई करते हैं। खेती उच्चहन भूमि में की जाती है, अतः कुटकी के साथ दलहनी और तिलहनी फसलों की अंतर्वर्तीय या मिलवा खेती भी की जा सकती है, जिससे कृषकों को अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। किसान भाई, अंतर्वर्ती फसल के रूप में अरहर, सोयाबीन, अरंडी एवं तिल की खेती भी की जा सकती है। इन्हें मिश्रित खेती एवं विभिन्न कतार अनुपात में लगाना चाहिए। अंतर्वर्तीय फसल के रूप में यदि दलहनी फसलों का प्रयोग किया जाए तो यह वायुमंडलीय नत्रजन का स्थिरीकरण कर भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है और अच्छा उत्पादन भी प्राप्त होता है। बुआई जून में वर्षा के आगमन के साथ करने से फसल अगस्त माह तक पक जाएगी और उसी खेत में अरंडी, कुल्थी, रामतिल या तोरिया बुआई करके असिंचित खेती में दो फसल आसानी से ली जा सकती है। किसान भाई, बीज दर की बात करें, अच्छे अंकुरण प्रतिशत वाले 6 से 8 किलोग्राम स्वस्थ बीज एक हेक्टेयर की कतार बुनी करनी चाहिए। छिड़काव विधि से बुआई करने पर 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की जरूरत होती है। अंतर्वर्ती अथवा मिश्रित फसल लेने पर बीज की मात्रा कतारों के अनुपात पर निर्भर करती है, जो कि शुद्ध फसल से कम होती है। इस तरह किसान भाई जो है कुटकी की खेती करके बढ़िया लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बात का पुनः प्रसारण। दिन के 1:10 हुए हैं। प्रस्तुत है शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

नमस्कार बहनों, घर आंगन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज कार्यक्रम में मैं हूं आपकी रेडियो सखी ऋतु सिंह। बहनों, आज के समय में मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। ऑनलाइन बैंकिंग से लेकर बच्चों की पढ़ाई और घरेलू व्यवसाय तक हर काम डिजिटल माध्यम से होने लगा है। तो वहीं इतनी सारी सुविधाओं के साथ दूसरी ओर साइबर अपराधों का खतरा भी काफ़ी बढ़ गया है। बहनों, ऐसे में हम सभी की साइबर सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने है। आज के समय में अन्य लोगों की तरह लड़कियां व महिलाएं भी सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग व डिजिटल भुगतान का अधिक से अधिक उपयोग करती हैं। ऐसे में फर्जी लिंक, ऑनलाइन ठगी, साइबर बुलिंग, फेक प्रोफाइल और निजी जानकारी की चोरी जैसी घटनाएं काफ़ी आम बात हो गई है। इसलिए वास्तविक जीवन की ही तरह डिजिटल दुनिया में सुरक्षा के लिए सावधानी बहुत आवश्यक है। बहनों, हमें डिजिटली सुरक्षित रहने के लिए अनजान लिंक या संदिग्ध संदेशों पर क्लिक करने से बचना चाहिए। इससे हमारा मोबाइल हैक हो सकता है, बैंक खाते की जानकारी चोरी हो सकती है या निजी तस्वीरें व दस्तावेज भी गलत हाथों में पहुंच सकते हैं। इसलिए किसी भी लिंक या संदेश पर भरोसा करने से पहले उसकी सत्यता अवश्य जांच लें। बहनों, कुछ छोटी छोटी सावधानियां हमें डिजिटली बहुत बड़ी सुरक्षा दे सकते हैं, जैसे

अपने आसपास, जैसे अपने जो पासवर्ड हैं वो काफ़ी मजबूत और अलग अलग रखें, अलग अलग जो भी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके लिए। OTP, ATM पिन या बैंक संबंधी जानकारी किसी के भी साथ साझा ना करें। सोशल मीडिया पर निजी जानकारी और लोकेशन सार्वजनिक ना करें। केवल परिचितों व विश्वसनीय लोगों की ही फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करें। अपने मोबाइल व ऐप्स को समय समय पर अपडेट करते रहें। बहनों, यदि किन्हीं कारणों से आपसे कोई भी साइबर अपराध, आप में से कोई भी साइबर अपराध का शिकार हो जाए तो घबराए नहीं। उससे संबंधित संदेश, स्क्रीनशॉट या अन्य प्रमाणों को सुरक्षित रखें और तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें। इसके अलावा हम www.cybercrime.gov.in पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हमें बस ये याद रखना है कि जितनी जल्दी शिकायत होगी, नुकसान रोकने की संभावना उतनी अधिक होगी। बहनों, डिजिटल तकनीकों से डरे नहीं, बल्कि समझदारी के साथ उनका उपयोग करें। याद रखें कि जागरूकता ही साइबर सुरक्षा का सबसे मजबूत हथियार है। और बहनों, आपकी हमारी इस बातचीत के बाद अब कार्यक्रम में समय है एक गीत सुनने का। तो आइए सुनते हैं मोनाली ठाकुर की आवाज़ में फिल्म लुटेरा का ये गीत।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: और बहनों, इस जरूरी संदेश के बाद अब कार्यक्रम में समय है आपके हमारे पसंदीदा गुलदस्ता क्रम का। आज गुलदस्ता क्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कविता पाठ, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं रीनू जैन। तो आइए सुनते हैं ये कविता पाठ।
5: नमस्कार, मैं रीनू जैन आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि आधारित है सोशल मीडिया के ऊपर। मेरी कविता का जो शीर्षक है, वो उसका नाम है वो भी क्या वक्त था। वो भी क्या वक्त था जब बातें लंबी होती थी, हंसी खुल के निकलती थी, रिश्ते दिल से जुड़ते थे और आँखों से अनकही का इजहार होता था हाँ, वो भी क्या वक्त था हमने जिसे जिया है। खुशियाँ जिसमें इमोजी तक सीमित नहीं थीं, अपनी भावनाओं को हम व्यक्त करना जानते थे। अपने स्टेटस के द्वारा उसे प्रदर्शित नहीं किया करते थे जहाँ लंबी लंबी चिट्ठियाँ प्रेम से लिखी जाती थी, जहाँ छोटी छोटी बातें गहराई लिए होती थी, जहाँ जन्मदिन की शुभकामनाएं HBD तक सीमित नहीं होती थी। आज की डेट में जब आप किसी को बर्थडे विश करते हैं तो उसमें लिख देते हैं HBD, समय इतना नहीं है कि आप उसे पूरा लिख पाएं कि हैप्पी बर्थडे टू यू। तो उसी के लिए यह पंक्ति है कि जहाँ जन्मदिन की शुभकामनाएं HBD तक सीमित नहीं होती थी, वो भी क्या वक्त था। जहाँ दूर भी कोई नज़र आ जाता तो ज़ोर से उसका नाम कहकर गले मिलते थे और आज हम लास्ट सीन दूसरों से छुपाने में लगे हैं। एक प्राइवेसी होता है जिसमें कि हम लास्ट सीन छुपा देते हैं कि दूसरे को पता ना चले कि हम ऑनलाइन हैं। तो आज हम लास्ट सीन दूसरों से छुपाने में लगे हैं, इस बहाने व्यस्तता का ढोंग रच रहे हैं और तो और, एक सीन का नोटिफिकेशन दिख जाता है कि किसी ने हमारी बातों को, हमने जो उसे भेजा है मैसेज, वो दिख गया है उसे। तो और एक सीन का नोटिफिकेशन आज की अधूरी मोहब्बत बन गई है। प्रेम की गहराइयों में जो बातों का इजहार होता था वो अब इमोजी तक सीमित हो गया है। हाँ, वो भी क्या वक्त था। दिल ना मिलने पर भी हाल चाल तो पूछ ही लेते थे। ब्लॉक करके खुद को समेट नहीं लिया करते थे। आज की डेट में जब आपको किसी से बात नहीं करनी है तो आपको ठीक नहीं लगता तो ब्लॉक कर देते हैं दिखावे के इस दौर में हम खुश तो नज़र आ रहे हैं पर है नहीं दूर दूर तक लोगों से संबंध तो हो रहे हैं पर रिश्ते

नहीं। दूर दूर तक लोगों से संबंध तो हो रहे हैं पर रिश्ते नहीं। वो भी क्या वक्त था जब शाम का इंतज़ार होता था और यह प्रश्न होता था कि आज क्रिकेट का बल्ला कौन लाएगा। वो थका हुआ चेहरा जब घर आता तो दोस्तों से मिलने की उत्सुकता की खुशी लिए होता तो दोस्तों से मिलने की उत्सुकता की खुशी लिए होता और आज हम किसी अंधे के अनजाने से कुछ भी खेल रहे हैं। आज जो आप लोग गेम्स खेलते हैं उसमें सामने वाला आपको दिखाई नहीं देता है, तो आज हम किसी अनदेखे अनजाने से कुछ भी खेल रहे हैं यह भूल कर कि वो शायद हमसे खेल रहा है फॉलोवर्स तो हमारे बढ़ रहे हैं आप जब भी कुछ चीज़ डालते हैं तो आप पहले देखते हैं कितने लोगों ने फॉलो किया देखा, तो फॉलोवर्स तो हमारे बढ़ रहे हैं और दोस्त घट रहे हैं और घटते ही जा रहे हैं। शायद फीलिंग ब्लेस्ड और फीलिंग ऑसम दिखने में हमने फीलिंग को ही कहीं खो दिया है अब तो हमारी मुस्कुराहट दिल से नहीं कैमरे के ऑन होने पर निकलती है और भीतर की खुशी से ज़्यादा फिल्टर चेहरे की चमक दिखाती है वो भी क्या दिन थे जब हम अपने दर्द को अपनों से बयां करते थे, जब हमें उन्हीं से ही सही नसीहत भी मिला करती थी। कब से हम इतने अकेले हो गए कि आज हम अपने उन्हीं दर्द की मार्केटिंग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में लोग अपनी बातों को, अपने दुख को लोगों तक बताते हैं, उसे पब्लिश करते हैं या वीडियो बनाते हैं। उसी के लिए है ये कि वो भी क्या दिन थे जब हम अपने दर्द को अपनों से बयां करते थे, जब हमें उन्हीं से ही सही नसीहत भी मिला करती थी। पर कब से अकेले हो गए हैं कि आज हम अपने उन्हीं दर्द की मार्केटिंग कर रहे हैं। जो हमसे अनजान है अब वह उसे खरीद भी रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं जो उनको जानते भी नहीं है, तो जो हमसे अनजान है अब वह उसे ही खरीद भी रहे हैं। काश आज हर इंसान को यह अक्ल आ जाए कि अपनी बात को कहने का एक वाजिब वक्त होता है, अपनी बात को कहने का एक वाजिब अवसर भी होता है, और जो बात बोली गई है हर बात उस वक्त वाजिब नहीं होती। तो सोशल मीडिया का ये दुष्प्रभाव जो अभी तक मैंने अपनी कविता में आपको बताया, लेकिन उसमें कुछ उसकी कुछ चूंकि वो आ चुका है, हमें उसको एक्सेप्ट भी करना है, तो उसके लिए भी कुछ पंक्तियां हैं। पर थोड़ा तो सोचा जाए जो हम देखना चाहते हैं वही तो वह दिखाता है, जो हमें ऊंचाइयों की राह दिखा रहा है क्यों ना उस पर अब यकीन किया जाए और उसे ज्ञान का साधन बनाया जाए। क्यों ना एक क्लिक से ज्ञान, एक पोस्ट से प्रेरणा या एक वीडियो से खुद की जिंदगी बदली जाए। क्यों ना हम जो खो रहे हैं उसको पाने में लग जाएं, थोड़ा ऑफलाइन रहकर देखें अपनों को समय देकर देखें आओ कि अब फ्रेंड रिक्वेस्ट पर रोक लगाते हैं और थोड़ा दिल की बात को एक्सेप्ट करते हैं आज बिना कैमरे के मुस्कुराते हैं और लाइक की जगह खुद पर ही यकीन करते हैं आओ कि अब जान लेते हैं कि टाइमलाइन तो बदली जा सकती है पर लाइफलाइन नहीं मेरी अगली कविता है खुद को आवाज़ दे। परिंदे खोल अपने पंख, उड़ान तेरा हक है,
तेरे आगे कोई सरहद नहीं, तेरे भीतर एक आस

0: आसमां है, बस उसे पहचान। अकेला है तू पर तन्हा नहीं, तेरे भीतर एक आवाज है जो बस तुझे सुनाई देने की आस में है, तो चल आवाज दे खुद को। दुनिया व्यस्त है अपनी हलचल में, दुनिया व्यस्त है अपनी हलचल में, किसे फुर्सत तेरी खामोशी सुनने की। जरा अपने जज्बात को दे लफ्ज, अपने ख्वाबों को दे बयां, और हर ठहरी हुई धड़कन को दे एक नया अरमा। हाँ आवाज दे खुद को। शुरुआत में कोई साथ नहीं देता, हर सफर पहले कदम से ही तय होता है, पर अगर तू बढ़ चला तो राह खुद बनती जाती है। गिरकर भी उठ, ठोकरों को सीढ़ी बना, और हर हार को एक नया आगाज दे। परिंदे खोल अपने पंख, आवाज दे खुद को। अगर हालात ना बदले तो नजरिया बदल, सोच बदल, और अपने सपनों को एक नई दिशा दे। पुराने सांस से नई धुन छेड़, हर टूटे सुर में नई तान भर, और वक्त को दे नया अंदाज। हाँ खुद को आवाज दे। जब राख से उठने का वक्त आए तो रुक मत जाना, जब राख से उठने का वक्त आए तो रुक मत जाना, क्योंकि तेरे भीतर अब भी वो चिंगारी बाकी है। उठ उड़, अपने ही आसमान में एक नई उड़ान भर, खुद पर भरोसा रख, खुद को फिर से गढ़, और परिंदे एक बार फिर परवाज दे खुद को। परिंदे खोल अपने पंख, आवाज दे खुद को। धन्यवाद।
1: बहनों, अभी आपने गुलदस्ता क्रम के अंतर्गत सुना कविता पाठ, जिसमें प्रस्तुति थी रीनू जैन की। और बहनों, इस गुलदस्ता क्रम के बाद अब कार्यक्रम में समय है फिर से एक गीत सुनने का। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म पाकीज़ा का ये गीत।

और बहनों, इस गीत के बाद अब कार्यक्रम में समय है घरेलू नुस्खे के क्रम का। बहनों, बहुत अधिक गर्मी के बाद जब बारिश का मौसम आने वाला होता है, तब घरों में चींटियां, मच्छर, मक्खियां और दूसरे कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ने लगती है। ऐसे में कुछ आसान घरेलू उपाय काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं, जैसे नीम की सूखी पत्तियों या कपूर को शाम के समय जलाकर उसका हल्का धुआं करने से मच्छर और छोटे कीट घर से दूर रहते हैं। घर के कोनों और खिड़कियों के पास पानी में थोड़ा सा सफ़ेद सिरका और नींबू का रस मिलाकर यदि हम छिड़काव कर दें तो चींटियां और मक्खियां भी कम आती हैं। और बहनों, यदि कहीं से चींटियां बहुत आ रही हों तो जहां से चींटियां आ रही हैं वहां पर हल्दी का जो पाउडर है वो भी डाल देने से चींटियां चली जाती हैं। पुदीना, लेमन ग्रास या फिर तुलसी के पौधे घर के आसपास लगाने से भी मच्छर घर से दूर रहते हैं और इनकी जो खुशबू है उससे भी वातावरण जो है वो अच्छा फ्रेश बना रहता है। और बहनों, बारिश आने के पहले अपने अनाज के डिब्बों में यदि हम कुछ सूखे हुए नीम के पत्ते या सूखे हुए तेज पत्ते रख दें तो इससे अनाज में घुन और छोटे कीड़े नहीं लगते। तो बहनों, अब घरेलू नुस्खों के बाद कार्यक्रम में समय है एक गीत सुनने का। तो आइए सुनते हैं फिल्म जीवा का आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत।

और बहनों, इस गीत के बाद हमारा घर आंगन कार्यक्रम से चलने का समय हो गया है। लेकिन चलने से पहले आपको बताते हैं हमारे कार्यक्रम का पता। हमारा पता है कार्यक्रम घर आंगन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अंबिकापुर, पोस्ट बॉक्स नंबर 27, पिन कोड है 497001। और बहनों, आप हमें मेल भी कर सकती हैं, इसके लिए ईमेल एड्रेस है gharangan@gmail.com। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताएं। अब आज के कार्यक्रम से मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी को ऋतु सिंह का नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर आंगन, मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स और FM बैंड पर 100.2 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:40 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज।

कार्यक्रम में पहला फरमाइश आया है विदर्भ संघ जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुंधरा वज्रसेन बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य से है रामचंद्र माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही पूजा, छुटकी शरद कुमार डोडमानी, जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, कीर्ति भारती। पसंद करने वाले श्रोता हैं आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार, पता ये मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। कुर्मा जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से दिलदार मेरी, ज्योति जानवी, दीक्षांत मेरी, ग्राम राजापुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत कुमार प्रजापति, ग्राम कालापारा सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता, पांडेराम राजवाड़े। कोरासी भैंसा रायपुर छत्तीसगढ़ से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज साहू, सुष्मिता साहू, दीपिका साहू। पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, बोहड़ा बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत और टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र भगत, छाबड़ा इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। और लीजिए प्रस्तुत।

अभी आप सुन रहे थे प्रेम गीत फिल्म का। यह गीत गायक हैं सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल, संगीतकार इंदवीर, गीतकार जगजीत सिंह। और अगला फरमाइश के लिए हमारे पास फरमाइश करता है जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शाह, अजय कुमार गुप्ता, रिमी तनुश्री गुप्ता, नन्हे मुन्हे अन्विका बेबी, पिहरा बाजार डुमरी, तिलैया गिरिडीह से अभय कुमार सनातनी, शिवानी प्रियंका, मुन्नी देवी शाह, जयप्रकाश साव, रिया जिया टूसी, आयुषी अनिरुद्ध, बसंतलाल साव, मीरा सिंह, ज्योति सिंह, ये समस्तीपुर बिहार से इन्होंने फरमाइश भेजा है। ग्राम पंचायत खोंदला, उदयपुर सरगुजा छत्तीसगढ़ से ज्योधन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा, ऐश्वर्या पैकरा। ग्राम दवनसरा पोस्ट दवना, जिला सूरजपुर से कपिल राज देवांगन, दखल कल्लो भाई झांगुर लाल, ब्रिजेंद्र कुमार चक्रवर्ती, उदेश्वर देवांगन, दिलहरन बिप्ता। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा। मोतालाल महाराष्ट्र से विजय सुलकर, रतनमाला कुमकुम सुरलकर। इनकी पसंद का, आप सभी के पसंद

का आइए सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत। फिल्म है होटल। गीत के संगीतकार हैं उषा खन्ना और गीतकार हैं इंदवीर। इस गीत को आवाज़ दिया है आशा भोसले और मनहार उदास ने। लीजिए प्रस्तुत है यह गीत।

ईमेल की गूंज कार्यक्रम में अगला फरमाइश आया है ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मारवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा बिमला अनेजा बलवीर सिंह जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो रोजी डिस्कैस्ट्रो पार्ल डिस्कैस्ट्रो विलिस डिस्कैस्ट्रो कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगर जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान मोहिनी चौहान कल्पित चौहान बेबी गर्वी प्यारा मुन्ना हिमाक्ष मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा मधु बालूजा सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक आकांक्षा मलिक माही मलिक शिवकुमार चौहान आशिक संक्रांति रितेश कुमार राजेश्वरी चौहान उत्कर्ष चौहान डुग्गू बाबा कुटीर रायगढ़ से रघुनाथपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिना हर्षित खुशी गोस्वामी अकलतरा से दिलीप चंद्र निखिल चंदन वसुंधरा चंदन प्रांजल चंदन ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफाज अब्बासी फरदीन अब्बासी सुहान अब्बासी अरजान अब्बासी अब्बान अब्बासी तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श बेगम राबिया शेख शेख रहीम मुन्ना दानिश आसिफ शेख महाराष्ट्र से संतोष भाकरे सनयना भाकरे सुकन्या और सविता भाकरे शाहजीनगर तेलुगु से हैं ये और सागर लखदौन मध्य प्रदेश से लाडली जी चौबे रिमझिम चौबे और सक्षम चौबे जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी महेंद्र कुमार तिवारी बेबी जोई यामिनी तिवारी और उमा तिवारी सेक्टर 4 कमल विहार रायपुर से रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी आप सबके पसंद का डीजे प्रस्तुत है गीत फिल्म जे हम तुम चोरी से संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी आइए सुनते हैं आप सबके पसंद का यह गीत

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म सावन को आने दो, इस फिल्म से गीत। आवाज़ है यशुदास और संगीतकार राजकमल, गीतकार इंदवीर।

लीजिए, प्रस्तुत है दीदी के गोठ कार्यक्रम का। ये कार्यक्रम हम रायपुर के आकाशवाणी केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।

0: কি ভরা হগে কই, মেকা জানা থা। वैसे एक बात तो है चंदा।
1: का दीदी?
0: हमर बिहान के दीदी मन हा बहुत बढ़िया बढ़िया गुणवत्ता वाले जिनिस बनाते।
1: हाँ, वो बात तो है। हाँ।
0: जैसे बेल मेटल है, कोसा है, माटिक सामान है, मिलेट कुकीज हो गए।
1: हाँ,
0: तो ये कह सकते हैं कि हर जिनिस के उत्पादन करते हैं हमारे दीदी।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और दीदी, इसमें अच्छी पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मानकीकरण जो है ना, वो बहुत बड़ी चुनौती थी। और इसी चुनौती को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान द्वारा खुद का एक ब्रांड छत्तीस कला लाया गया।
0: और छत्तीस कला ब्रांड छत्तीसगढ़ के नारी मन के सृजन के चिन्हारी आवे। कोसा सिल्क के ताना बाना ले लेके बाजार में मांग के अनुसार सब सामान के उत्पादन भर लगे स्व सहायता समूह के लाखों दीदी मन के आत्मनिर्भरता के निशानी आवे,
1: जिसे एक नाम देकर 19 नवंबर 2025 को छत्तीस कला ब्रांड का शुभारंभ माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष श्री रमन सिंह जी, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया था।
0: हो दीदी हो, छत्तीस कला ब्रांड के शुभारंभ हमर बर गर्व और तरक्की के आधार आवे।

0: सुरुज दीदी, छत्तीस कला एक नाम से कहीं बढ़कर एक समान गुणवत्ता, भरोसेमंद बाजार, हर एक ग्रामीण शिल्पकार दीदियों के लिए एक स्थायी आजीविका का वादा है। वर्तमान में छत्तीस कला ब्रांड के अंतर्गत उत्पादों की बिक्री विभिन्न माध्यमों जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन बाजार, ट्रेंडिंग चैनलों एवं गिफ्टिंग सेगमेंट के माध्यम से सफलतापूर्वक की जा रही है।
1: और जाना था चंदा
0: का दीदी,
1: बिहान के अंतर्गत दीदी मन, महिला उद्यमी मन के बना

0: भरोसेमंद बाजार हर एक ग्रामीण शिल्पकार दीदियों के लिए एक स्थायी आजीविका का वादा है। वर्तमान में 36 कला ब्रांड के अंतर्गत उत्पादों की बिक्री विभिन्न माध्यमों जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन बाजार, ट्रेंडिंग चैनलों एवं गिफ्टिंग सेगमेंट के माध्यम से सफलतापूर्वक की जा रही है।
1: और जाना था चंदा
0: का दीदी,
1: बिहान के अंतर्गत दीदी मन, महिला उद्यमी मन के बनाए उत्पाद मन के ब्रांडिंग, पैकेजिंग, विपणन और कीमत में बढ़ोतरी ला बढ़ावा दे खातिर ग्रोथ सेंटर के स्थापना करेगी से। और वर्तमान में बस्तर और सरगुजामा दो ग्रोथ सेंटर चलाए जावत हवे।
0: ग्रोथ सेंटर के सुचारू रूप से संचालन हेतु एक त्रिपक्षीय अनुबंध किया गया है। दोनों ग्रोथ सेंटरों में 10-10 महिला उद्यमी काम कर रही हैं और इन ग्रोथ सेंटरों के माध्यम से उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग में सहयोग कर रहे हैं। उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग में PwC संस्था द्वारा तकनीकी सहयोग भी दिया जाता है।
1: बस्तर के ग्रोथ सेंटर में हरदी, मिर्चा, धनिया, तिखुर, अमली के रोटी, बेल मेटल, मिलेट कुकीज असन गुणवत्तापूर्ण उत्पाद के ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग करे जावत हवे।
0: ऐसे ही सरगुजा के ग्रोथ सेंटर में सरसों के तेल, जीरा फूल चावल, विष्णुभोग चावल, मोरिंगा पाउडर, शहद, कोसा उत्पाद जैसे गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जा रही है। वर्तमान में 16 उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग 36 कला के अंतर्गत की जा रही है। सुरुज दीदी, जल्दी ही निकट भविष्य में 25 उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग 36 कला के अंतर्गत होने लगेगी। तो आइए दीदियों, समृद्धि सरगुजा संकुल संगठन अंबिकापुर के अंतर्गत उजाला स्व सहायता समूह ग्राम श्रीगढ़ की कोषाध्यक्ष श्रीमती हेमंती रजवाड़े से जानते हैं कि वो कैसे ग्रोथ सेंटर का संचालन कर रही हैं।
2: जय बिहान दीदी।
3: जय बिहान दीदी।
1: दीदी तो अपन बारे में बताते।
3: दीदी पहले तो हम लोग कुछ नहीं करते थे, समूह के जुड़ने के बाद एक रोजगार मिला, फिर हम लोग का जो काम करते थे जैसे सरसों तेल, जीरा फूल चावल, मुरेंगा पत्ती का, तो उसमें अच्छा से प्रॉफिट भी नहीं होता था, मार्केट भी नहीं पाते थे हम लोग। ग्रोथ सेंटर में सरसों तेल हो गया, मुरेंगा पाउडर हो गया, जीरा फूल चावल हो गया, विष्णु भोग चावल हो गया, उसको लाते हैं हम लोग, उसके बाद उसको छटाई वटाई बिनाई करके उसका प्रोसेसिंग करके उसके बाद उसमें पैकेजिंग करते, जिसमें कि हम लोग का 36 कला ब्रांड है, जिसमें उसका GST बिल है, FSSAI लाइसेंस है, लैब टेस्ट हुआ है, जिसमें उसका वैल्यू ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसको पैकेट में बेचते हैं हम लोग 36 कला ब्रांड में, तो कर पैसा ज्यादा मिलते। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उसमें भी हम लोग का प्रोडक्ट आ गया है। 36 कला ब्रांड हो गया ना, एक लेबल हो गया, पैकेजिंग हो गया, स्टैंडर्ड लेबल का होता है, तो उसमें हम लोग को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। ग्रोथ सेंटर में भी काम दिया जाता है दीदी, उसमें भी रोजगार मिल रहा है। बिहार में जुड़े के बाद बहुत आगे निकल गई हूँ, सरस मेला था अभी भोपाल में रायसेन में, वहाँ जाने का मौका मिला, मंत्री लोग से भी मिलने का मौका मिला, यहाँ रायपुर भी आने का मौका मिला, मतलब ये मेरे जीवन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। स्कूटी खरीद ली हूँ बैटरी वाला, जिसे कि मैं अपने घर का जरूरत को पूरा कर पाती हूँ, घर से निकलती हूँ, मेरे दो बच्चे हैं उसको भी पढ़ा पा रही हूँ, अच्छे स्कूल में दे पा रही हूँ, तो मेरे समूह के दीदी लोग भी लखपति दीदी बन गए हैं। ये सब बिहान का ही देन है दीदी, और लखपति दीदी बने इसलिए प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, पंचायत मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती।
0: वाह दीदी, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों का उद्देश्य केवल उत्पाद बेचना नहीं है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। पता है सुरुज दीदी, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत एकल ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट के अंतर्गत 36 कला ब्रांड का ट्रेडमार्क पंजीयन कराया गया है।
1: हाँ हो गोई।
0: और ऐसे में महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों के लिए अधोसंरचना विकास, बाजार तक पहुंच और उपयोग, ब्रांडिंग, पहचान और तकनीकी, प्रशासनिक और प्रबंधकीय सहयोग उपलब्ध कराना संभव हो रहा है। तो आइए हमारी दीदी श्रीमती सुनीता ग्राम चिलकुटी जिला बस्तर से मिलते हैं।
2: जय बिहान दीदी।
4: जय जय बिहान दीदी। मैं अभी जीवन ज्योति महिला क्लस्टर की सचिव हूँ और ग्रोथ सेंटर अभी संचालन कर रही हूँ।
0: अच्छा, तो ग्रोथ सेंटर में आप क्या काम करती हैं?
4: ग्रोथ सेंटर में जैसे मैम हम लोग का अभी 36 कला ब्रांड, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और इस रस में अभी दिख रहा है, तो जैसे बाहर से भी कोई ऑर्डर करते हैं तो उनके लिए उनका ऑर्डर आता है ना, तो मेरे ही मोबाइल में OTP आता है। हम OTP को एक वेबसाइट है उसमें जाके OTP नंबर यानी कि वहाँ पे डालते हैं, उसके बाद फिर वहाँ पे दिखाता है कि आपका ये ऑर्डर आया है, वो ऑर्डर आया है, फिर उसके बाद उस हिसाब से हम लोग ना फिर उसको पैक करते हैं, पैक करने के बाद डिलीवर बॉय आता है और उसको फिर डिलीवरी कर देते हैं।
0: पहले आप बिहान से जुड़े थे तो आप क्या काम करते थे, और अब ग्रोथ सेंटर में काम करने के बाद आपको कैसा कैसा लगता है?
4: मैम पहले बिहार में जुड़ी थी तो खाली

0: समूह में ही थी मैं।
1: हाँ।
0: और जैसे मैं क्लस्टर में जुड़ी हूँ, क्लस्टर में जुड़ने के बाद ही ग्रोथ सेंटर में जुड़ी हूँ।
1: हाँ हाँ।
0: और अभी ग्रोथ सेंटर के माध्यम से यानी कि अच्छा अच्छा चीजें जानने को मिल रहा है। मैं कभी रायपुर नहीं आई थी।
1: हाँ।
0: मैं फर्स्ट कवाई बोलने से यहाँ सरस मेला वहाँ पे आई थी। हम लोगों का बैचलर मीट हुआ उसमें आई थी, तब मैं रायपुर आई थी।
1: अच्छा।
0: आपको और एक बात बता रही हूँ, जैसे समूह की दीदियाँ बना रहे थे सामान, वो सामान का ना उचित दाम नहीं मिल रहा था और ना ही पैकेजिंग ठीक थी और उनका पसाई नहीं था और लाइसेंस भी नहीं था। अभी जैसे हम ग्रोथ सेंटर में समूह की दीदियां मन देना स्टार्ट किया है तो उनका पैकेजिंग अच्छा हो रहा है, उनका ब्रांडिंग भी अच्छा से कर रहे हैं और दाम भी अच्छा ही मिल रहा है उनको। और एक बात कहना चाहती हूँ, छत्तीस कला ब्रांड को ना 40 सुपर मार्केट स्टोर में अभी हम लोग लगाए हैं। अभी हम लोग ना करीबन बस्तर में 4 लाख तक का बिक्री कर चुके हैं और सरगुजा में 2.5 लाख तक बिक्री कर चुके हैं।
1: तो सबके जीवन में क्या बदलाव आया है और आप लोग कैसा महसूस कर रहे हो?
0: मैम बदलाव तो बहुत आया है, मैं ही देख लो। मैं पहले घर पे ही रहती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी। अभी जैसे मैं समूह में जुड़ी, क्लस्टर में जुड़ी, उसके बाद फिर ग्रोथ सेंटर में जुड़ी, अभी मैं कहीं भी जा रही हूँ वैसे ही समूह की दीदियाँ जो अभी समूह में जुड़े हैं, जो भी उत्पाद कर रहे हैं वो हम लोग के ग्रोथ सेंटर में दे रहे हैं तो उनको अच्छा दाम भी मिल रहा है और उनका आर्थिक स्थिति भी थोड़ा सुधर रहा है
1: और आत्मविश्वास
0: आत्मविश्वास बढ़ रहा है। दीदियों को बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे जो भी सामान बना रहे हैं, मैं दीदियों से बस यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने उत्पाद ग्रोथ सेंटर के माध्यम से ही बेचें, जिसे आपको अच्छा दाम मिलेगा और आपके उत्पाद को छत्तीस कला ब्रांड के नाम पर राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिलेगी।
2: सुनत है चंदा, स्व सहायता समूह के दीदी मन छत्तीस कला ब्रांड ले जुड़ के आर्थिक रूप ले सशक्त बनत हावे।
1: और इसी कड़ी में दोनों ग्रोथ सेंटर ने अमेजोन के साथ MOU भी किया है। SHG उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, रिलायंस स्मार्ट जैसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में विक्रय हेतु भारत सरकार द्वारा अनुबंध किया गया है। ऐसे में वे कैसे ग्रोथ सेंटर से जुड़कर अपने उत्पाद को आसानी से बेच पा रहे हैं, आइए जानते हैं। आप हैं श्रीमती डालिम बघेल और श्रीमती रुद बघेल दीदी, जिला बस्तर से।
3: जय बिहान दीदी।
4: जय जय बिहान दीदी।
1: डालिम बघेल दीदी, आप क्या काम करती हैं?
5: हम टीकूर उत्पाद करते हैं।
1: ग्रोथ सेंटर से आप कैसे जुड़ी और उसके बाद आपका क्या अनुभव रहा?
5: पहले ना हम लोग बाजार में ले जाते थे, कभी ऑटो मिलता था कभी नहीं मिलता था, जैसे बाजार में कभी कम दाम में बेचते थे और कभी इनकम होता था कभी नहीं होता था। जब हम लोग को ना ग्रोथ सेंटर खुला है बोल के दीदी लोग से पता चला, तभी हम लोग ना ग्रोथ सेंटर में दीदी लोग को दिए, तभी ग्रोथ सेंटर से हम लोग को दुगना फायदा हुआ। मार्केट में है ना 500-600 किलो में बेचते थे और जब से ग्रोथ सेंटर में जुड़े तभी हम लोग 1 किलो 1,000 में बेचने शुरू किए और घर बैठे ग्रोथ सेंटर से हम लोग माल देने शुरू किए।
2: रूप बघेल दीदी, आप जिससे हल्दी के उत्पादन लेते हो, तो ये ग्रोथ सेंटर और छत्तीस कला ब्रांड से आप कैसे जुड़े हो?
6: हमारे ग्राम पंचायत के आम सभा बैठक में दीदी लोग बताए कि ग्रोथ सेंटर में कच्चा माल लिया जाता है। आप अपने घर मतलब घर में हल्दी का उत्पादक करते हैं तो कच्चा माल आप हमें बेच सकते हैं। पहले हम लोग को मार्केट में जाके बेचना पड़ता था, लेकिन जब से ग्रोथ सेंटर में जुड़े हैं तो उसमें हमको फायदा होती है और उसमें ये भी सुविधाएं हैं कि दीदी लोग घर में आके हमारे कच्चा माल लेके जाते हैं, उनको बाहर वाले को देना नहीं पड़ रहा है। मेरे को सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये है कि जिस ग्रोथ सेंटर में मैं अपना माल दे रही हूँ उस मेरे ही समूह के दीदियां हैं, मेरे ही ग्रोथ सेंटर के दीदियां हैं और मेरी छत्तीस कला ब्रांड की दीदियां हैं।
2: तो सुरता रखो दीदी हो, छत्तीस कला ब्रांड छत्तीसगढ़ के पारंपरिक गुणवत्ता और स्थानीय उत्पाद मनला नवा पहचान भी देवत हावे।
1: बिल्कुल, ये विश्वास की बुनियाद है आपका अपना रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोट। इसमें हर एक महीने के दूसरे गुरुवार को दोपहर 2 बजे से और बस्तरिया और सरगुजिया कार्यक्रम का प्रसारण दोपहर 2:30 पर सुन पाएंगे। इस कार्यक्रम में योजना से संबंधित जिज्ञासा या प्रश्न टोल फ्री नंबर 1800-233-2398 में दोपहर 12 से 3 बजे फोन करके पूछे जा सकते हैं।
2: ये टोल फ्री नंबर में सवाल पूछे हैं महामाया स्व सहायता समूह सांकरा ले हैं भारती ध्रुव, जय संतोषी स्व सहायता समूह जरगांव ले हैं मोहनी बाई साहू, एकता स्व सहायता समूह भैंसापारा ले हैं दिनेश्वरी, जय संतोषी स्व सहायता समूह किरवई ले हैं संतोषी, जय माँ वैभव लक्ष्मी स्व सहायता समूह ले हैं दुर्गेश्वरी साहू आप हैं भैंसापारा ले, प्रज्ञा स्व सहायता समूह समरिया ले लक्ष्मी, सरस्वती स्व सहायता समूह खनौदा ले हैं मधु खरे, माता सुर का स्व सहायता समूह ले हैं देवतीन बाई साहू आप हैं बोरी कारका ले, माँ लक्ष्मी स्व सहायता समूह सिरसा लहे प्रणीता तिवारी और जय शीतला स्व सहायता समूह सुढ़ी लहे।

0: ले साहू, अब पूछे गए सवाल मन ले, आज एक सवाल लॉटरी निकाल के चुने हन। ये माँ लड्डू गोपाल स्व सहायता समूह सरस्वती समूह ग्राम पंचायत छिनौला ले पूछे हैं, रागी लड्डू बनाथन तो एकर मार्केटिंग कैसे करन और छत्तीस कला ब्रांड ले कैसे जुड़ सकथन।
1: रागी लड्डू की मार्केटिंग के लिए सर्वप्रथम लड्डू निर्माण के समय SOP का पालन करें। उत्पादन की पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग छत्तीस कला ब्रांड के अंतर्गत करने के लिए बिहान कर्मचारियों से संपर्क करें और ग्रोथ सेंटर से जुड़कर लड्डू की मार्केटिंग कर सकते हैं।
0: तसुरता रखो दीदी हो, एक छोटे से गांव के दीदी मन के कला मेहनत और पहचान ले लेके देश दुनिया तक ये यात्रा आवे महिला सशक्तिकरण की यात्रा।
1: और दीदी ये कहानी है रचनात्मकता दृढ़ता और आत्मनिर्भरता की, पहचान है छत्तीस कला ब्रांड की।
0: और अपन पहचान ले सम्मान के रास्ता में बिहान संग कदम मिला के मिल के बढ़वो।
1: हाँ,
0: यही परन संग बिहान के अवैया कार्यक्रम में दीदी मन के सफलता के गोठ लेके फिर मिलवो।
1: हो
0: तब तक बर देवो विदा,
1: जय जोहार जय बिहान।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोठ, ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिकबाराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी

0: बल दिया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स ओटीटी है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धे अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
0: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
2: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
0: ओमान की खाड़ी में पलाउ ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमेरिकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना

0: नदी है।
1: मिलिट्री कॉन्फ्रेंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद ड्रोन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
3: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख

तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताज़ा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुँच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी दोपहर समाचार हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोठ सरगुजिया में। लीजिए सुनिए यह कार्यक्रम।

0: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान कर प्रस्तुति दीदी के गोट सुनवैया जम्मू महतारी दीदी भैया और श्रोता संगवारी मल्ला चंदा आओ
1: सूरज कर तरफ ले
0: जय बिहान। दीदी बस एक मिनट।
2: अरे का करत हस्त है दीदी मन संग गोट करे बर छोड़ के मोबाइल में इतना का जरूरी हवे।
0: दीदी दीदी मोर गोट लत सुन ले मैं दीदी मन कर काम ला करत हूँ। मोर मामी के बेटी कर ननद हरे छत्तीस कला ब्रांड कर कुछ उत्पाद मन के ऑर्डर कर लिस्ट भेजी हवे ओला में स्व सहायता समूह कर दीदी मल्ला भेजत हूँ।
2: अरे मैं अकबका गए रहन कोई मैं का जानू। वैसे एक बात तो आहे चंदा हमर बिहान कर दीदी मन बहुत बढ़िया बढ़िया गुणवत्ता वाला सामान बनात हवे जैसे बेल मेटल कोसा माटी कर सामान मिलेट कुकीज और ढेरे सामान एक कह सकत हन की हर सामान कर उत्पादन करत हवे।
0: दीदी लेकिन सुघर पैकेजिंग ब्रांडिंग और मानकीकरण को बड़ा चुनौती रही यही चुनौती ला दूर करे बर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान कतिले अपन खुद करे गो ब्रांड छत्तीस कला लेयाल गईस।
2: छत्तीस कला ब्रांड छत्तीसगढ़ कर नारी मन के सिर्जन के चिन्हारी हवे कोसा सिल्क कर ताना बाना लेके बाजार में मांग के अनुसार जम समान मन कर उत्पादन बर लगल स्वयं सहायता समूह कर लाखों दीदी मन कर आत्मनिर्भरता के निशानी हवे
0: जिला एगो नाम देके 19 नवंबर 2025 के छत्तीस कला ब्रांड कर शुभारंभ माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी माननीय छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष श्री रमन सिंह जी उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी कर गरिमा में उपस्थिति में करल गए रही।
2: हो दीदी छत्तीस कला ब्रांड कर शुभारंभ हमर बर गर्व और तरक्की कर आधार हवे।

0: दीदी, छत्तीस कला एगो नाम से कहीं बढ़ के एगो समान गुणवत्ता भरोसामंद बाजार जम्मू ग्रामीण शिल्पकार दीदी मन पर एगो स्थायी आजीविका कर वादा हवे। वर्तमान में छत्तीस कला ब्रांड कर अंतर्गत उत्पाद मन कर बिक्री अलग अलग माध्यम जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन बाजार, ट्रेडिंग चैनल मन और गिफ्टिंग सेगमेंट कर माध्यम ले सफलता पूर्वक करल जात हवे।
1: और जानत हस चंदा, बिहान कर अंतर्गत दीदी मन महिला उद्यमी मन कर बनाल उत्पाद मन के ब्रांडिंग, पैकेजिंग, विपणन और दाम में बढ़वार ला बढ़ावा दे बर ग्रोथ सेंटर का स्थापना करल गई। वर्तमान में बस्तर और सरगुजा में दो गो ग्रोथ सेंटर चलाल जात हवे।
0: ग्रोथ सेंटर का सुघर रूप से संचालन करे बर एगो त्रिपक्षी अनुबंध करल गई हवे। दोनों ग्रोथ सेंटर मन में 10-10 गो महिला उद्यमी काम करत हवे। एवं ग्रोथ सेंटर मन कर माध्यम ले उत्पाद मन कर ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग में सहयोग करत हवे। ए उत्पाद मन कर ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग में PWC संस्था कटीले तकनीकी सहयोग घलो देहल जात हवे।
1: बस्तर कर ग्रोथ सेंटर में हरदी, मिर्चा, धनिया, तिखुर, इमली कर रोटी, बेल मेटल, मिलेट कुकीज जैसन गुणवत्तापूर्ण उत्पाद कर ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग करल जात हवे।
0: ऐसने सरगुजा कर ग्रोथ सेंटर में सरसों कर तेल, जीरा फूल चाउर, बिसुन भोग चाउर, मोरिंगा पाउडर, शहद, कोसा उत्पाद जैसन गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मनकर ब्रांडिंग और मार्केटिंग करल जात हवे। वर्तमान में 16 गो उत्पाद मनकर ब्रांडिंग और मार्केटिंग 36 कलाकार अंतर्गत करल जात हवे। जल्दी या निकट भविष्य में 25 गो उत्पाद मनकर ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग 36 कलाकार अंतर्गत होई लागी। त आई समृद्धि सरगुजा संकुल संगठन अंबिकापुर कर अंतर्गत उजाला स्व सहायता समूह ग्राम श्रीगढ़कर कोषाध्यक्ष श्रीमती हेमंती राजवाड़े से जाना थी कि वो कैसे ग्रोथ सेंटर कर संचालक करत हवे।
2: जय बिहान दीदी।
3: जय बिहान दीदी।
4: दीदी तो अपन बारे में बताते।
3: दीदी पहले तो हम लोग कुछ नहीं करते थे, समूह के जुड़ने के बाद एक रोजगार मिला, फिर हम लोग का जो काम करते थे जैसे सरसों तेल, जीरा फूल चावल, मुरेंगा पत्ती का, तो उसमें अच्छा से प्रॉफिट भी नहीं होता था, मार्केट भी नहीं पाते थे हम लोग। ग्रोथ सेंटर में सरसों तेल हो गया, मुरेंगा पाउडर हो गया, जीरा फूल चावल हो गया, विष्णु भोग चावल हो गया, उसको लाते हैं हम लोग, उसके बाद उसको छटाई वटाई बिनाई करके उसका प्रोसेसिंग करके उसके बाद उसमें पैकेजिंग करते, जिसमें कि हम लोग का 36 कला ब्रांड है, जिसमें उसका GST बिल है, FSSAI लाइसेंस है, लैब टेस्ट हुआ है, जिसमें उसका वैल्यू ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसको पैकेट में बेचते हैं हम लोग 36 कला ब्रांड में, तो कर पैसा ज्यादा मिलते। मैं जो ऑन फ्लिपकार्ट उसमें भी हम लोग का प्रोडक्ट आ गया है, 36 कला ब्रांड हो गया ना, एक लेबल हो गया, पैकेजिंग हो गया, स्टैंडर्ड लेबल का होता है, तो उसमें हम लोग को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। ग्रोथ सेंटर में भी काम दिया जाता है दीदी, उसमें भी रोजगार मिल रहा है। बिहार में जुड़े के बाद बहुत आगे निकल गई हूँ, सरस मेला था अभी भोपाल में रायसेन में, वहाँ जाने का मौका मिला, मंत्री लोग से भी मिलने का मौका मिला, यहाँ रायपुर भी आने का मौका मिला, मतलब ये मेरे जीवन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। स्कूटी खरीद ली हूँ बैटरी वाला, जिसे कि मैं अपने घर का जरूरत को पूरा कर पाती हूँ, घर से निकलती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं उसको भी पढ़ा पा रही हूँ, अच्छे स्कूल में दे पा रही हूँ, तो मेरे समूह के दीदी लोग भी लखपति दीदी बन गए हैं। ये सब बिहान का ही देन है दीदी, और लखपति दीदी बने इसलिए प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, पंचायत मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती।
0: वाह दीदी, बहुत सुघर लागिस कि रौर मन कर उद्देश्य खाली उत्पाद बेचना नहीं बल्कि ग्रामीण महिला मल्ला आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और स्थानीय उत्पाद मल्ला राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना हवे।
1: वाह,
0: पता है सुरुज दीदी, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान कर अंतर्गत एकल ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट कर अंतर्गत 36 कला ब्रांड कर ट्रेडमार्क पंजीयन कराल गई हवे। ऐसन में महिला नेतृत्व वाला ग्रामीण उद्यम मन पर अधोसंरचना विकास, बाजार तक पहुंच और उपयोग, ब्रांडिंग, पहचान और तकनीकी, प्रशासनिक और प्रबंधकीय सहयोग उपलब्ध कराए बर संभव होत हवे। आई हमर दीदी श्रीमती सुनीता जेहरे ग्राम चिलकुटी जिला बस्तर से हवे, उनका ले भेंट कर रही।
2: जय बिहान दीदी।
5: जय जय बिहान दीदी। मैं अभी जीवन ज्योति महिला क्लस्टर की सचिव हूँ और ग्रोथ सेंटर अभी संचालन कर रही हूँ।
6: अच्छा, तो ग्रोथ सेंटर में आप क्या काम करती हैं?
5: ग्रोथ सेंटर में जैसे मैम हम लोग का अभी 36 कला ब्रांड अमेजोन, फ्लिपकार्ट और ईसरस में अभी दिख रहा है, तो जैसे बाहर से भी कोई कोई ऑर्डर करते हैं, तो उनके लिए उनका ऑर्डर आता है ना, तो मेरे ही मोबाइल में OTP आता है।

0: हम ओटीपी को एक वेबसाइट है उसमें जाके ओटीपी नंबर यानी कि वहाँ पे डालते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे दिखाता है कि आपका ए ऑर्डर आया है, वो ऑर्डर आया है बोल के। फिर उसके बाद वही हिसाब से हम लोग ना फिर उसको पैक करते हैं। पैक करने के बाद डिलीवर बॉय आता है और उसको फिर डिलीवरी कर देते हैं।
1: पहले आप बिहान से जुड़े थे तो आप क्या काम करते थे, और अब ग्रोथ सेंटर में काम करने के बाद आपको कैसा लगता है?
0: मैम पहले बिहान में जुड़ी थी तो खाली समूह में ही थी मैं, और जैसे मैं क्लस्टर में जुड़ी हूँ, क्लस्टर में जुड़ने के बाद ही ग्रोथ सेंटर में जुड़ी हूँ। और अभी ग्रोथ सेंटर के माध्यम से यानी कि अच्छा अच्छा चीजें जानने को मिल रहा है। मैं कभी रायपुर नहीं आई थी मैं फर्स्ट कवाई बोलने से यहाँ सरस मेला वहाँ पे आई थी। हम लोगों का बैचलर मीट हुआ उसमें आई थी, तब मैं रायपुर आई थी। आपको और एक बात बता रही हूँ, जैसे समूह की दीदियाँ बना रहे थे सामान, वो सामान का ना उचित दाम नहीं मिल रहा था, और ना ही पैकेजिंग ठीक थी, और उनका पसाई नहीं था और लाइसेंस भी नहीं था। अभी जैसे हम ग्रोथ सेंटर में समूह की दीदी अमन देना स्टार्ट किया है तो उनका पैकेजिंग अच्छा हो रहा है, उनका ब्रांडिंग भी अच्छा से कर रहे हैं और दाम भी अच्छा ही मिल रहा है उनको। और एक बात कहना चाहती हूँ, छत्तीस कला ब्रांड को ना 40 सुपर मार्केट स्टोर में अभी हम लोग लगाए हैं। अभी हम लोग ना करीबन बस्तर में 4 लाख तक का बिक्री कर चुके हैं और सरगुजा में 2.5 लाख तक बिक्री कर चुके हैं।
1: तो सबके जीवन में क्या बदलाव आया है और आप लोग कैसा महसूस कर रहे हो?
0: मैम बदलाव तो बहुत आया है, मैं ही देख लो, मैं पहले घर पे ही रहती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी। अभी जैसे मैं समूह में जुड़ी, क्लस्टर में जुड़ी, उसके बाद फिर ग्रोथ सेंटर में जुड़ी, अभी मैं कहीं भी जा रही हूँ वैसे ही समूह की दीदियाँ जो अभी समूह में जुड़े हैं, जो भी उत्पाद कर रहे हैं वो हम लोग के ग्रोथ सेंटर में दे रहे हैं, तो उनको अच्छा दाम भी मिल रहा है और उनका आर्थिक स्थिति भी थोड़ा सुधर रहा है
1: और
0: आत्मविश्वास बढ़ रहा है। दीदियों को बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे जो भी सामान बना रहे हैं, मैं दीदियों से बस यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने उत्पाद ग्रोथ सेंटर के माध्यम से ही बेचें, जिसे आपको अच्छा दाम मिलेगा और आपके उत्पाद को छत्तीस कला ब्रांड के नाम पर राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिलेगी।
2: सुना था चंदा, स्वयं सहायता समूह कर दीदी मन छत्तीस कला ब्रांड ले जुड़ के आर्थिक रूप से सशक्त बनत हवे।
3: और यही कड़ी में दोनों ग्रोथ सेंटर हरे अमेजन कर संगे MOU भी करीन हवे। SHG उत्पाद मन ला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीसो, रिलायंस मार्ट जैसन बड़खा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में बेचे बर भारत सरकार कति ले अनुबंध करल गई हवे। ऐसन में ओहरे कैसे ग्रोथ सेंटर ले जुड़ के अपन उत्पाद मन ला आसानी से बेच पात हवे, आई जानत ही रौरे ही श्रीमती डामिल बघेल और श्रीमती रुद बघेल दीदी, जिला बस्तर ले।
4: जय बिहान दीदी।
5: जय बिहान दीदी।
1: डालिम बघेल दीदी, आप क्या काम करती हैं?
6: हम टीकुर उत्पाद करते हैं।
1: ग्रोथ सेंटर से आप कैसे जुड़ी और उसके बाद आपका क्या अनुभव रहा?
6: पहले ना हम लोग बाजार में ले जाते थे, कभी ऑटो मिलता था कभी नहीं मिलता था, जैसे बाजार में कभी कम दाम में बेचते थे और कभी इनकम होता था कभी नहीं होता था। जब हम लोग को ना ग्रोथ सेंटर खुला है बोल के दीदी लोग से पता चला, तभी हम लोग ना ग्रोथ सेंटर में दीदी लोग को दिए, तभी ग्रोथ सेंटर से हम लोग को दुगना फायदा हुआ। मार्केट में ना 500-600 किलो में बेचते थे और जब से ग्रोथ सेंटर में जुड़े तभी हम लोग 1 किलो 1,000 में बेचने शुरू किए और घर बैठे ग्रोथ सेंटर से हम लोग माल देने शुरू किए।
1: रूप बघेल दीदी, आप जिससे हल्दी के उत्पादन लेते हो, तो ये ग्रोथ सेंटर और छत्तीस कला ब्रांड से आप कैसे जुड़े हो?
7: हमारे ग्राम पंचायत के आम सभा बैठक में दीदी लोग बताए कि ग्रोथ सेंटर में कच्चा माल लिया जाता है, आप अपने घर मतलब घर में हल्दी का उत्पादक करते हैं तो कच्चा माल आप हमें बेच सकते हैं। पहले हम लोग को मार्केट में जाके बेचना पड़ता था, लेकिन जब से ग्रोथ सेंटर में जुड़े हैं तो उसमें हमको फायदा होती है और उसमें ये भी सुविधाएं हैं कि दीदी लोग घर में आके हमारे कच्चा माल लेके जाते हैं, उनको बाहर वाले को देना नहीं पड़ रहा है। मेरे को सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये है कि जिस ग्रोथ सेंटर में मैं अपना माल दे रही हूँ वो मेरे ही समूह के दीदियाँ हैं, मेरे ही ग्रोथ सेंटर के दीदियाँ हैं और मेरी छत्तीस कला ब्रांड की दीदियाँ हैं।
2: सुरता रखी दीदी हो, छत्तीस कला ब्रांड छत्तीसगढ़ कर पारंपरिक गुणवत्ता और स्थानीय उत्पाद मन ले नवा पहचान भी देवत हवे।
3: ए विश्वास कर बुनियाद हवे रौर अपन रेडियो कार्यक्रम दीदी कर गोड। रौरे एला हर महीना कर दूसर गुरुवार के दुपहरिया 2 बजे से और बस्तरिया और सरगुजा कार्यक्रम कर प्रसारण दुपहरिया 2:30 पर सुन पाओ। ए कार्यक्रम में योजना मन ले संबंधित जिज्ञासा चाहे कोनो प्रश्न टोल फ्री नंबर 1800-233-2398 में दोपहरिया 12 बजे ले 3 बजे तक फोन करके पूछल जा सकत हवे।
2: ता ए टोल फ्री नंबर में

0: सवाल पूछिन हवे महामाया स्व सहायता समूह साकरा ले भारती ध्रुव, जय संतोषी स्व सहायता समूह जरगांव ले मोहनी बाई साहू, एकता स्व सहायता समूह भैंसापारा ले दिनेश्वरी, जय संतोषी स्व सहायता समूह किरवई ले संतोषी, जय माँ वैभव लक्ष्मी स्व सहायता समूह भैंसापारा ले दुर्गेश्वरी साहू, प्रज्ञा स्व सहायता समूह समरिया ले लक्ष्मी सरस्वती, स्व सहायता समूह खनोदा ले मधुखरे, माता सुर का स्व सहायता समूह ले देवतीन साहू, रौरेही बोरी गारका ले माँ लक्ष्मी स्व सहायता समूह सिरसा ले मोहनी प्रणीता तिवारी, जय शीतला स्व सहायता समूह सुढ़ी ले तलेश साहू। जम्मो सवाल मन ले लॉटरी निकाल के एगो सवाल ला शामिल करत हन। लड्डू गोपाल स्व सहायता समूह सरस्वती समूह ग्राम पंचायत छिनोला ले पूछिन हवे, हमन रागी लड्डू बनात हन मार्केटिंग कैसे करी और छत्तीसगढ़ कला ले जुड़े बर का करी?
1: रागी लड्डू कर मार्केटिंग बर सबले आगु लड्डू निर्माण कर समय SOP कर पालन करी। उत्पाद कर पैकेजिंग और ब्रांडिंग छत्तीसगढ़ कला ब्रांड कर अंतर्गत करे बर बिहान कर्मचारी मन ले संपर्क कर भी ग्रोथ सेंटर ले जुड़ के लड्डू कर मार्केटिंग कर सकत ही।
0: ता सुरता रखब दीदी हो, एगो छोटे अकन गाँव कर दीदी मन कर कला मेहनत और पहचान से लेके देश दुनिया तक एक यात्रा हवे महिला सशक्तिकरण कर यात्रा।
1: दीदी एक कहानी हवे रचनात्मकता दृढ़ता और आत्मनिर्भरता कर, पहचान हवे छत्तीस कला ब्रांड कर।
0: अपन पहचान ले सम्मान कर रास्ता में बिहान संघे कदम मिलाए के मिल के बढ़बो।
1: यही परन संघे बिहान के अवैया कार्यक्रम में दीदी मन के सफलता कर गोट लेके फेन भेटबो। तब तक बर दे विदा।
2: जय जोहार जय बिहान।

तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोठ। 2:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बन

0: बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम गीत गंधा की कड़ी में आइए सुनते हैं चंदन दास की आवाज में गजल आती जाती।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत गंधा में लीजिए प्रस्तुत है इस कार्यक्रम का आखिरी गजल, पंकज उदास की आवाज में। किसी ने भी लीजिए सुनिए यह गजल।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, दोपहर के 3 बजे हैं। आइए एक नज़र डालें हमारे आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा पर। शाम 5:05 में आप सुनेंगे हमर हाथी हमर गोठ। 6 बजे आप सुनेंगे युवाणी युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवा सोच और महफिल।

शाम के 6:30 में आप सुन सकेंगे गोधली, जो सरगुजिया लोकगीत सुनाए जाते हैं। शाम के 7:20 में आप सुनिएगा कार्यक्रम चौपाल। शाम के 7:30 में आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम किसान वाणी। रात्रि के 8 आप सुनेंगे अपने पसंद के फरमाइशी गीत, इंस्टा फरमाइश, सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम।

रात्रि के 8 बजे आप सुनेंगे अपने पसंद के फरमाइशी गीत इंस्टा फरमाइश, सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम। रात के 9 बजे आप सुन सकेंगे इवनिंग न्यूज़। रात्रि 9:15 में आपको सुनाएंगे चित्रपट संगीत। रात 10 बजे आप सुनेंगे सूर्यामिनी, शास्त्रीय संगीत, सरोद वादन। रात 10:30 में आपको सुनवाएंगे मन भावन। तो दोस्तों, ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यह सभा यहीं समाप्त होती है। आशा है कि प्रस्तुत गीतों और बातों ने आपके इस सफ़र को यादगार बनाया होगा। अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात कुछ नए गीत और नए फरमाइशों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आपके रेडियो साथी अंकिता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.2 मेगा हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। शाम के 5 बजने वाले हैं, यह वक्त है हमारे

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये मेंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, कोटराही, भगवानपुर, नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैन पार्ट में हाथियों की कुल संख्या 35 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा, लक्ष्मणगढ़, उदरबसवार, केदमा, जगन्नाथपुर, ढोढ़ा गांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडी, दातीढाप, गढ़गांव, बैरडांड, चोरकी पानी, कंडराजा, पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ा माचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, चट्टानपारा, कुकुर गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो और कापू में हाथियों की कुल संख्या 73 है। ये लोटान, पुरुंगा, बनहर, औरानारा, करोंधा, जगड़ा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के करतला में हाथियों की कुल संख्या 13 है। ये सलिहा भाटा, भेलवाटार, सर्दूकला, सेंद्री पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के एतमानगर, पसान और जडगा में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये मड़ई, कोदवारी, भूडू पानी, कठमोरगा, लालपुर, परला, चोटिया, कापानवापारा, खड़पड़ी, बनिया, झुनकीडी, बांधापारा, कुकरी कादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये बंगुरसिया, जुनवानी, कशडोल, बुलेकेरा, चिमटा पानी, गया, कटाई पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये तालदादर, पकरीद, नवागांव, कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता

0: ना छोड़ दे।
1: हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। मीडियो वेब और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हो चुके हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वंदना सिन्हा और भैरवी।

हैं। शाम के 5:05 हो चुके हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वंदना सिन्हा और भैरवी रंजन का गाया ये भजन।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: प्रस्तुत कार्यक्रम का अगला भजन स्वर है रोली प्रकाश का।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या इस समय आप आकाशवाणी अंबिकापुर से सुन रहे हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला भजन, स्वर है नीलम कटारिया का।

अनूप जलोटा के गाय इस भजन के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 होने वाले हैं। प्रस्तुत है युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवावाणी।

मोहब्बत सिर्फ खूबसूरत लम्हों का नाम नहीं होती, ये तो एक दूसरे पर यकीन करने का एहसास होती है। प्यार तब सबसे खूबसूरत लगता है जब उसमें भरोसे की मिठास होती है। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी और मैं हूं आपके अपने रेडियो साथी सुमन ठाकुर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं कि आप जहां भी हो खुश हो, स्वस्थ हो और अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत पलों का आनंद ले रहे हों। दोस्तों, प्यार एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन क्या सिर्फ आई लव यू कह देना प्यार होता है? सिर्फ साथ घूमना, बातें करना और गिफ्ट देना ही प्यार है? शायद नहीं, क्योंकि प्यार सबसे मजबूत नींव अगर किसी चीज़ पर टिकी होती है तो वो है ट्रस्ट, यानी भरोसा। दोस्तों, किसी भी रिलेशनशिप की शुरुआत अट्रैक्शन से होती है, फ्रेंडशिप से हो सकती है, लेकिन रिश्तों को लंबे समय तक चलाने का काम सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट करता है। क्योंकि जहाँ भरोसा होता है वहाँ डर नहीं होता, जहाँ भरोसा होता है वहाँ बार बार सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ भरोसा होता है वहाँ दिल को सुकून मिलता है। आज के समय में लोग प्यार तो जल्दी कर लेते हैं लेकिन भरोसा करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं उनका दिल टूट ना जाए। लेकिन दोस्तों, आपको पता है बिना भरोसे का प्यार उस पौधे की तरह होता है जिसे पानी तो मिलता है लेकिन जड़ें नहीं मिलती, और बिना जड़ों के कोई भी पौधा ज़्यादा दिन तक हरा नहीं रह सकता। दोस्तों, ट्रस्ट का मतलब ये नहीं कि सामने वाला कभी गलती नहीं करेगा। भरोसा का मतलब है कि अगर गलती होगी भी तो हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे। ट्रस्ट का मतलब है कि हम अपने रिश्तों को दूसरे की बातों से नहीं बल्कि अपने अनुभव से आंकेंगे। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने पार्टनर का फ़ोन चेक करते हैं, उनकी चैट पढ़ते हैं, उनकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से रिश्ता सुरक्षित रहेगा। लेकिन सच तो ये है कि जहाँ शक शुरू होता है वहाँ प्यार धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि लव ग्रोस ऑन ट्रस्ट और ट्रस्ट ऑन हॉनेस्टी। दोस्तों, अगर कोई इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है तो वो आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ना चाहेगा, और अगर कोई बार बार आपका भरोसा तोड़ रहा है तो वहाँ सिर्फ प्यार का नाम है, प्यार की भावना नहीं। एक हेल्दी रिलेशनशिप में फ्रीडम भी होती है, रिस्पेक्ट भी होती है, अंडरस्टैंडिंग भी होती है, और सबसे ज़रूरी ट्रस्ट होता है। दोस्तों, कभी कभी दूरियां भी रिश्ते में आ जाती है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो जाती है, मुलाकातें कम हो जाती हैं, लेकिन अगर भरोसा मजबूत हो तो हज़ारों किलोमीटर दूरी भी रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर पाती, और अगर भरोसा ना हो तो एक ही घर में रहकर भी दूर हो जाते हैं लोग। याद रखिए, भरोसा कमाने में सालों लग जाते हैं लेकिन उसे तोड़ने में सिर्फ कुछ पल। इसलिए रिश्तों में हमेशा सच बोलिए, छोटी छोटी बातें छुपाने से बचिए, क्योंकि हर बार झूठ छोटा होता है लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। तो दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं तो उसकी कद्र कीजिए, क्योंकि प्यार हर किसी को मिल सकता है लेकिन भरोसा हर किसी पर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, एक प्यारी सी लाइन आपके लिए, प्यार खूबसूरत हो सकता है लेकिन भरोसा उसे हमेशा के लिए खूबसूरत बनाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही सुनते हैं ये प्यारा सा गीत जिसे हमने लिया है फिल्म दिल है तुम्हारा से, जिसमें आवाज़ें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की, गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आज के हमारे स्पेशल क्रम महफिल की ओर, जहां आप सुनेंगे कुछ प्यारी प्यारी सी गजलें।

बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आज के क्रम महफिल में, जहां आप सुनेंगे कुछ प्यारी प्यारी सी गजलें आप ही के फरमाइश पर। ना बिछड़ आंखों से यू ख्वाब बनकर, दिल में रहना हमेशा एहसास बनकर, दूरियां चाहे कितनी भी आ जाए दरमिया, मिलते रहना मेरी जिंदगी में आस बनकर।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कविता पौडवाल की आवाज़ में गाई हुई ये प्यारी सी गज़ल, और इस गज़ल के फरमाइश करता थे चिरमिरी कुरासिया कारी से इंद्रभान।

सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंद्री लहरे, ग्राम पंचायत खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, धोनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सोमार साय, कुलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा, ऐश्वर्या पैकरा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। दोस्तों अब चलते हैं अगली गजल की ओर। रहूं तेरी नज़र में एक खूबसूरत ख्याल बनकर, रहूं तेरे दिल में मीठे से सवाल बनकर, जब भी याद आए मेरी मुस्कुरा देना तुम, मैं आ जाऊंगी तेरी यादों में एक एहसास बनकर।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र और मिताली सिंह की आवाज़ में गाई हुई ये खूबसूरत सी गज़ल। और इस गज़ल के फरमाइशकर्ता थे दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, सत्यम क्लब फुलकोना प्रेमनगर से अरविंद कुमार यादव, रुस्तम, हिमांशु, ऐश्वर्या, प्रीतम, मनोज यादव। दोस्तों, अब चलते हैं हमारे अगले गज़ल की ओर। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, दिल के जज्बातों को कब तक छुपाओगे, एक दिन तो जाना ही है तुम्हें अपनी राहों पर, फिर मेरी यादों से खुद को कैसे बचाओगे।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अल्ताफ राजा की गाई हुई ये प्यारी सी गज़ल, और इस गज़ल के फरमाइश करता थे आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार जंघेल, अजीत जंघेल, आयुष नंदिनी जंघेल, धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य, अंजलि जंघेल, अड़ानांद घाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल वर्मा। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा आज का क्रम महफिल बस यहीं तक।

दोस्तों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है आज का ये खूबसूरत सफर आपको पसंद आया होगा। इसी प्यार और अपनापन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त सुमन ठाकुर। फिर मिलेंगे कुछ नई बातों और नए एहसासों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: युवा श्रोताओं के लिए भी युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में

0: महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं।
1: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। हमने कल ओमान तट पर हुए जहाज पर हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें दुर्भाग्यवश हमने 3 भारतीय नागरिकों को खो दिया। हमने इस घटना के विरोध में भारत अमेरिकी मिशन उपप्रमुख को तलब किया था। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
0: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलो के 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जलक्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। इससे पहले 8 जून को एमटी मारिवेक्स इसी समुद्री क्षेत्र में अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचार अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए विचार बिंदु कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। विषय है सौंदर्य। संकलन और वाचन स्वर तरुण चैनानी का है।
3: सौंदर्य केवल आंखों से देखे जाने वाला दृश्य नहीं, अपितु वह अनुभूति है जो हृदय को स्पर्श कर आत्मा तक उतर जाती है। यह केवल रूप रंग

अथवा आकार में सीमित नहीं होता, बल्कि विचारों की निर्मलता, व्यवहार की मधुरता और भावों की पवित्रता में भी समाहित होता है। वास्तविक सौंदर्य वही है जो बाहरी आकर्षण से आगे बढ़कर अंतर मन को आलोकित कर दे। प्रकृति सौंदर्य की सबसे अनुपम अभिव्यक्ति है। उषा की स्वर्णिम लालिमा, शीतल चांदनी की शांत आभा, वर्षा की मृदुल फुहारें और मंद समीर का कोमल स्पर्श, ये सभी मनुष्य के भीतर एक अद्भुत आनंद का संचार करते हैं। पर्वतों की स्थिरता, नदियों की चंचलता और पुष्पों की सुरभि हमें यह अनुभव कराती है कि सौंदर्य केवल दृश्य नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभूति है। मनुष्य के व्यक्तित्व में भी सौंदर्य अनेक रूपों में प्रकट होता है। मधुर वाणी का सौंदर्य, विनम्र व्यवहार का सौंदर्य, स्नेहपूर्ण दृष्टि का सौंदर्य और करुणा से भरे हृदय का सौंदर्य, ये सभी बाहरी रूप से कहीं अधिक प्रभावशाली होते हैं।

0: बल्कि एक जीवंत अनुभूति है। मनुष्य के व्यक्तित्व में भी सौंदर्य अनेक रूपों में प्रकट होता है। मधुर वाणी का सौंदर्य, विनम्र व्यवहार का सौंदर्य, स्नेहपूर्ण दृष्टि का सौंदर्य और करुणा से भरे हृदय का सौंदर्य, ये सभी बाहरी रूप से कहीं अधिक प्रभावशाली होते हैं। चेहरा समय के साथ बदल सकता है, परंतु विचारों और व्यवहार का सौंदर्य चिरस्थायी होता है। वाणी का सौंदर्य विशेष रूप से मनुष्य को विशिष्ट बनाता है। जब शब्दों में संवेदना हो, स्वर में सौम्यता हो और अभिव्यक्ति में सच्चाई हो, तब साधारण संवाद भी असाधारण बन जाता है। मधुर वाणी किसी उदास मन में आशा जगा सकती है, किसी थके हुए हृदय को शांति दे सकती है और किसी निराश व्यक्ति के जीवन में उत्साह भर सकती है। सौंदर्य का संबंध केवल बाहरी जगत से नहीं बल्कि अंतर मन की स्थिति से भी होता है। यदि मन शांत हो, विचार सकारात्मक हो और दृष्टिकोण उदात हो, तो संसार का प्रत्येक दृश्य सुंदर प्रतीत होने लगता है। यही कारण कि प्रसन्नचित व्यक्ति छोटी छोटी बातों में भी आनंद खोज लेता है, जबकि अशांत मनुष्य वैभव के बीच भी संतोष नहीं पा पाता। साहित्य, संगीत और कला भी सौंदर्य के सशक्त माध्यम है। एक मधुर राग, एक प्रभावशाली कविता या एक संवेदनशील चित्र मनुष्य को भीतर तक स्पर्श कर सकता है। शब्दों की सुंदरता तभी प्रकट होती है जब उनमें भावों की गहराई और अनुभूति की सच्चाई हो। आज के समय में जब मनुष्य बाहरी आकर्षण को ही सौंदर्य मानने लगा है, तब यह समझना और भी आवश्यक हो जाता है कि वास्तविक सौंदर्य आत्मा की उजालता में निहित है। सादगी में जो सौंदर्य है, वह आडंबर में कभी नहीं हो सकता। विनम्रता में जो आकर्षण है, वह प्रदर्शन में नहीं मिल सकता। अतः हमें अपने जीवन को केवल बाहरी सजावट से नहीं बल्कि विचारों की उत्कृष्टता, व्यवहार की मधुरता और हृदय की पवित्रता से सुंदर बनाना चाहिए, क्योंकि अंततः वही सौंदर्य स्थायी होता है जो मन को शांति दे, हृदय को आनंदित करे और आत्मा को आलोकित कर दे। सौंदर्य वह नहीं जो केवल नेत्रों को आकर्षित करे, सौंदर्य वह है जो हृदय को स्पंदित कर दे, मन को प्रफुल्लित कर दे और आत्मा में एक मधुर प्रकाश जगा दे। यह केवल रूप की रमणीयता से नहीं बल्कि अनुभूतियों की पवित्रता और विचारों की उजालता का समन्वय है। जब प्रातः काल की प्रथम किरण धरती को स्वर्णिम आभा से आलोकित करती है, जब मंद समीर वृक्षों की शाखाओं को मृदुलता से स्पर्श करती है, जब पुष्पों की सुरभि वातावरण में शांति घोल देती है, तब प्रकृति अपने मौन में भी सौंदर्य का अद्भुत गीत गा रही होती है। यह गीत शब्दों में नहीं अनुभूतियों में सुनाई देता है और यही सबसे सुंदर सौंदर्य है।
1: अभी आप सुन रहे थे विचार बिंदु में सौंदर्य विषय पर तरुण चैनानी के विचार। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी की अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:10 होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग मीनल तिवारी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री हर नीति आयोग के शासी परिषद के बैठका में कहिन कि केंद्र और राज्य सरकार के सामूहिक प्रयास ले ही विकसित भारत के लक्ष्य पाए जा सकत है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह काली 2 दिवसीय दौरा में छत्तीसगढ़ आही। विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में संग्रह के संगे संग राज्य और क्षेत्रीय टेक्सटाइल्स अधिकारी मन संग करी बैठका। और प्रदेश के राजनांदगांव जिला के क्रिकेट खिलाड़ी महक नरवासे के चयन भारतीय महिला अंडर-19 टीम में हुए है। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है किहीन है कि दुनिया ये बखत अस्थिरता के दौर ले गुजरत है, फिर भारत आत्मविश्वास दृढ़ संकल्प के संग विकास के रद्दा में आगू बढ़ा थे। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वां शासी परिषद के बैठका के अगुवाई करत श्री मोदी है

हैं कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य कोती बढ़त है तो ऐसा बेरा मा केंद्र और राज्य सरकार के सामूहिक जिम्मेवारी बढ़ जत है। उमन कहन की राज्य के बीच सहयोग गोट बात और विचार साझा होना चाहिए। संगे संग नीति आयोग एमा मदद करे खातिर सबले बने भूमिका निभा सकत है। प्रधानमंत्री हकीन की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कौशल विकास और युवा मन बर रोजगार दिवाना ये प्राथमिकता बने रहना चाहिए। कृषि और स्टार्टअप लले के ज्ञान और नवाचार तक नारी शक्ति सबो क्षेत्र में अपन योगदान देवत है। एकर सेती राज्य मल्ला माइलोगिन के शिक्षा कौशल विकास सुरक्षा और सशक्तिकरण ला प्राथमिकता देना चाहिए। एसो के बैठका के विषय हरे 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठका में सबो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग लेवत है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह काली 12 जून के 2 दिवसीय दौरा में छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। उमन प्रदेश में जनसंपर्क कार्यक्रम के संगे संग विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में संगरही संगे संग राज्य और क्षेत्रीय टेक्सटाइल्स अधिकारी मन संग बैठका करही। केंद्रीय मंत्री श्री सिंह काली मंझनिया रायपुर के सड्डू क्षेत्र के अस्पताल में विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल होही। एकर बाद संझा कुन राजधानी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल होही। संझा ही श्री सिंह राजधानी में हैंडलूम हस्तशिल्प सिल्क और राज्य क्षेत्रीय टेक्सटाइल्स अधिकारी मनसंग बैठका करही। केंद्रीय मंत्री अवैया दिन 13 जून के कलेक्टोरेट परिसर के बाबा साहेब अंबेडकर चौक में सफाई अभियान कार्यक्रम में शामिल होही और खालसा स्कूल के आगू ऑक्सीजोन में पौधारोपण करके बूढ़ा तरिया तीर विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम में भाग लीही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हकीन है कि किसान मन के विकास सरकार के सबले पहली प्राथमिकता हरे। सरकार उखर जीवन ला सरल बनाए के हर संभव प्रयास करत है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी हकीन के किसान देश के खाद्य सुरक्षा पोषण और समृद्धि के रीढ़ हरे। उमन कहन के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना किसान मन के आमदनी की रक्षा करत है। उन्हें किसानी ला और मजबूत बनावत है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में रखे गए कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर के उद्घाटन वर्चुअल रूप ले करीन। ये कार्यक्रम में जयपुर के सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन समेत आने बड़का अधिकारी मौजूद रहीन। ये मौका में श्री वैष्णव सामरिक और संरचना में ध्यान देवत आकाशवाणी और दूरदर्शन ले सीमावर्ती क्षेत्र में संचार व्यवस्था ला मजबूत करे बर आकाशवाणी और दूरदर्शन ले सरकार के प्रतिबद्धता में प्रकाश डालीन। उन्हें उमन समय के संग परिवर्तन में बल दीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कहने कि देश के 140 करोड़ लोगन के आकांक्षा जरूर पूरा होही। उमन कहन की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA है देश के भरोसा ला मजबूत करे है। नई दिल्ली में NDA के बैठका में बोलत उमन कहन कि बछर 2014 में आशा के जौन किरण जागे रहीस वो आज नवा आत्मविश्वास के किरण में बदल गए है। उमन यहू कहन की पहली गाँव देश के जनता है देखे है कि जब कोई सरकार सही सोच ले चलाए जाते तो विकास घलो तेजी ले होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र सरकार के 12 बछर पूरा होए में नई दिल्ली के भारत मंडपम में रखे गए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय श्री मोदी ला बधाई दीन। उमन कहन की पाछू 12 बछर जनजाति समाज के सम्मान सशक्तिकरण और विकास बर स्वर्ण काल रहे है। मुख्यमंत्री हकीन की केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास ले छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या कमती हुए है। उमन कहन की जनजाति क्षेत्र में बुनियादी सुविधा कनेक्टिविटी और आजीविका के मौका तेजी ले बढ़वार होवत हे। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था। अब आगु बढ़बो बाचे समाचार कोती। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर कहीन है कि स्वच्छता सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नो है भलुक राष्ट्र निर्माण के आधार हरे। स्वच्छ स्वस्थ और विकसित भारत बनाए खातिर हर एक नागरिक के भागीदारी जरूरी है। उमन कहीन की जब तक स्वच्छता जन आंदोलन के स्वरूप नहीं ली तब तक विकसित भारत के लक्ष्य पूरा रूप ले साकार नहीं हो सके। श्रीमती ठाकुर काली बिलासपुर के पुराना बाजार सक्री क्षेत्र में रखे गए स्वच्छता कार्यक्रम में सहभागिता करीन। ये मौका में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू समेत आने जनप्रतिनिधि घलो मौजूद रहीन।
छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष गणेश

0: शंकर मिश्रा ह कहिन हे कि गांव के युवा मन के बेरोजगारी, मोबाइल और नशीला जिनिस के लत जैसन चुनौती ले निपटे खातिर राज्य सरकार कौशल विकास में विशेष जोर देवत है। नवा रायपुर में एक कार्यक्रम में बोला श्री मिश्रा ह कहिन कि सरकार 15 से 29 बच्चर के युवा मन ला रोजगार और स्वरोजगार ले जोड़े बर अवैया 6 महीना में विशेष कार्य योजना तैयार करही। रायपुर जिला में बोर्ड परीक्षा परिणाम और शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार लाए पर मिशन उत्कर्ष में काली राजधानी में सबो प्राइवेट स्कूल के प्राचार्य मन के बैठका हुई। बैठका में कलेक्टर डॉक्टर गौरवसी सरलक कमजोर नतीजा देवैया स्कूल के समीक्षा करे के संगे संग विशेष निरीक्षण दल के गठन और अभिभावक मन ले फीडबैक लेके निर्देश दीन। मन की इनकी कमजोर परीक्षा के नतीजा, फर्जी पंजीयन, नियमित कक्षा के अभाव और आने गड़बड़ी में कड़ा कार्रवाई करे जाही। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ह 28 दिन अधिकारी मन के तबादला कर दे है। विभाग कोतिले जारी आदेश के मुताबिक जिला के शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सहायक संचालक और प्राचार्य मल्ला आने आने जिला और कार्यालय में नवा जिम्मेवारी सौंपे गए है। महासमुंद, रायपुर, बिलासपुर समेत कई जिला में नवा प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के नियुक्ति करे गए है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला के क्रिकेट खिलाड़ी महक नरवासे के चयन भारतीय महिला अंडर 19 टीम में हुए हैं। उमन श्रीलंका में होवैया T20 और वन डे सीरीज के दौरान उप कप्तान के रूप में टीम में भाग ली। वित्त मंत्री ओपी चौधरी है महक नरवासे के भारतीय टीम में चयन होए में बधाई और शुभकामना देवत कहीं कि ये उपलब्धि उखर सरलग मेहनत, अनुशासन और खेल बर समर्पण के परिणाम हवे। उमन यहू कहीं कि एखर ले प्रदेश के आने युवा खिलाड़ी विशेष रूप ले नोनी मल्ला खेल में आगू बढ़े और बड़े सपना देखे बर प्रेरित करही। राज्य सरकार है विधायक मन पर अपन विधानसभा क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारी मन ले सेवा लेके अनिवार्यता के आदेश में फेरबदल करे है। अब कोनो भी विधायक अपन विधानसभा क्षेत्र ले बाहर दिगर जिला में पदस्थ कर्मचारी मन ले सेवा ले सकी। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग सबो जिला कलेक्टर मन ला चिट्ठी जारी कर दे है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के पुलिस अंतरराज्यीय चोर गिरोह के 6 सदस्य मल्ला गिरफ्तार करे है। इकहत्तर ले करीबन 38 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी, चोरी के रकम ले बिसाए गए चौपहिया गाड़ी, 2 फटफटी, मोबाइल फोन समेत चोरी मां बौरे गए आने उपकरण जब्त करे गए है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मन गजब दिन ले चोरी के घटना ला अंजाम देवत रहीन। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। प्रधानमंत्री है नीति आयोग के शासी परिषद के बैठका में कहिन कि केंद्र और राज्य सरकार के सामूहिक प्रयास ले ही विकसित भारत के लक्ष्य पाए जा सकत है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह काली 2 दिवसीय दौरा में छत्तीसगढ़ आही विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में संग्रह के संगे संग राज्य और क्षेत्रीय टेक्सटाइल्स अधिकारी मन संग करी बैठका और प्रदेश के राजनांदगांव जिला के क्रिकेट खिलाड़ी महक नरवासे के चयन भारतीय महिला अंडर 19 टीम में हो है। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। मीडियम वेब पर आकाशवाणी अंबिकापुर है। शाम के 6:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम गोधुली। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कुछ सरगुजिया लोकगीत। पहले सुनिए शिवनंदन राम और साथियों का गाया ये भुईहारी खेमटा गीत।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।

0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: गोधूली कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए जमी लाल राम और साथियों का गाया ये बायर गीत।

0: जमीलाल राम और साथियों के गाए इस बायर गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम गोधूली समाप्त हुआ। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स और एफएम 100.2 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम रामपुर का लक्ष्मण।
1: हाँ? क्या कहा?

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म का नाम है पड़ोसन। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत तैयार किया है राहुल देव बर्मन ने।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म पड़ोसन का गीत। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत तैयार किया था राहुल देव बर्मन ने, और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी समाप्त हुआ। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: हमारा अगला प्रसारण में ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर
6: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
7: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
6: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
7: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर

0: ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
0: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
6: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
7: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, कहा केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल से 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आएंगे, प्रदेश में जनसंपर्क कार्यक्रमों के साथ विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में होंगे शामिल। कल से नवा रायपुर स्थित सेंड लेक में शुरू होगी 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कायकिंग केनोइंग प्रतियोगिता। और राजनांदगांव जिले की क्रिकेट खिलाड़ी महक नरवासे का चयन भारतीय महिला अंडर-19 टीम में हुआ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। उन्होंने कहा कि कृषि और स्टार्टअप से लेकर विज्ञान और नवाचार तक नारी शक्ति सभी क्षेत्रों में योगदान दे रही है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों की महिलाओं की शिक्षा, कौशल विकास, सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। बैठक में देशभर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास है। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20

0: किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर के सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स ओटीटी है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल 12 जून को 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। वे प्रदेश में जनसंपर्क कार्यक्रमों के साथ साथ विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल होंगे, साथ ही राज्य और क्षेत्रीय टेक्सटाइल अधिकारियों के साथ बैठक में भी शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री श्री सिंह कल दोपहर रायपुर के सड्डू इलाके में स्थित अस्पताल में विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे शाम को राजधानी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शिरकत करेंगे। कल ही शाम श्री सिंह राजधानी में हैंडलूम, हस्तशिल्प, सिल्क और राज्य तथा क्षेत्रीय टेक्सटाइल अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्री अगले दिन 13 जून को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बाबा साहब अम्बेडकर चौक पर सफाई अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद खालसा स्कूल के सामने ऑक्सीजन गार्डन में पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री सिंह सदर बाजार के पास बूढ़ा तालाब पहुंचकर विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा है कि स्वच्छता केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है। स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब तक स्वच्छ जन आंदोलन का स्वरूप नहीं लेती, तब तक विकसित भारत का लक्ष्य पूर्ण रूप से साकार नहीं हो सकता। श्रीमती ठाकुर ने कल बिलासपुर के पुराना बाजार सकरी क्षेत्र में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य सरकार ने विधायकों के लिए अपने ही विधानसभा क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारियों से सेवाएं प्राप्त करने की अनिवार्यता के आदेश में संशोधन किया है। अब कोई भी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर किसी दूसरे जिले में पदस्थ कर्मचारियों की भी सेवाएं ले सकेंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य स्तरीय कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों को विधायक के साथ अटैच नहीं किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध सांसदों के मामले में लागू नहीं होगा। छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा ने कहा है कि ग्रामीण युवाओं की बेरोजगारी, मोबाइल और ड्रग्स की लत जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार कौशल विकास पर विशेष जोर दे रही है। नव रायपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मिश्रा ने कहा कि सरकार 15 से 29 वर्ष के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अगले 6 महीनों में विशेष कार्ययोजना तैयार करेगी। उन्होंने UNDP को प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मोबाइल रिपेयरिंग और अन्य रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की परियोजना बनाने के निर्देश दिए। भारतीय रेल ने यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए देशभर के रेल स्टेशनों पर फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। इस ऑडिट के तहत स्टेशन भवनों, विद्युत प्रणाली, एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन व्यवस्था, आपातकालीन निकास मार्ग तथा अग्निशमन उपकरणों की जांच की जाएगी। जहां भी सुरक्षा संबंधी कमियां मिलेंगी, वहां आवश्यक सुधार किए जाएंगे। रेलवे के विभिन्न विभागों की संयुक्त टीमें यह जांच करेंगी। आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ एजेंसियों और राज्य फायर विभाग का सहयोग भी लिया जाएगा। नवा रायपुर स्थित सेंडलेक में कल से 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कायकिंग क्यूनोइंग प्रतियोगिता शुरू होगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कायकिंग केनोइंग एसोसिएशन द्वारा भारतीय कायकिंग केनोइंग संघ और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के संयुक्त तत्वावधान में होने जा रही 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देश

भर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की क्रिकेट खिलाड़ी महक नरवासे का चयन भारतीय महिला अंडर 19 टीम में हुआ है। वे श्रीलंका में आयोजित होने जा रहे T20 और वनडे सीरीज के दौरान उपकप्तान के रूप में टीम का हिस्सा होंगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने महक नरवासे के भारतीय टीम में चयन होने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह उपलब्धि उनकी निरंतर मेहनत, अनुशासन, प्रतिभा और खेल के प्रति समर्पण का परिणाम है। श्री चौधरी ने कहा कि उनके चयन से प्रदेश के अन्य युवा खिलाड़ी, विशेषकर बेटियां, विभिन्न खेलों में आगे बढ़ने और बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित होंगी। गौरेला पिंडरा मारवाही जिले की पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 38 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी, चोरी की रकम से खरीदा गया 4 पहिया वाहन, 2 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन सहित चोरी में इस्तेमाल किए गए अन्य उपकरण जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। रायपुर जिले में बोर्ड परीक्षा परिणाम और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए मिशन उत्कर्ष के तहत कल राजधानी में सभी निजी विद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने लगातार कमजोर परिणाम देने वाले विद्यालयों की समीक्षा करने के साथ ही विशेष निरीक्षण दल के गठन और अभिभावकों से फीडबैक लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कमजोर परीक्षा परिणाम, फर्जी पंजीयन, नियमित कक्षाओं के अभाव और अन्य अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में बताया गया कि इस वर्ष कक्षा 10वीं का औसत परिणाम 71% से अधिक और 12वीं का लगभग 85% रहा, जो पिछले वर्ष से बेहतर है। हालांकि कुछ निजी विद्यालयों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया गया। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। और नकली सोने के बिस्किट को असली बताकर कम दाम में बेचने और लोगों से लाखों रुपये की ठगी करने वाले अंतर जिला गिरोह के 5 सदस्यों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1 किलो 24 ग्राम नकली सोना, 1 नकली सिक्का, कार और मोबाइल जब्त किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल से 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आएंगे। प्रदेश में जनसंपर्क कार्यक्रमों के साथ विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में होंगे शामिल। कल से नवा रायपुर स्थित सेंडलेक में शुरू होगी 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर काइकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता। और राजनांदगांव जिले की क्रिकेट खिलाड़ी महक नरवासे का चयन भारतीय महिला अंडर 19 टीम में हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने वाले हैं और ये वक्त है श्रोताओं आपको कार्यक्रम संबंधी जानकारी देने का। पहले जानिए हमारी इस सभा के शेष मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद 7:05 पर हम आपके लिए पेश करेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। चौपाल कार्यक्रम में आज ग्रामीण श्रोता सुनेंगे प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर चर्चा। किसानवाड़ी के अंतर्गत किसान संध्या कार्यक्रम का प्रसारण भी किया जाएगा। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश आप सुनेंगे रोजाना की तरह रात 8 बजे। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम होगा रात 9:15 पर और आपके ईमेल पर आधारित कार्यक्रम ईमेल की गूंज हम आपके लिए पेश करेंगे रात 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यावनी होगा रात 10 बजे। आज इसमें आप सुनेंगे उस्ताद अमजद अली खां का सरूद पर बजाया राग यमन। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन रात 10:30 पर। ये तो थे हमारी इस सभा के शेष मुख्य कार्यक्रम और अब हम आपको बता दें अपने कल के कुछ एक कार्यक्रमों के बारे में।

कल सुबह 6:05 पर होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। विचार बिंदु कार्यक्रम आप सुनते हैं सुबह 6:30 पर। रामचरितमानस का गायन हम आपको सुनवाएंगे 6:40 पर।

लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल होगा सुबह 7 बजे और गोधूली शाम 6:20 पर। नमस्कार सरगुजा, ये कार्यक्रम हम आपके लिए पेश करेंगे सुबह 7:30 पर।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं हम आपको बीच बीच में देते रहेंगे। कार्यक्रम हमारे सुनते रहिए। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:05 हुए हैं। लीजिए पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं चित्रा सिंह की गई ये गजल। शायर हैं रईस अख्तर।

रजनीकंदा कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आशा भोसले की गई ये गजल, शायर हैं मंजूर अहमद।

आशा भोसले की गई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा समाप्त हुआ। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। शाम के 7:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल।

0: अग्नु भैया राम राम।
1: राम राम परसु भैया।
0: अग्नु भैया कैसे हालचाल, मौसम कैसे दिशत है राउरला?
1: परसु भैया देखा मौसम का हालचाल तो यह है कि वैज्ञानिक मन कहते हैं कि 4-5 दिन में छत्तीसगढ़ में मानसून है घोसी, लेकिन ओकर से पहले देखिए ना तो रोज गर्रा घाटा कोई ना कोई कति पानी राउर तो बतौली कति ले आत रहा, तो देखे हुए कि राती अच्छा पानी आंधी तूफान आई,
0: कई जन कर घर गिर गई सब भैया, एक ठो स्कूल में भी काफी नुकसान हो गई।
1: और आज देखा दे लखनपुर उदयपुर कति भी बरखा हो, तो ये समय कर पहले आयल प्री मानसून कथे, और ये समय गर्रा घाटा और एक तूफान मनहर आयल और संगे पानी बरखा ली लेते आयल।
0: समय बदलत है और सब कति सब समय बदलत है अग्नु भैया। हमन देखब तो अभी जितना गांव गांव राउर बात करें बतौली कति ऐसे ऐसे

0: हमर छत्तीसगढ़ सरगुजा में दूरस्थ अंचल हैं, लेकिन अभी देखा समय ऐसा बदली से कि गांव-गांव कर जो जुड़ाव है ये ला कनेक्टिविटी कथे अंग्रेजी में वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गई से, चाहे ओकर बाजार कर बात करी, चाहे जैसे हमर जो जनजातीय उत्पाद बन है ओमन कर जो राष्ट्रीय बाजार मिलना चाहिए, आज के जमाने में देखा कितना आसान हो गई से।
1: आसान कर रर बात करें तो सबसे पहले सड़क कर बात है कि अगर सड़क बढ़िया रहे तो पहुंच सब कर आसान हो जाए। हमन कर अगर उत्तर छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिला में देख ली, चाहे पूरे छत्तीसगढ़ में देख ली, तो कई को ऐसा गांव है जहां जब पहुंचना बड़ा मुश्किल है। सरगुजा क्षेत्र का जो बलरामपुर है, चाहे जसपुर होगी, चाहे कोरिया जिला कर होगी, अगर कोई कोई गांव में जइया ना तो गाँव वाला तो देखिया, लेकिन वो जब जाए पर सड़क नहीं रहे। तो एगो पीएम जनमन योजना, जिला प्रधानमंत्री जनमन योजना कहते हैं, तो ग्रामीण जो जनजाति हैं, आदिवासी हैं, वो उनकर न्याय कर महाअभियान है। तो न सिर्फ सड़क बनाता है, बल्कि वो जो ऐसा पिछड़ा गांव है जहाँ जनजाति समूह में निवास रहता है, जैसे हमर कदी पहाड़ी कोरवा है, पंडो हैं, माझी हैं, मझवायर हैं, ओमन कर बस्ती में कैसे विकास हो, ओकर बर सबसे पहले सड़क ला चुनल गई। तो सड़क हर बड़ा बढ़िया बनाता है और जितना भी बसाहट है, पारा है, मजरा है, टोला है, वो जगह बढ़िया पक्का सड़क, पक्का आवास, पेयजल का व्यवस्था, बिजली कनेक्शन और मोबाइल का टावर कर व्यवस्था करते हैं, स्वास्थ्य सेवा देता है, शिक्षा कर व्यवस्था करते हैं, तो इतना बढ़िया काम होता है।
0: बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, 2023 में जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर शुरू करल गई रही। और सही कहन कि जो कमजोर जनजाति समूह है जयमल्ला PVTGS कथे, 75 विशेष रूप से जो कमजोर जनजाति समूह के लोग मन है ओमल्ला विकास कर मुख्य धारा से जोड़े बार और मूलभूत सुविधा में बढ़ोतरी बार, चाहे राउर बात करें सड़क के बारे में, पक्का आवास के बारे में, स्वच्छ पेयजल भी मिले, स्वास्थ्य और पोषण सेवा पर्याप्त रूप से वहाँ तक पहुँच सके, एकर बारे में सब काम चलता है और बिजली भी वहाँ पहुँचता है, आजीविका और रोजगार कर साधन भी वहाँ जुटता है। तो जितना भी जनजाति कमजोर वर्ग के लोग रहें, हमारे आसपास हम देखत रहें कि पहाड़ी कोरवा समुदाय के लोग मन रहें, पंडो मझवार के जनजाति समूह के लोग मन रहें, और भी लोग मन हैं, सब जन के पास विकास कर धारा पहुँचे, विकास कर गति पहुँचे, यही जो योजना कर मुख्य उद्देश्य है।
1: और केंद्र सरकार ने बड़ा बढ़िया ये अभियान शुरू करी और ये योजना पर लगभग 24,000 करोड़ का प्रावधान रखी से और इतना निवेश भी करते हैं। और ओकरे से देखिए नहीं तो बढ़िया छोटे छोटे गांव में चमचमात सड़क बन जाते हैं, लाइट का व्यवस्था हो जाते हैं, पानी का व्यवस्था हो जाते हैं, तो गांव हर भी शहर निहर विकसित रहे, लाइट रहे, सड़क रहे, बिजली रहे, पानी रहे, वो निहर इला विकास करते हैं।
0: अग्नुपिया एक बहुत बढ़िया चीज और हुई से, ये जनजातीय उत्पाद मनला जो हम शुरू में बात करें ना, राष्ट्रीय बाजार से जोड़े बारे में पहल हुई से, जैसे हमन जानथन हमारे क्षेत्र में जो शहद है, लाख है, तेंदुपत्ता है, महुआ है, ये सब लघु वन उपज कर चीज कर पर्याप्त उत्पादन होयल, तो वन धन विकास केंद्र कर जरिए और मूल्य संवर्धन के जरिए हमन इमन ला अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक में बेच सकते हैं और एक पूरा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़े कर एक ठो पहल चलता है।
1: हाँ, तो यही कथे भाई समग्र विकास सब कति, न सिर्फ सड़क में कहे नहीं बल्कि खेती पाती में अगर जो जनजाति समाज है और जुड़ी सा है, तो खेती पाती अगर बढ़िया करत है तो के बाजार उपलब्ध कराए कर जिम्मा भी है। तो सब कतिले जो गांव में रहते हैं पिछड़े जनजाति के लोग, उम्र कर विकास कर बारे में ही व्यवस्था कर ली से।
0: एक दिन और आज के दिन में हमन बड़ा महत्वपूर्ण दिवस मनाथन अग्नुभिया, आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस और 11 जून के हमन मुख्य उद्देश्य कर यही है खेल के प्रति बच्चा मन में, युवा मन में रुझान पैदा हो, शारीरिक मानसिक और सामाजिक विकास में खेल कितना महत्वपूर्ण योगदान देहल, ये सब ओमनला समझ में आए, एकर बार अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाल जाते हैं। और हमन देखथन कि सरगुजा क्षेत्र से कितना खिलाड़ी मन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचिन है, छत्तीसगढ़ से भी पहुँचिन है, तो खेल अनुशासन भी सिखाएल, नेतृत्व क्षमता कर विकास करेल, आत्मविश्वास बढ़ाएल, और जितना पढ़वैया लड़का मन है, बच्चा मन है, अगर वो साथे साथ में खेल कूद करते हैं अग्नुभिया, तो ज्यादा बढ़िया से भी पढ़ाई कर पाते हैं।
1: तो एक बार तो कोई भी दिवस ला मनाल जाए कि वो दिवस के दिन बच्चा मतलब भी याद रहे, जो खिलाड़ी है मतलब भी याद रहे, और वो दिन कुछ न कुछ विशेष कार्यक्रम भी हो, अलग अलग खेल संघ से जुड़ल जो लोग मन है पदाधिकारी मन है ओमन भी आयोजन करते हैं खेल के, जो बढ़िया खिलाड़ियां हैं

0: राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर पे जब अपना नाम कमाईना है वो सम्मानित भी करल जाए, तो बड़ा बढ़िया ये दीना है। और रोहरी बताएं भी कि भाई खेल ऐसा चीज है कि अगर कोई आदमी तनाव में है, मानसिक दबाव में है, अगर खेल कूद दे तो कर पूरा मन है परिवर्तित हो जाए और शरीर है तो स्वस्थ रहते
1: रहल। अभी अमन सुनत रहे नगर भैया कि 15 साल का एक लड़का हर कितना बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं, सूर्यवंशी हरे, यही का समर जो छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जिला का एक तो प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, महक नरवासे ओकर नाम है। ओकर चयन भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम में अभी अभी हुई से और ओला श्रीलंका दौरा में भी खेले कर मौका मिल ही और ओला सबसे बढ़िया बात है कि ओला उप कप्तान भी बना लगे इसे।
0: तो यही नहीं है तो भाई कोई कोना से भी निकल सकता है खिलाड़ी, प्रतिभा सभी में रहल, बस उमला अवसर और मैदान और सुविधा देह के जरूरत है।
1: तो कई ठे कार्यक्रम और भी हमन सुनत रथन और आज के दिन में तो विशेष हमन कार्यक्रम सुनब, लेकिन हमार कार्यक्रम का बेरा हो गई से कार्यक्रम प्रायोजित कार्यक्रम है किसान वाणी, ये कार्यक्रम वाला सुना थी और आज के दिन में ये कार्यक्रम के अंतर्गत हमन विशेष कार्यक्रम सुनथन किसान संध्या
0: लगे तो सुन जाओ।

0: किसान संध्या कार्यक्रम में राउर मन कर बहुत बहुत स्वागत करत ही। और अग्नु भैया, इधर तो हमन कोई गांव में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन किसान संध्या कार्यक्रम में हमन देखते हैं कि कहां कहां किसान मन है और उनकर से हमन बातचीत करते हैं। तो अभी कर जो समय चलत है, धान कर तैयारी कर और खाद बीज कर तैयारी कर चलत है, खरीफ कर सीजन अब शुरू ही हो गए से, और आए वाला समय में कैसे कैसे बढ़िया खेती हमर सरगुजा संभाग क्षेत्र में होही, एकर बारे में किसान मन भी परेशान है, मेहनत करत हैं और इते उते खाद बीज सब कुछ देखत है। तो हमन यही कार्यक्रम कर तैयारी करत रहें किसान संध्या कर, तो हमन कर मुलाकात हुई से अंबिकापुर शहर में पूरा हमन देखत हन कि अभी किसान मन घूमत है।
1: हाँ परसुभिया, हम देखत हन कि हम गाँव का तेजाब तो भेटा ही कि नहीं किसान, तो देखत हन शहर का जितना बीज का दुकान है, जितना रोड रोड बीज के दुकान है, पूरा गांव कर किसान यहाँ आए के, और अभी शाम कर समय है, तब बोले देखा घरे फिरे के जुआर में इतना भीड़, और किसान मन बढ़िया बढ़िया धान कर बिहन ला लेता है, छाटत है, निमारत है, और हम तो यहाँ देखा थे कि कैसे कैसे बीज ला लगाना है, बताए वाला जानकार मन भी है। तो सबले शुरू करते हैं, एगो युवा किसान दिखता है।
0: ठीक, शाम कर समय हुई से 7:30 से 8 के बीच बजिश हुई अभी, और हमन बात करते हैं एक किसान यहाँ पर आइन है। राउर के का नाम है
2: जी? मेरा नाम इंद्रजीत गोलदार है और मैं महावीरपुर का निवासी हूँ। मैं शंकर धान का जो पिछले साल हाइब्रिड धान होता है शंकर का, है ना, उसका बीज को लगाया था, है ना। उत्पादन में देखा जाए तो हाइब्रिड धान है ना, उत्पादन में मैं 20 क्विंटल से ऊपर मेरा धान का उत्पादन हुआ था।
0: अच्छा।
2: और मैं बहुत खुश हूँ उत्पादन को देखते हुए, है ना। इस साल भी सोच रहा हूँ, देखिए बारिश का मौसम तो इस बार लेट से चालू हो रहा है, लेकिन बीज का चयन बहुत जरूरी होता है ना। तो बीज तो बढ़िया बीज अभी लेने के लिए आए हैं हम, और बीज को जैसे ही लेके हम लोग, अभी पानी गिरेगा उसका, अभी वो इंतजार कर रहे हैं कि पानी उनी कब गिरे, जैसे ही पानी गिरेगा हम उसको रोपाई करने का वो करेंगे, ठीक है। और बहुत अच्छा, मतलब धान का सीजन साल में एक बार आता है ना, हम इसी के ऊपर निर्भर रहते हैं, धान के ऊपर कि साल में अच्छा खेती हो अपना, किसान भाई सब अच्छा इससे पैसा वैसा अच्छा कमाए, है ना। बाकी सभी किसान भाई से निवेदन है कि अच्छा बीज का चयन करें, जिससे सभी किसान भाई खुश रहे आए वाले समय में, है ना जी। धन्यवाद।
0: अच्छा बीज कर जो राउर बताएं कि चयन हमन के करना चाहिए, अच्छा बीज का चीज लगत है, कैसे हमन के पता चली कि एधार ए बीज कर हमन चयन करबो तो बढ़िया उत्पादन मिली?
2: देखिए क्या है, अभी हाइब्रिड का बीज का मतलब जमाना आ गया है, पहले लोकल बीज रहता था उसमें बीमारी ज़्यादा लगता था, अभी देखा जाता तो बीज में BLB रोग हो गया, ब्लास्ट रोग जो होता है वो रोग हो गया, फिर गर्दन तोड़ का समस्या जो आता था, फिर बहुत सारा गाभी का शिकायत आता था, तो सब चीज़ का निवारण अभी

0: कंपनी वाले दे रहे हैं कि ये सब समस्या नहीं आएगा।
1: अच्छा।
0: तो बीज का चयन बहुत जरूरी है आज के डेट में कि हम अच्छा से अच्छा बीज का चयन करें और उसी बीज को अपने खेत पे लगाएं।
2: मतलब ये जो रोग मन में नहीं पकड़ी, रोग के प्रति सहनशील जो प्रजाति है
0: जी जी,
2: वो अब आए लगी से।
0: हाँ, बीच में आत रही, लेकिन अभी जैसे मान लीजिए आपका बीज का चयन बोल रहा ना मैं, बहुत जरूरी है, तो वो बीज का चयन बहुत जरूरी है कि किसान लोग उसको अच्छे से देख के ही ले।
2: राउर के उम्र तो मुला नहीं ज्यादा लगत है, महावीरपुर के जो खेती बाड़ी है ओकर बारे में बताइए, कैसन मिट्टी है, कैसन धान कर उत्पादन वहाँ लेते हैं और का का चीज के मन उत्पादन करते हैं?
0: पिछले साल जैसे कि अपने एरिया में ना किसान लोग धान का खेती बहुत अच्छा उसमें उत्पादन आया था सभी लोगों का। मैं मतलब अधिक से अधिक किसानों लोग का घर में गया था, मेरा तो उत्पादन तगड़ा आया था, बहुत अच्छा ही आया था, और बाकी लोग का भी धान जो लगा के पिछले साल बहुत खुश थे, जो दवा पानी बहुत ही कम डाले थे और उत्पादन तगड़ा लिए थे, बहुत ही अच्छा उत्पादन आया था।
2: बढ़िया उत्पादन करे बर हमन की मूल रूप से का चीज के ध्यान रखना चाहिए?
0: ध्यान रखना चाहिए जमीन पे, है ना, कि जमीन थोड़ा वो चिकलाई मिट्टी टाइप से हो, है ना, नरम हो। बाकी उत्पादन तो देखिए खाद पानी के ऊपर निर्भर करता है, है ना, डीएपी यूरिया की मात्रा थोड़ा कम डालना चाहिए, है ना, पोटास वगैरह, बाकी और ज़्यादा खाद उसमें चाहिए नहीं होता है, है ना, इसी में बढ़िया उत्पादन आ जाता है। बीच में अगर मान लीजिए कभी अगर जैसे कि किसी किसी में गाभी का शिकायत आता है, है ना, गर्दन तोड़ का शिकायत, ऐसा नहीं है कि मतलब सब में आता है, बीच बीच में आता है, तो उसको ध्यान पहले देना है कि मेरा फसल नुकसान मत हो, उसके लिए भी दवा हुआ का व्यवस्था पहले कर लेना चाहिए, है ना।
2: अभी जो मार्केट में हमन खड़े हैं तो यहाँ राउर लगा लगत है, इधर कर मार्केट कैसा है, किसान मन कौन सा बीज कर चयन करत हैं, बदलत हैं कि पाछू वाला ही बीज कर चयन करते हैं, का चीज के मन ध्यान?
0: अभी तो काफी लोग अपना बीज को जैसे 2-3 साल लगातार एक ही बीज को लगाते हैं जिसमें खुश रहते हैं किसान लोग ना, उसके बाद क्या है अपना बीज को चेंज करते हैं।
2: अच्छा।
0: हाँ, बदलते हैं कि अपना उत्पादन थोड़ा चेंज हो, बदले। तो काफी लोग जैसे 45% लोग अपना चेंज कर रहे हैं, अपना 45% किसान लोग अपना धान को चेंज कर करके लगा रहे हैं कि दूसरा धान में थोड़ा उत्पादन देखे कैसा उत्पादन आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा बात है।
2: अच्छा बात है। वही धान के मौसम ला देख के राहुल का लगा थे कि कैसे धान का उत्पादन मिल पाए इधर?
0: बस वही बारिश का इंतजार है, बारिश जैसे ही गिरता है ना, एक दो दिन लगातार गिरता है, तो फिर सब किसान लोग जुट जाएंगे अपना धान को लगाने के लिए।
2: चलो, बहुत अच्छा लगी इस राहुल से बात करके, और एक उम्मीद हमन ला दिखत है अग्नु भैया कि इधर धान कर बढ़िया फसल हो जाही, एमन देखत है कि कब बरखा होगी और ओकर हिसाब से बीज कर चयन भी करत हैं और बढ़िया पैदावार मेहनत करे पर इमन तैयार हैं।
3: और रोरे जिनकर से बात करें ना, युवा किसान रहें, वो कितना बढ़िया बात ला बताई, मतलब इतना कम उम्र में सब चीज़ ले जानता है कि कैसे तैयारी करना है, कैसे का करना है। एक वाओ किसान हमारे जगह हैं, रोरे अपन नाम ला बताई।
4: मोर नाम परमेश्वर राम राजवाड़े है, मैं ग्राम भोगरा नवापारा कर निवासी हूँ।
3: देखा भोगरा खती तो अच्छा धान कर खेती हो और बढ़िया उठे हम जात रहन, पहले तो सड़क किनारे ले महमहाय धान मनहर, और अब तो हाइब्रिड के जमाना आएगी, सरोरे भी जहाँ जगह ही वो जगह देखा बहुत धान कर बिक्री होता है, और किसान मन मानसून अभी शुरू नहीं हुई से तनी मनी पानी बरखा होता है, लेकिन वही में बीज मतलब खरीद कर तैयारी करता है। का स्थिति देखा थी रोरे अभी?
4: तो अभी तो मैं देखत हूँ कि किसान मन पहले से ही खरीद के ले जाते हैं बीज मनला अपन अपन हिसाब से, हमने कहा है कि अभी वही जैसे अभी जो बीज छाँटत हैं किसान मन, उनमें से अभी बहुत सारा कंपनी ऐसा आगे से जिसमें बीमारी के प्रति सहनशील है, तो किसान मन ज़्यादा वही ले लगाते हैं ताकि हमारे खेत में ज़्यादा बीमारी ना आए और हमन अच्छा पैदावार हो जाए, ऐसे करके ना।
3: तो हम देखते कि बहुत महंगा भी रहे बीज हर, किसान मन का कहते हैं राहुल मनाथी, तो तुम्हारा जैसे खरीदे आई रोरे तो कैसे चुन थी कि बिहला ले जाइए हर बढ़िया है?
4: नहीं तो बहुत सारा कंपनी के पैकेट में भी लिख के दे रहे कि नहीं ये बीमारी के प्रति सहनशील है, तो ओकर से थोड़े सा रहल ना कि ये लिखल है तो अच्छा ही चीज़ ले लिख के दे ही। अब नेशनल मल्टी नेशनल कंपनी है, नेशनल कंपनी है, तो उमन मन तो लिख के बढ़िया चीज़ ले ही दे ही, गलत चीज़ तो नहीं दे ही। और बहुत सारा वो किसान भाई मन से ही पता चले कि वो बोली कि अरे मैं लगाए रहे में बीमारी नहीं लगे रही, तो ओकर से भी सुन के भी हमन मन सोचती कि अरे भाई हर लगाए रही बीमारी नहीं लगे रही तो हम मन वाला लगाई, तो वो टाइप से भी हमन अपन चयन कर लेती।
3: तो हमन देखती कि कई बार ऐसा हो कि मौसम और धोखा देल, तो अभी का मौसम और कैसा लगा थे रोरे?
4: तो अभी का मौसम तो लगत है अब आही बारिश, अब अभी तो सुने में आते हैं उसों कि बारिश चटिक लेट है, लेकिन अब आए वाला है मानसून, तो आदमी मन तैयारी अपन किसान भाई मने करत हैं,
3: हमने देखा थी कि

0: धान कर बिहन तो खरीदते हैं किसान भाई मन, संगे संगे हम देखा थे कि मक्का कर बीज भी बिकता है।
1: हाँ बिकत है, काहे कि मक्का भी बहुत लगाते हैं किसान भाई मन अभी। हाँ तो अभी ये मक्का का है कि धान लगाए से पहले मक्का लग जाए, काहे कि ज़्यादा पानी आ जाए ना तो फिर मक्का लगाए पर समय नहीं मिले, एकर वजह से हमने मक्का पहले लगा लेते हैं उकर बाद फिर धान लगाते हैं, एकर वजह से अभी मक्का भी मार्केट में बिकत है।
0: तो मक्का लगाना शुरू कर दें किसान?
1: हाँ नहीं अभी तो तैयारी कर रहे थे खेत कर, कुछ दिन बाद
0: मक्का लगाए पर का रोरे में कैसे करती
1: तो मक्का लगाए पर पहले तो हमन मने खेत का तैयारी करती, जैसे जोताई करवाती बढ़िया से वाला जोताई करवा के एकदम भुरभुरा बनवा पटा चलवा के भुरभुरा करती जमीन लाने, ओकर बाद फिर ओला क्यारी क्यारी ओला हने फिर वो आजकल तो बहुत सारा ट्रैक्टर आ गई से तो ओमे क्यारी बनवा लेती, ओकर बाद आदमी लगाए के ओला लाइन से लगवा थी ताकि कि हमके खाद पानी देहे में हने अच्छा सुविधा हो।
0: हमन पर साल देखें कि इतना ज़्यादा अतिवृष्टि हुई, इतना ज़्यादा बारिश हुई कि वो बारिश से हमला लागिस कि अब तो जो मक्का कर खेती है प्रभावित हुई और हुई गई, बहुत सारा किसान में धोखा खाएं। तो ये बार का लगत है मक्का
1: तो अब ये बार तो अभी मौसम ठीक है, अगर कुछ दिन तक बारिश ना आए तो मक्का लग जाएगी, अब पिछले साल रही तो बारिश एकदम अचानक से अनाइस होकर बाद छोड़बे नहीं करी पानी, तो मक्का कर उकस में लगाए हरी नहीं बनी मक्का, तेकर वजह से हमने बहुत सारे किसान भाई मन मक्का नहीं लगा पाई। और अभी देखत ही अगर 20 तारीख तक 25 तारीख तक यही कस बारिश रही हल्का फुल्का तो मक्का लगाए पर अच्छा रही
0: हो, इधर बतर बढ़िया रही
1: मक्का बड़ी बढ़िया रही है बार, तो ऐसे लगत है लेट है पानी वो हिसाब से हमने।
0: रारुमन देखा था कि जब बहुत सारा किसान मतलब कुछ जानकारी भी देता, खुद भी तू किसान है और जो किसान मन आते हैं मतलब बता भी है, तो का पूछता है किसान मन?
1: किसान मन वही पूछते हैं कि ये धान हर कितना दिन कर है, कैसन खेत में होही, कैसे लगाना पड़ी, एक एकड़ में कितना बीज लगी, तो बुआई में कितना लगी, रोपा लगाई बगो कितना लगी, वही सब जानकारी पूछते हैं।
0: एक एकड़ में लगभग कितना लगे हाइब्रिड
1: बीज? जैसे हाइब्रिड बीज हमन बोलते कि 6 kg लगी एक एकड़ में हने, थोड़ा दूरी में लगाना है तो, अब बुआई करना है तो 9 kg लगी।
0: ये बार जैसे किसान भाई मन ले जाते हैं धान मल्ला तो कितना दिन मेला थारा कर दें?
1: तो अब जेकर जब पानी सुविधा है वो तो 10-12 तारीख के बाद 12-15 तारीख तक चालू कर दें जेकर जब पानी सुविधा है, और जे किसान मन भाई मन जब पानी सुविधा नहीं है ना ओमन मन लगभग 20 तारीख 25 तारीख के बाद ही चालू कर रही, काहे कि अगर जल्दी कर दें और पानी नहीं आई तो समस्या हो जाएगी।
0: खेती की तैयारी खेत मतलब जोतवाधारे?
1: हाँ जोतवाधारे ही, तो खेत का तैयारी में ये है मैं किसान भाई मतलब बताना चाहूँ कि गर्मी के समय में हम खेत ला अपन बढ़िया नांगर से जोत दें 2-3 बार तो बढ़िया रहे, काहे कि उसमें छोटा छोटा जो भी कीड़ा मकोड़ा का अंडा उंडा रहे ना तेमन नष्ट हो जाते हैं, तो ज़्यादा रोग नहीं आए उसमें।
0: कौन गाँव में खेत है?
1: मोर भौकरनावा पारा में है।
0: तो तैयारी
1: तैयारी होगी से खेत की तैयारी होगी से, अभी गर्मी में जोताई होगी से।
0: देखा और कितना बढ़िया बात बताए ना, और सच्चा किसान है परसु भी है और पूरा एक एक गो बात ला बताए दिन किसे तैयारी करें का करें। एक और युवा किसान दिखता है रोरे गोट कर अब इनका
2: इधर हमें लगत है कि कई ठो युवा किसान भी तैयारी में है और बढ़िया खेती बाड़ी कर रही है ऐसे लगत है। अब राहुल से बात करी, क्या नाम है राहुल के?
3: मोर नाम उमेश राजवाड़े है, मैं ग्राम बकना खुर्द के हूँ।
2: बताइए अपन खेती बाड़ी के बारे में इधर कैसे तैयारी चलत है?
3: अभी तो यही धान वान की तैयारी अब चालू होगी से, ठीक है। हमारे ट्यूबवेल उबेल है तो कुछ जगह हम जल्दी करते, जैसे ज़्यादा दिन अवधि के जो धान रहते वाला जल्दी हम रोपाई करते।
2: कितना खेत होगी राहुल के?
3: लगभग 7 acres में हमारे धान लगते।
2: अच्छा
3: जी,
2: तो इधर का लगत है कैसे उत्पादन मिल पाही, मौसम के हिसाब से का लगत है, कितना पानी गिरी?
3: पानी हमन तो उत्पादन ले लेती, अब का है पहले पतला लंबा धान आत रही, अब आजकल के धान हर मतलब छोटा और मोटा धान आए, मतलब मोटा बहुत वजन धान आए, तो वही मनला हम लगाते वही मनला चयन करती और बहुत अच्छा उत्पादन देते हो धान में।
2: बुआई कर जो अलग अलग तरीका वैज्ञानिक मन भी बताते हैं, राउर मन कर तरीका जो है वो बदली से है कि वही है और कौन सा तरीका है?
3: ये जो वैज्ञानिक मन जो बताते हैं कि जो हाइब्रिड धान है वाला मतलब दूरी में लगाए बर, तो वही ला हमन उमन का बात ला मानती और दूरी दूरी में लगाती और धान हर खूब कंसा मारते, हाँ दूरी दूरी लगाती और भर जाए बढ़िया, वहाँ कल्ला निकलते और बढ़िया।
2: तो पहले थरहा और कर बाद रोपाई वही पद्धति है कि सीधे बुआई वाला भी कुछ पद्धति है?
3: नहीं अभी तो रोपा ही लगाती, पहले थरहा मारती फिर रोपा लगाती। हाँ
2: थरहा कर बढ़िया से प्रबंधन हो सके, कम बीमारी लगे और बढ़िया हमन के 20-21 दिन में थरहा तैयार होके मिले, ओकर पर हमन ला का करना चाहिए?
3: सबसे पहले तो जमीन ला

0: बढ़िया से हमन के जोतवाना पड़ते, बढ़िया चिखला करना पड़े, ठीक है। मतलब वहाँ फिर बढ़िया खाद वाद हमन डालती, डाले के बाद फिर का जैसे बीज ले थी, बीज ले 24 घंटा फुलाती, फुलाए के बाद फिर वहाँ अंकुरित बरोला रखती हमन, जुट बोरा बिछाती, फिर ऊपर धान ला रखती, फिर ऊपर से जुट बोरा ढकती, वहाँ बढ़िया से जर्मिनेशन आल जरिया आयल, एक बाद हमन ले जाके वाला खेत में मतलब छिड़क देती। तो मतलब मिट्टी हर बढ़िया भुरभुरा रहते, तो मतलब 20-21 दिन में लगभग हमारे बीड़ा हर तैयार हो जाते और फिर हम रोही रोपाला चालू करती।
1: हाँ, और रोपा के समय और एकर से पहले थरहा के समय पानी का जो प्रबंधन है, हमन के कितना पानी देना चाहिए, कितना पानी रुके रहना चाहिए, ओकर का हिसाब रहे?
0: रोपा का समय मतलब ज्यादा पानी रहते तो हम निकाल देती, काहे वाला मतलब बढ़िया लटपटाल रहल, बढ़िया चिखला वाला जमीन रहल, वहाँ बढ़िया सरस बनते। हाँ, तो वहाँ बढ़िया धान के उत्पादन आते और कल्ला भी बढ़िया आये वहाँ धान के, फुटाव जो रहते ना वो बढ़िया आते।
1: ये जो धान के जो बीज कर दुकान दुकान में छाटते लोग मन, किसान मन जाते, तो ये का चीज के मन ध्यान रखते है कि कौन सा बीज लेना चाहिए?
0: अभी का है सब आदमी मन का है, जब सब किसान भाई मन मोटा धान मतलब जो ज्यादा उत्पादन दे वही टाइप के धान ना लगाते हैं, ठीक है। तो मोटा वजनदार धान ही किसान मन अभी चयन करते हैं और वही ला मतलब खोजत रहते हैं कि ये धान बढ़िया है, मोटा सेगमेंट के जो धान रहते वह बढ़िया उत्पादन आते।
1: कितना दिन का अवधि का धान चुनत है इधर?
0: ये बार लगभग बारिश के हिसाब से 120 दिन 115 दिन के धान के ही चयन करते हैं, काहे पानी अब थोड़ा सा कम बताते हैं, तो हिसाब से किसान भाई मन भी थोड़ा जो 150 दिन के धान लगात रही तो थोड़ा सा भी कम दिन का लगाते हैं, जो 10 दिन पहले पक जाए।
1: मतलब वो ज्यादा सुरक्षित रही कि 115-120 दिन का धान रही तो बढ़िया होकर पैदावार भी मिल जाए, आगे कर खेती कर भी तैयारी हो जाए।
0: हाँ, आगे की खेती का भी तैयारी हो जाए, 115-120 दिन में लगभग अच्छा उत्पादन भी आ जाए, लगभग मोटा सेगमेंट के ही धान रहते।
1: चलो, बहुत बढ़िया लगी राहुल से बात करके, हमन ला नया नया जानकारी भी मिली और राहुल ला काम भी हुई, कुछ धान बीज भी लेना पड़ी और कुछ सलाह भी देना है मुझे लगत है और किसान मन ला, तो बहुत बहुत धन्यवाद करत है।
2: परसों भैया देखा कितना बढ़िया बढ़िया बात है निकल के आते है और सही ऊपर हमन सही जगह में पहुंचे ही, कि हर किसान अलग अलग जानकारी देता है और अभी किसान मल्ला ये सब जानकारी भेटा ही नहीं तो एकदम समय ऊपर कर जानकारी मिली। एक और किसान दिखता है हमारे जग और ये तो मैं देखता हूँ कि धान कर थरहा करे से पहले खुलाए के बाद जड़ निकले अंकुरित होएल और कई वो किसान ठगाए जाते हैं अंकुरित नहीं करे सके, तो ओला बताते हैं विधि ला कैसे कैसे करते हैं, खुद भी किसान है रहो, अपना नाम ला बताइए
3: भैया सबको इसके। जय राम जी।
2: हाँ, जय राम जी।
3: भैया मोर नाम शिव प्रसाद प्रजापति है, मैं ग्राम कुबेपुर रहने वाला हूँ और मैं ये किसान भाइयों को बहुत अच्छा समझा रहा हूँ कि किसान भाई पहले आप धान बीज खरीदते हैं, धान बीज खरीदने के बाद पहले आप अपना बीज को निकाल लीजिए और थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि इसमें अच्छे से अंकुरित आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, और किस प्रकार अंकुरित अच्छा आना चाहिए और कैसे इसको फुलाना चाहिए, कैसे इसको बनाना चाहिए। तो भैया मैं सब किसान मन के मोर यही निवेदन रहल कि थोड़ा सा किसान मन 30 घंटा धान ला पानी भिगो लें, भिगोए के बाद अपन अच्छे से ओके बोरा के ऊपर फैला ले हैं और ऊपर एक नीचे बोरा करें, एक बीच में धान करें, ऊपर से कंचा बोरा ला ऊपर से ढाक दें, ऊपर से का होल कि अंकुरित सबके तरफ से बराबर आयल। अब बहुत से किसान का करते हैं भैया कि उमन बोरा में डायरेक्ट भर देते हैं धान ला फुलाइन, एक चुपचाप ये बोरा ला उमन कंचा धान ला बोरा भर के मुँह ला बांध के और पैरा में दबा देते हैं, ये बड़े बड़े पखना सील लोढ़ा ला ठेल देते हैं वहाँ पे, ऊपर से कावल गरम ज्यादा धान पा जाए तो अंकुरित वहाँ पे नुकसान हो जाए, खराब हो जाए, धान सड़े के नुमत में आ जाए। बहुत से किसान ऐसा है कि ऐसा ऐसा दबा देते हैं कि प्लास्टिक बोरा में डाल देते हैं, प्लास्टिक बोरा में डालने के बाद इतना हीट हो जाए लो कि मैं हाथ ला डाल दिया तो गर्म हो जाए हाथ, तो मैं अंकुर नहीं आ पाए ढंग से।
2: तो हमन देखते हैं कि किसान मन कई बार मैं कहे नहीं सूरज में कि ठगाए जाते हैं, इतना महंगा बिहान ला खरीद के लेते हैं और लेजे के बाद वहाँ उसने रौरे जी से बताएं कि फुलाइन 12 घंटा तहाँ वाला ठेल दही। मैं तो कोनो कोनो जगह देखता हूँ कि जूट का बोरा मल्ला प्लास्टिक बोरा मल्ला लाद के ओकर पे पखना मल्ला ठेले रहते हैं, तो एकस नहीं करना है
3: वो सबसे भारी गलती है, वो बहुत भारी गलती है। इतना महंगा महंगा बीज किसान लेके जाए 1200-1500 रुपया के बिहान है 3 किलो के धान के दाम, ओला एक पखना ठेला प्लास्टिक बोरा में ठेल देते हैं, वो सबसे भारी गलती है और है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसानों को, एकदम सूती का बोरा ले ले है ऊपर ऊपर बिछा ले धान ला बढ़िया 4 इंच ऊंचाई कर दे धान के, ऊपर से एक बोरा ला ढांक दे वहाँ पे, 24 घंटा तक रहे वहाँ पे धान हर, ओकर बिहान जो के बहुत अच्छा से अंकुर आ जाए।
2: और बुआई कर का तरीका है, बुआई कैसे करें?
3: बुआई के खेत के तुम जोत कोड़ के तैयार कर ले, खाद गोबर फेंक ले,

0: केवल सूखा धान को छींटा मार देते हैं, उसके ऊपर हल्का से जुदाई करें, थोड़ा जुदाई करें, एक पट्टा मार दें।
1: हम देखते हैं कोई कोई किसान मन जिसे बरखा बढ़िया नहीं है, सिंचाई के साधन नहीं है, तो जल्दी हो ही कहीं के सूखा भी आजकल थरा करता है।
0: सूखा थरा बहुत अच्छा है, निंदाई में बहुत ही अच्छा लगे लोग, एकदम हल्का निंदाई, मान के बजर नहीं करे निंदाई समय, जो धुरे थरा बुनते सूखा थरा वो निंदाई में बजर नहीं करे।
1: और का खाद पानी डालना चाहिए?
0: खाद तो डीएपी डालना चाहिए, पोटाश डालना चाहिए, यूरिया डालना चाहिए, यूरिया की मात्रा बहुत कम होना चाहिए बीड़ा में।
1: और हाइब्रिड धान ला हम देखती कि थरा करे के बाद कितना दिन में ओला उखाड़ना चाहिए?
0: लगभग लगभग 15-17 दिन के अंदर उखाड़ना चाहिए।
1: और कितना दिन में लगाए देना चाहिए?
0: 20 दिन के अंदर लगाना चाहिए, 20-25 दिन के अंदर।
1: और एक ज्यादा हो तो उत्पादन में?
0: तो उत्पादन नुकसान ही हो, लेकिन बुरा हाजा धान है, थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, थोड़ा नुकसान हो जाएगा फर्क।
1: और जैसे तो हाइब्रिड की बात कर रहा थी, किसान भी यही जाना थी जो हमारे पारंपरिक धान मना है, जीरा फूल बिस्नी मना है, ये मल्ला थरा करे का क्या तरीका है?
0: वो सेम तरीका थरा करे का तरीका है, सेम तरीका जीरा फूल बिस्नी का तरीका सेम करना है। ऐसा आजकल गांव में बहुत कम ऐसा किसान है जो कि बिस्नी और जीरा फूल लगावते हैं, जो बड़े बड़े किसान लोग हैं वही में लगावते हैं। जितने भी किसान आज के छत्तीसगढ़ में हैं, सिर्फ तो सिर्फ धान वजन चाहिए उनको, सोसाइटी बेचना चाहिए, बेचना है उनको, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ खाने के लिए बहुत कम है उनके पास।
1: कोई किसान है 3 किलो चाहे 6 किलो धान ले जाता है, 1 एकड़ में 6 किलो धान लगाता है, तो लगभग कितना उत्पादन हो जाएगा?
0: बढ़िया किसान है तो 22 क्विंटल पैदा उसको हो जाएगा, 22-25 क्विंटल उसका पैदा होगा।
1: और इसमें हाइब्रिड में पतला धान भी है?
0: हाँ, एकदम प्रधान है उसमें, बीएनआर का प्रधान उसमें हाइब्रिड में है, वो उसमें रिसर्च वैरायटी है, वो थोड़ा पैदा कम देता है।
1: तो अभी किसान भाई में ले जाता है तो कितना दिन में थरा कर दें? बरसात का इंतजार करें कि थरा
0: नहीं, नहीं, कोई सूखा थरा करते थे, धुरिया मार थरा मारते, कोई अपन अपन ट्यूबवेल साधन है, अपन साधन करते थरा। बहुत किसान आगे ने बहुत तेज की आज बहुत तेज की, मैं तो कल रोई लगाना शुरू कर दूँ रोपा, ऐसा ऐसा किसान है वहाँ पे।
1: देखा बड़ा बढ़िया बात हुई इस परसों भैया, और हमन देखती नहीं कि धान का थरहा में बहुत किसान मन परेशान हो जाते हैं कि इतना महंगा धान बीज लेते हैं और वहाँ जाए के देखते हैं तो अंकुरित नहीं हुए, वो में कई गो लापरवाही कर देते हैं, लेकिन ओला भी यहाँ जानकारी देता है और किसान मन मिल के देता है कि भाई इसे इसे थरहा करिया, तो बड़ा आज बढ़िया गोट बात भी हुई। और कोई किसान मन है गोट करना है?
2: किसान मन तो अग्नुभिया बहुत है, और हमन ला देखना पड़े कि दो मिनट भी हमन बात करब तो खत्म नहीं कर पाबो किसान मन ला। तो बढ़िया मौसम भी चलत है। राउर के का नाम है?
3: हमार नाम तो रविशंकर जायसवाल है।
2: रविशंकर जी कौन गांव के रहे वाला?
3: हम ग्राम खोड़ जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ के रहे वाला है।
2: अच्छा, बड़ा दूर गांव है, सूरजपुर का भीतरी है कहे गांव?
3: हाँ, सूरजपुर से 80 किलोमीटर पड़े हमारे गाँव।
2: और सूरजपुर से 80 किलोमीटर दूर?
3: हाँ।
2: बतावा वहाँ का खेती बाड़ी के बारे में बतावा।
3: वहाँ हमारे जैसे अभी हमारे 5 एकड़ के आसपास जमीन है।
2: अच्छा।
3: तो हमन अभी मंडी के जो हिसाब से रेट है उस हिसाब से हमने देखा मोटा धान लगा थी, मोटा धान थोड़ा उपज अच्छा मिले लो में हमें।
2: अच्छा, उते धान बीज भेटा लोग मन कहाँ से लेते हैं?
3: वहाँ नज़दीक वही ब्लॉक हमारे उड़की ब्लॉक होगी सऊधर, और वो शहर में आते हैं तो सूरजपुर आ जाते हैं, फिर अंबिकापुर भी आ जाते हैं लेबर धान का।
2: तो बढ़िया धान कर पैदावार मिले तो ओकर बर का करना चाहिए शुरू से बताओ हमें?
3: बढ़िया धान का उत्पादन लेना है तो खेती के लिए सबसे पहले अच्छा से खेत का मैनेजमेंट करना चाहिए, जिसमें आपका खेत जो अपना जहां धान लगा रहे हैं वो चारों साइड से बराबर होना चाहिए, समतल होना चाहिए, उसके बाद उसमें अच्छे से जुताई करें और अच्छा बीज का चयन करें, और खाद तो डालना ही है, बिना खाद का तो होता ही नहीं है, और अच्छा उत्पादन मिलेगा।
2: कितना कितना खातू डालना चाहिए, कौन हिसाब से बीज रहना चाहिए, कैसे पता चले कि ये धार इतना किलो बीज लगे?
3: देखा अब जैसे हाइब्रिड में अभी जितना भी धान आते हैं ना, तो 1 एकड़ में 6 किलो में आराम से हो जाए, अगर पूरा जो भी पैकेट में धान रहे वो 6 किलो अगर अंकुरण बढ़िया हो जाए तो 6 किलो में हो जाए लेके, और मोटा धान रहे तो 6 किलो में हो जाए हमारे, हमने लाती तो 1 एकड़ में 6 किलो ही डालती है हमें।
2: ये जो नया नया कंपनी है, मान लेवा कोई बढ़िया पैदावार हमन के नहीं मिली, बीज हर खराब निकल गई, तो ओकर व्यवस्था रहे?
3: जिसे बीज ले जाती तो वहाँ तो हमन बढ़िया विश्वसनीय दुकान से लेती, तो वहाँ समस्या है तो नहीं देखे कि मिले।
2: मतलब बीज निकलने का गारंटी रहे?
3: हाँ, वो गारंटी रहे।
2: और एक अलावा जैसे कोई रोग है, कोई बीमारी पकड़ी से, ओकर बारे में फिर कैसे पता चले?
3: जैसे जो खेती करते हैं वन तो सब तो थोड़ा बहुत जानकारी रहे के लिए, और प्लस में जो कंपनी के बीज लगाए रहती है, हम आते हैं कंपनी वाला मन भी आते हैं देखे वाला धान। अच्छा। धान देखे आते हैं।
2: राउर की कितना पढ़ाई लिखाई हुई?
3: हमारे MSc कंप्लीट है।
2: कौन विषय में?

0: एंथ्रोपोलॉजी से।
1: ये का हिंदी में क्या बोलते हैं?
0: ये मानव शास्त्र बोलते हैं कि।
1: अच्छा, तो मानव शास्त्र पढ़े के बाद में खेती बाड़ी की तरफ कैसे रुझान हुई इसकी? अभी नौकरी देखना है, दोनों साथ चलत है।
0: अब खेती बाड़ी तो करना ही है, बिना खेती बाड़ी का कैसे काम चलेगा? अब खेत बाड़ी है तो करना तो है ही है।
1: घर में और लोग मन है?
0: हाँ है ना,
1: तो सब मिल के खेती बाड़ी करते।
0: हाँ, पापा हैं, मम्मी हैं, सब मिल के करते हैं।
1: और ये जो मानव शास्त्र और पढ़ें तो कहाँ से पढ़ें?
0: यही अंबिकापुर से।
1: अच्छा, यहीं से करें। हाँ। आगे अब का भविष्य देखा थे?
0: आगे यही कहीं देखते हैं अभी तो।
1: मतलब अपन जो विषय चुने हैं मानव शास्त्र, वही बट नौकरी भी करिए और खेती बाड़ी भी करिए।
0: हाँ, दोनों।
1: राहुल इतना पढ़े लिखे ही, खेती बाड़ी में राहुल ला का लगत है कि हमर देश में, हमर सरगुजा क्षेत्र में एमे बढ़े कर संभावना है?
0: हाँ बिल्कुल है।
1: कैसे?
0: आदमी कितनो पढ़ ले लेकिन खाना तो खाएगा ही ना, तो खाना खाने के लिए तो खेत से उगाना पड़ेगा, तो उगाना तो जरूरी है ही। अब सब नौकरी ही करेंगे तो खेती में तो आना तो पड़ेगा ही।
1: एकदम बहुत बढ़िया बात राहुल करें, और बहुत अच्छा लगी इस राहुल से बात करके। और देखा अग्नु भैया, बातें बात में देखा एमएससी करीन है और धान बीजा देखत हैं और खरीदत हैं और खेती बाड़ी कर भी तैयारी करत हैं। तो मतलब हाँ, अजूबा चीज़ है कि सब इतना बढ़िया प्रतिभावान लोग मन, अनुभवी लोग मन खेती बाड़ी भी करत हैं और अपन समाज में नाम भी कमाते
2: हैं। बढ़िया है भाई, देखा पढ़ल लिखल अगर आदमी कोई खेती बाड़ी करल ना तो कर खेती हर भी बढ़िया दिखेल नहीं। तो एगो और किसान हमारे जगह है, रौरे अपना नाम लो बताइए।
3: मोहन लाल राजवाड़े।
2: कहाँ रहती रौरे?
3: तो ग्राम अखोरा कला, पोस्ट कल्याणपुर।
2: अभी कैसे यहाँ आए रहे?
3: वही धान उन बीज लेबर।
2: हम देखती कि सब जन दे हाइब्रिड दुकान कति जाते हैं, भीड़ लगाए रहते हैं और चमचमात दिखे, प्लास्टिक में दिखाता है, बढ़िया बढ़िया बिहन खरीदत भी यहाँ और डोह के ले जाता है। तो जो पारंपरिक धान बिहन मन रही, जीरा फूल, जौ फूल मन, नहीं झोनी परास मन, वो मन कहाँ भुलाएगी?
3: अब वही तो ना, पैदावार नहीं, हाईब्रिड में ज़्यादा पैदावार हो, देखा सब आदमी पुराना धान ला छोड़ते गए।
2: उत्पादन तो बढ़िया होता है तो जाना था।
3: हाँ,
2: बाकी खाए पर भी तो स्वाद भेटा है।
3: खाए तो स्वाद नहीं है उसमें, वो लोकल धान में कहाँ।
2: तो रौरे लगाती तनी मनी धान ला
3: तो कहाँ, बिहन उहन टूट गई सोकर।
2: अब नहीं है?
3: नहीं है।
2: धान कर तैयारी कर रहा रही खेत बाड़ी?
3: खेत बाड़ी करत ही, वही बीड़ा उड़ा थहरा करे पर अब धान उन बिहन लेह पर आए रहे।
2: कितना खेत है रोरे का?
3: ज़्यादा तो नहीं है, वही 3-4 एकड़ है।
2: हाँ, 4 एकड़ कम नहीं हुए। हाँ। तो धान लहर साल लगाती, धान से लगी और कहीं खेती करती?
3: तो ये बरसात में धान लगाती और गर्मी में वही साग सब्जी, करेला हो गई, कोहड़ा हो गई, लौआ हो गई, सब मक्का गन्ना, गन्ना उन्ना भी लगा थी।
2: इधर तो और कर घर कती देखा हाथी मन भी आए रहे।
3: हाँ।
2: तो गन्ना ला नुकसान पहुँचा इनका?
3: वो पूरा गन्ना मला जोंढरी मकई मला भी पूरा खाते हैं। अभी हम अपने गांव में तो हैं।
2: जोंढरी मकई का नाम लिया तो याद पड़े इसकी।
3: हाँ।
2: देखा धान कर संगे संगे अभी मकई कर भी जोताई कोड़ाई लगाई शुरू हो गई से। तो रोरी लगाया था इनका?
3: मकई नहीं लगाए ही अभी, वो गर्मी में लगाए रहे हैं।
2: कितना में लगाए रहे?
3: तो करीब 1 एकड़ कस में रही।
2: टूड़ धारे
3: टूड़ा थी अभी,
2: मतलब
3: सूख गई से वही लग टूड़ा थी।
2: तो बिहन ला बेच था ओकर, गादा नहीं बेचा?
3: ना ही ओकर सुखा के ओकर दाना ला।
2: तो देखा परसों भी सभी जात का खेती करते हैं, धान बिहन ले आई ना है, बाकी गर्मी कर जो गेहूँ मक्का है ओला लगाए रहें, काबर की पाछू साल ठगाए गए रहें। तो ये धार लगाए रहें तो बढ़िया ये उत्पादन करी ना है, तो तोरत भी है ये मक्का ला।
1: तो हमारे बात तो पूरा खत्म हुई सगनो भैया, और यही हमन समझे कि ये धार बड़ा उत्साह है किसान भैया बहनी मन में, और धान बीज सबका तैयारी मन करते हैं पहले से, और खरीद के भी रखत हैं, और पहले खातु कर भी देखते हैं कि वो भी सब व्यवस्था हो जाए, और जैसी पानी गिर ही तो इमन खेती बाड़ी शुरू कर।
2: हाँ, और बड़ा बढ़िया लगे इसकी, देखा नया नया जानकारी भेटाई शायद। हमन देखा कोनो गांव में जाते हैं तो 2-3 गो किसान मन से बात होती कि भाई काका खेती करते हैं, लेकिन आज रूरे एजेंट से गोट करते हैं तो कहाँ सूरजपुर खोड़ मतलब मध्य प्रदेश पर बॉर्डर समझ ला, वो जगह कर किसान जगह रही।
1: हाँ, हाँ।
2: तो सब जगह कर बात पता चल गई कि कहाँ कथी कौन सा तैयारी करते हैं, का खेती करते हैं, धान कर का तैयारी करते हैं, मक्का कर का तैयारी करते हैं। तो आज तो भाई गुड बात में

0: बड़ा बढ़िया लगी, हर तरह के किसान भेटाई।
1: तो आज भी ये कार्यक्रम ला ही खत्म कर थी और फिर अगला अंक में कोई दूसर गांव में पहुँचब, अगला अंक में फिर कोई दूसर गांव में जाओ। तो आज राम राम कह थी किसान भैया मिलना
0: और राम राम
1: राम राम।
2: एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे
3: कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अभी अमन किसान संध्या कार्यक्रम सुनत रहन अग्नु भैया, और बड़ा बढ़िया लगत रहिस हमन ला तो कार्यक्रम। किसान मन जगह जगह पर अभी संग्राइन है और बीज भी लेहत हैं, खातू कर भी व्यवस्था करत हैं, तो बढ़िया ओमन जानकारी भी देत रहिन और बतात रहिन कि कैसे कैसे ओमन खेती बाड़ी करत हैं और कैसे बढ़िया लाभ कमाते हैं।
1: और सबसे बड़ा बात यह है कि किसान मन इतना सब चीज़ ला जान गिन है, एक नवा तकनीक मतलब भी जान गिन है कि हम अक्सर देखती नहीं कि इतना महंगा महंगा धान बीज ला ले जाते हैं। तो देखा एगो जानकार भी रहिन जगह मन से हम गुठियान कि वो धान कर जो थरहा करना रहेल, नर्सरी तैयार करना रहेल, ओकर से पहले धान ला 24 घंटा फुलाना रहेल। अब फुलाए के बाद ओला निकाल के और पहले देखत रहें कि बोरा मल्ला फट्टी मल्ला और ऊपर पखना मल्ला भी ठेल दें कि गर्म हो ही तो ओकर अंकुरित हो ही, लेकिन ओहर जल के भुटाए जाए और ओकर बाद अंकुरण होबे नहीं करे और ओला उतना महंगा बिहन ला ले इसके बुने जामबे नहीं करे। तो ये तकनीक ला भी बताते हैं किसान मल्ला कि भाई 24 घंटा धान ला फुलावा, ओकर बाद 12 घंटा पर ओला हल्का सा जूट कर बोरा में तोपता और मतलब वही करता।
0: सही तकनीक से कर ही तो बढ़िया हमन के उत्पादन भी बैठाए पही। वही देखा एक ठो कितना खोड़ कर एक ठो आए रहीस, इतना पढ़ लिख के आए रहीस, बताओ MSc करे के बाद वो यहाँ पर धान बीज लेहत रहीस। वो बड़ा तकनीकी आधार पर लेत रहीस कि कौन सा बीज बढ़िया है, कौन सा आधार हो ही, कौन सा नहीं हो ही। तो पढ़ाई लिखाई में भी लोग मन हमारे क्षेत्र कर, ग्रामीण क्षेत्र कर, दुरिया दुरिया के लोग मन नाम कमाते हैं और खेती बाड़ी में भी उतना ही नाम कमाते हैं।
1: हाँ भाई, अब हम देख जहाँ तक बातचीत करें रोरे देखियो कि खाली युवा किसान मन रहे, तो युवा मन में खेती कती जो रुझान बढ़ी से है, बड़ा अच्छा संकेत है।
0: वही सब चीज़ ला हमन समेटे कर कोशिश करते हैं हमारे कार्यक्रम में। उम्मीद करते हैं राउर मनला कार्यक्रम जरूर अच्छा लगी सोई। और एक साथ चौपाल से विदा लेकर बिरा हो गई से आन दिन भेटा, तो फिर बातचीत करब। आज चलत ही राम
1: राम, राम।

ग्रामीण श्रोताओं के लिए अभी चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है, रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए अब पेश है आपका बेहद पसंदीदा कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। हाजिर हैं हम लेकर ये कार्यक्रम, और पहला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो है फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से। आवाज़ है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, और फरमाइश भेजी है आप सबने। मानपुर मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान और शेख हबीबुर रहमान। जांजगीर चांपा से दिलदार मेरी, ज्योति जानवी और दीक्षांत मेरी। खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेंजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमाज बानो पवार, छोटू पवार, शंकर लाल गंगराणे, वनीता गंगराणे और उनके परिवार के सभी सदस्य। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्वनी और विपुल कामड़े। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेवानी, संगीता नेवानी, आकाश, आयुषी, सागर, यशी, हनी, पूजा, सीता और उनके परिवार के सभी सदस्य। अम्बागढ़ चौकी से फरमाइश भेजी है रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान ने। अंबिकापुर जोड़ा पीपल से स्वरूप आनंद सरजाल ने भी अपनी फरमाइश भेजी है। रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, आंशिक संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी, उत्कर्ष और डुग्गू। उमरिया से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई, विकास सिंह और ओम प्रकाश सिंह। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकोस्ट्रा, रोजी डिकोस्ट्रा, पर्ल डिकोस्ट्रा और विलिस डिकोस्ट्रा। वणिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा।

कुंजनगर जयनगर सूरजपुर से प्रेमलता देवांगन, अमीर तांजी, महिमा देवांगन और श्रेया देवांगन, अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आफिया, जावेद अंसारी, सुराज अख्तर, जस्मीन, सकीला, सना, समा, हिना, रजिया, सुल्तान अंसारी और उनके परिवार के सभी सदस्य, और सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु मिस्किन, रीतिका मिस्किन, वाणी मिस्किन, चंद्रकला, गणेश, काशीनाथ, संगीता मिस्किन, आरोही, प्रियांशी, सोनी और उनके परिवार के सभी सदस्य। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की पसंद पर कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से।

सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, और इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी आप सभी श्रोताओं ने। बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, कसकेला सलका भैयाथान से स्नेह कुमार सिंह, ज्योति सिंह, सेजल सिंह, साक्षी सिंह और अर्चना सिंह, केतका सूरजपुर से हमारे श्रोता है संजय सिंधराम, टेकराम, विवेक कुमार, उमेश कुमार, अर्जुन सिंह, अरविंद सिंह टेकाम, कौशलपुर सूरजपुर से सुखराम सिंह मरावी, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, सावरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ पाटिल नारे, पुष्पाताई नारे, अमरावती से सईद भाई, सूफियान अनस, अनेजा आफियास, अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयसा खान, हदीहा खान और मुस्तबा खान, यवतमाल महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से, चनोरा फिरोजाबाद से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजूलता कुशवाहा, श्याम रवि आर्यन, रंजीत कुशवाहा, रामानंद और उनके साथी, कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शाह, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुषी गुप्ता, अन्विका बेबी और झुमरी तलैया, गिरिडीह से अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, जिया टूसी, आयुषी, अनिरुद्ध, मुन्नी देवी, जयप्रकाश और उनके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं फिल्म अपनापन का ये गीत, आवाज़ है सुलक्षणा पंडित और किशोर कुमार की।

इंस्टा फरमाइश। ये कार्यक्रम इस वक्त आप आकाशवाणी अंबिकापुर से सुन रहे हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इसके लिए हमें फरमाइश मिली आप सभी श्रोताओं की। नाथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। खरगोन सनावत से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बोड़ाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश और जगताप। खुर्जा उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, उषा रॉय, अमित कुमार रॉय और हैप्पी रॉय। पंचकुला से आशु चुघ, अश्वनी चुघ, गोविंद, टोनी, लव दीवान और राधे ढींगरा। अनूपपुर से जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी केवट, कृष्णा केवट, बालू कुकड़े, सविता कुकड़े, नितिन पाटिल, नलिनी पाटिल। आप सब हैं महाराष्ट्र से। हरियाणा से हमारे श्रोता नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लाडो लवली खन्ना, रजत खन्ना, लव खन्ना, कुश खन्ना और उनके परिवार के सभी सदस्य। मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा, आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बनी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, वैदेही जोशी, हंसिका जोशी और उनके साथी।

मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गंवाड़कर, सरिता गंवाड़कर, प्रणीता गंवाड़कर, अर्जुन गंवाड़कर टुक टुक और नागपुर से वैशाली शैलेश गंवाड़कर, सुमित गंवाड़कर, ध्वनि गंवाड़कर, परी प्रिंस और एकांश गंवाड़कर। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया फिल्म आ गले लग जा का ये गीत।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश इस वक्त आप आकाशवाणी अंबिकापुर से सुन रहे हैं और आज इस कार्यक्रम को आपके लिए पेश कर रही है आपकी रेडियो दोस्त मृदुल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत और इसके लिए फरमाइश भेजी हमारे इन श्रोताओं ने रावर करनाल से विनोद लखनपाल, चरौदा बाजार नवापारा बलौदा बाजार से नंद कुमार ठाकुर, प्रेमला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर, बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मैत्रे, अंजलि करवा और बाला साहब करवा, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतेक विरक और मीका विरक, दुल्हापुर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून, खंडवा से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और किट्टू, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सिटी दीवाना, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू, अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी वर्मा, भूपेश और दीपेश वर्मा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, जोधपुर राजस्थान से हमारे श्रोता रमेश चंद्र चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित चौहान, गर्वी और हिमाक्ष, रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया, श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, श्रीगंगानगर खोखरा वाली से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी और शगुन बारासा और फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा और लाडू खेड़ा। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर पेश है कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म बॉबी से। गीत लिखा आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाज़ लता मंगेशकर की।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत हमारे श्रोताओं की पसंद पर। सहारनपुर से राधा रामदेव, अर्पणा नामदेव, अभिषेक नामदेव और हर्षित शर्मा। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव। पंजाब से मोहम्मद हफीजुद्दीन, हबीब मलिक, खलील मलिक और अली रहमान। पलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग, पूना राम देवांगन और कृष्णा देवांगन। और जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान और समरीन परवीन, माहिरा नूर। यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन, खारवन मीनाक्षी, लोमा और डॉक्टर ईशानी। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोध। ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी खुराना, लाविया आरव खुराना और एसकी पप्पी। सोंगा मगर लोट से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हेयांश और उनके साथी। यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन मनवर और रोशनी मनवर, प्रियांशी। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया फिल्म देश परदेश का ये गीत।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म खानदान का गीत, और कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया फिल्म बॉम्बे टू गोवा का नगमा। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत तैयार किया है राहुल देवबर्मन ने, और इन दोनों गीतों की मिली जुली फरमाइश इस तरह से है। बागपत लाहौड़ा से जगमोहन सिंह प्रजापति, मुनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन और भुवनेश्वरी देवी। गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, चाहत और सादिया। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही महराज जहां, आजाद नगर लक्सर, हरिद्वार से। यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे और रक्षिता लोखंडे। बलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह और सुनीता सिंह। मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा। धमतरी से रामचंद्र माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा और उनके परिवार के सभी सदस्य। और ये श्रोता हमारे हैं टोरोवाल नवाशहर से गंगदीप थांदी, तृप्ता थांदी, प्रियंका थांदी, प्रशांत थांदी, प्रियम थांदी, पामिका और वाणी थांदी। और मीरा रोड मुंबई से लखन सिन्हा ने भी इस गीत को सुनना चाहा है। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार। और आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत जो है फिल्म बॉम्बे टू गोवा से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: क्या करते हो?
1: क्या कर रहा हूँ?
0: भैया छोड़ो ना।
1: क्यों छोड़ूं?
0: प्लीज समझो ना।
1: क्या समझूं?
0: वो लोग देख रहे हैं।
1: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
0: अच्छा तो ये बात है तो मैं और पास आऊं?
1: आओ ना।
0: नो आगे। दुनिया चाहे कितनी जले।
2: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए फिल्म बॉम्बे टू गोवा की इस गीत के साथ ही कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश आज यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। समाचार संध्या अब से बस कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
4: The topic for the Governing Council meeting.
5: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव

0: विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं, बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
2: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.telly-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज MT सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
4: पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन।
2: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को MT सिटबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर MT जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से ये जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
5: The visit will provide an opportunity.
6: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
5: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
2: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा

0: को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
1: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
3: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है, जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
2: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
4: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने इलाज करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है, जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
2: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है।

0: टन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत सुनिधि चौहान की आवाज़ में। इसे हमने फिल्म मुसाफिर से लिया है। गीत लिखा देव कोहली ने, संगीत आनंद राज आनंद का है।

0: चित्रपट संगीत के आखिर में आइए सुनते हैं गुलजार का लिखा गीत एआर रहमान के संगीत निर्देशन में। आवाज है महालक्ष्मी अय्यर, वैशाली, ऋचा शर्मा और शोमा की, और फिल्म का नाम है हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे।
1: डुम डुम डुमक डम डम डमक डुम डुम डुमक डम डुम डुम डुम डुमक डम डम डमक डुम डुम डुम।

फिल्म साथिया के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं और अब हम आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं, कार्यक्रम ईमेल की गूंज। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम की दो विशेष बातें, एक तो ये कि आज इस कार्यक्रम में हमने कुछ फिल्मों के शीर्षक गीतों को शामिल किया है, सुनकर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। दूसरी बात ये कि आप अपने रेडियो सेट का वॉल्यूम ज़रा बढ़ा लीजिए, क्योंकि आज इस कार्यक्रम में हम ढेर सारे नामों को शामिल करने जा रहे हैं और ऐसा ना हो कि आप अपना खुद का नाम सुनने से चूक जाए। तो इसकी वजह यह है कि आज बहुत सारे श्रोताओं के ईमेल भी हमें मिले हैं, तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और शामिल करते हैं आज के इस कार्यक्रम का पहला नाम, जो है कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले और सुजाता हिवराले का। ये श्रोता हमारे हैं पश्चिम बंगाल रानीगंज से रेहान शर्मा और करणदीप, वणिखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, नांदूरा बुल्ढाणा महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन पाटिल, संतोष काटे और धनोरा विटाली से इनके बहुत सारे साथी, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्वनी और विपुल कामड़े, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक और जयपाल यादव, पीपरलोड सरगांव मुंगेली से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, अकोला से के शरद पाजपोर, शोभा पाजपोर, वैदेही विहान बाबू, रश्मि अक्षय और अभिनव पाजपोर, अररिया बिहार से ईमेल भेजा है फैसल इमाम, मोहम्मद अकमल, मोहम्मद अफजल और नफीसा परवीन ने, देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल रजक और मुरली क्षेत्री, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश, रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर, लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी, परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई और प्रीतेश संघई, पजौनिया जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसौलिया, एटा से नबी हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, नावेद हसन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, यशप अब्बासी और उनके परिवार के सभी सदस्य, ततरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी वर्मा, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा, गांधी ग्राम गुजरात से पूजा पायल, प्रवीण सोनी, कंचन कुसुम, कलावती सोनी, खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव सैनी और उनके परिवार के सभी सदस्य, गांव फ्रासी हिसार से राजकुमार डूडी, सौरभ डूडी और प्रमोद कुमार डूडी को

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600, पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: आइए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। और इस गीत के लिए हमें ईमेल भेजे हैं आप सभी श्रोताओं ने। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाड़कर, सरिता गवहाड़कर, प्रिंस एकांश गवहाड़कर, अर्जुन और टुक टुक। बठेना पाटन दुर्ग से बालकरण वर्मा, जिनी वर्मा, ज्योति, प्रहलाद वर्मा। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, पिंकी साहनी, अफजल मलिक, निप्पी साहनी और सुनीता साहनी। लोहारी डी कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी साहू, खुशांत साहू और निशांत साहू। पद्मा टाकी नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह और कुशल शाह। धनौरी से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और अयान बाबू। मनकी लोरमी से नारायण खांडे, रजनी खांडे, तुषार खांडे और समीर खांडे। लगान पंडरिया से ईमेल भेजा है उत्तम कुमार बघेल, रुकमणी बघेल, साहिल और भारती बघेल ने। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेवानी, संगीता नेवानी, आकाश, आयुषी, सागर, यशी, हनी, पूजा, सीता और उनके परिवार के सभी सदस्य। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। जलालाबाद से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दशानी और निमिता आहूजा। अड़ार नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल और गोपी वर्मा। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, ठाकुर साहब। बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल। सारसताल सोनगरा, सूरजपुर से प्रेम साय राजवाड़े, सोमार साय, मेर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार और राम खेलावन सिंह पैकरा। पड़ौली धौरपुर सरगुजा से प्रथम प्रफुल्ल खंडा, कौरव खंडा, गर्वी खंडा, अनुज खंडा, सुनैना दास और वेद कुमार। दतरेंगी से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। जगदलपुर बस्तर से पुष्पांजलि नायडू, प्रीतम, अमृता, संतोष और उनके साथी। नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल और दुर्गेश्वरी जायसवाल। नवापारा बलौदा बाजार से नंद कुमार ठाकुर, प्रमला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर। अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबिया, अनस और रेहान। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, लखनलाल देवांगन और उनके साथी। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा और बबीता बोथ। बुलढाणा वटशंगी से अमोल मानकर, शोभा मानकर, दीपाली और श्लोक। भिलाई से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। लक्सर हरिद्वार

से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही महराज जहां आजाद नगर से उनके और भी साथियों का ईमेल मिला है। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और कर्ण वर्मा, तिलक नगर नई दिल्ली से आर एस स्वीटी और आर के शुक्ला, सौंगा मंगर लोड से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन और हयाश कुमार चंदन। और आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जो है फिल्म कोई मिल गया से। आवाज़ है उदित नारायण और साथियों की।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत के लिए हमें ईमेल मिले हैं आप सभी श्रोताओं के, भिलाई से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला श्याम कुमार, चीनू आसमा श्याम कुमार, यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल चेतन मनवर और रोशनी बेबी प्रियांशी मनवर, डोंगरगांव से राजपाल गजबी है, राधिका गजबी है, निष्का और तन्मय गजबी है, मुंगेसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुद निशा, साबिस्ता पलक लुबना और यश मंसूरी, सुरेश राठौर, मंजुलिका राठौर, विशाल निशा आप सब हैं गांधीनगर गुजरात से, यवतमाल से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा स्वप्निल और रक्षिता लोखंडे, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार साहू, ये नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, हाणीखेड़ा से राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा, डाबकी रोड अकोला से सुशीला मंदूरकर और सदानंद मंदूरकर, लोरमी चचड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी, डेर पाटन से गुजरात से धीरज बीराबरी, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कमल छिपा और पूजा परिहार, अकोला महाराष्ट्र से रमेश कांबले, देवयानी और गणेश कांबले, बराड़ा अंबाला से रवि कुमार, राहुल रणजीत कौर, मन्नत गुरकीरत, राहुल गुरशब्द और उनके साथ ही, बेरडी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर और प्राची तनु करमरकर, अनिल जैन आप सब हैं मिलान से, और ये श्रोता हमारे हैं लोरमी चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, ऋषभ मरावी, पुष्पराज मरावी, खरगोन से प्रवीण श्रीमाली, रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, प्रियंका पूजा और लीलू रीति सिंह, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, शरीफ नवाज और के साथ ही, खंडवा से अब्दुल हक डावर, अब्दुल गफार डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारी, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी, गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा, जमनिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक स्वाति जायसवाल, रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल, छुरी कोरबा से लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर मानू, शानू, बबन, मुन्नू, कान्हा और हरिप्रिया ठाकुर, पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, मऊनाथ भंजन से राजेश वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, मऊनाथ से ही मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, खंडवा से योगेश गुजराती, अभय गुजराती और उनके साथ ही, बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नेति कुमारी, गणेश पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र और रौनक सेन, और सहसपुर लोहारा से हेमप्रभा, पुष्पराज, सूरज राजपूत। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम।

और श्रोताओं, जल्दी से हम सुनवाते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत, और इस गीत के लिए हमें ईमेल भेजें आप सभी श्रोताओं ने। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव और समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव, पीपरपारा पालचुआ मुंगेली से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, भानुप्रिया दिवाकर, गोयोगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर, अमरावती से सिद्धार्थ गुणाने, प्रणय प्रसिद्धि, अर्चना गुणाने और हीरामणि शेंडे, स्वरूप आनंद आप हैं अंबिकापुर से, चंद्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश, कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी, ममना अमीरपुर से रामशरण विश्वकर्मा और साहिल विश्वकर्मा, बलौदाबाजार से दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम और आनंद पटेल, डोंडीलोहारा बालोद से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, बेबी पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा और उनके साथी, जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी केवट, कृष्णा केवट, आप सब हैं अनूपपुर मध्य प्रदेश से, रायपुर से विनोद वंडेलकर, वीणा वंडेलकर और विविधा वंडेलकर, बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मैत्रे और अंजलि घटे, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और जस्वी यादव, रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, कौशल श्रीवास, कृष्ण कुमार यादव, लक्ष्मण वाधवानी और गेंदू भाई, डोंडीलोहारा बालो से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, बेबी पूजा, राधिका प्रभा और उनके साथी, गुरमीत सिंह मीता साउथ दिल्ली से, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद शादाब खत्री और रायपुर से नीलू मेघ, वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनवाने जा रहे हैं मैं आपको कार्यक्रम का ये आखिरी गीत, जो है फिल्म आजा नचले से, आवाज़ है सुनिधि चौहान। Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun d

पृथ्वी चौहान की गए फिल्म आजा नचले के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल की गूंज आज यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामणि। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उस्ताद अमजद अली खां का सरोद पर बजाया राग यमन।

सूर्यावनी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अमजद अली खां का सरोद पर बजाया राग यमन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 होने वाले हैं और ये समय है आपके लिए कार्यक्रम लेकर आने का, और कार्यक्रम है मन भवन, जो कि फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम का पहला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो है लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम है मौसम, और इस गीत को सुनना चाहा है आप सबने। दिल्ली से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार, जरुण वरुण महाराष्ट्र से बाबा साहब वाड़ोदे, मीनाक्षी चर्पे, रजनी कानीरे, पुणे से पंकज वाड़ोदे और आर्या प्रियंका, ये श्रोता हमारे हैं बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन, जगमल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक, आप सब हैं हनुमानगढ़ राजस्थान से। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

सुनते ही कार्यक्रम का अगला गीत जो है किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है जहरीला इंसान। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत तैयार किया है राहुल देव बर्मन ने, और इस गीत को सुनना चाहा है आप सबने। देवी गंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेवानी, संगीता नेवानी, आकाश नेवानी, पप्पू जायसवाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा, सीता, सागर, आयुषी, हनी और उनके परिवार के सभी सदस्य, और कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से राकेश श्रीवास्तव, महिमा श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, सोनू, वंदना और उनके परिवार के सभी लोग। शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजू लता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव, और अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। वैष्णो कॉलोनी सनावत से हमारे श्रोता मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, और ये श्रोता हमारे हैं बरेली रेलवे केबिन के पास से विनेश कुमार, रागनी श्रीवास्तव और मुस्कान। आइए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं फिल्म जहरीला इंसान का ये गीत।

0: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
1: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
0: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
1: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
0: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। आकाशवाणी अंबिकापुर से संपर्क करें 07774230600। नंबर एक बार फिर 07774230600।
1: मनभावन कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए अब सुनते हैं रविंद्र जैन का लिखा और संगीतबद्ध किया ये गीत, जो है यशुदास की आवाज में। फिल्म का नाम है नैया और सुनना चाहे आप सबने। संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल धनजे, विशाल धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे। मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति, रेयांश और गुड़िया ठाकुर। और लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी और ददरेंगी से भागवत प्रसाद वर्मा।

श्रोताओं, इस वक्त आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी अंबिकापुर और आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत और इस गीत की फरमाइश की है आप सबने। शांतिनगर इंदौर से कुमारी देविका चौधरी, कविता संजय वाणी, मनीष वाणी, ब्रूनो खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी। अमरावती महाराष्ट्र से कमरुला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, मुस्तबा खान, शाहिद भाई और राहुल भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, ईशिका यादव और तेजल यादव। और ये श्रोता हमारे हैं प्रेम नगर सूरजपुर से अरविंद कुमार यादव, रुस्तम, हिमांशु, मनोज और अनुष्का यादव। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं मेरे जीवन साथी फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

श्रोताओं, इस वक्त आप आकाशवाणी अंबिकापुर से सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत, और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सब। हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और उनके परिवार के सभी सदस्य, बेड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल और अर्जुन गवनेकर, गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले, गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र सेन, यहीं से खुशी और रौनक सेन, रघुनाथ

शेखपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी, दतरेंगी भाटापारा से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक वर्मा और झवेंद्र कुमार वर्मा, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक और मीका विरक, और मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत रॉय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज और बिट्टा बजाज साहिल। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत, जो है फिल्म जॉनी मेरा नाम से। आवाज़ है किशोर कुमार और आशा भोसले की।

किशोर कुमार और आशा भोसले की गए फिल्म जॉनी मेरा नाम के इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन समाप्त हुआ। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स और FM 100.2 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। समाचार अगले कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज